0: Let's start the bulletin with the monsoon session that could finally see some business getting transacted today. The Lok Sabha expected to take up the anti-paper leak bill for discussion and for voting. The speaker has allocated 6 hours for the debate and sources are telling EDTV that is Rahul Gandhi, the leader of opposition, that's likely to participate. It's also learned that the opposition has submitted 93 amendments. The breakthrough came after the speaker, Om Birla, reached out to leaders of all opposition parties, trying to persuade them to participate in the discussion. Yesterday, the government accused the opposition of stalling the debate after the opposition insisted that the Home Minister, Amit Shah, must first respond to the allegations of the excesses of the police and also those who were in plain uniform and the kind of force they used, who allowed that and who allowed pellet guns during the student protest that took place in Jantar Mantar.
1: हमारे साथ है महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और शिवसेना के पक्ष प्रमुख एकनाथ जी शिंदे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी में।
2: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: पहला सीधा सवाल है कि जो पिछले कुछ दिनों से मुंबई से लेकर दिल्ली में काफी आंदोलन हुआ, जेएनसी का नीट की पेपर को लेकर के काफी सारा हंगामा हुआ, तो आप इस जेएनसी के आंदोलन की तरफ किस नजरिए से देखते हैं?
2: नीट का पेपर लीक होना ये तो दुर्भाग्यपूर्ण बात है, क्योंकि उससे लाखों छात्रों का जीवन और भविष्य जुड़ा होता है और ये छात्र देश के भविष्य है, ये देश का फ्यूचर है। इसलिए मैंने कहा कि ये बात जो हुई है ये नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन हो गई। लेकिन उससे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि इसका राजनीतिकरण करना, इसको पॉलिटिसाइज करना, वो गलत है। और इसमें आज युवाओं के साथ, छात्रों के साथ हम लोग हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री जी ने इसको बहुत ही काफ़ी गंभीरता से लिया हुआ है, तुरंत इसमें अनेक निर्णय लिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट लाया, 10 साल की सजा, 10 करोड़ का जुर्माना, यहाँ पर 3 महीने में सजा होगी, फास्ट ट्रैक पर केस चलेगी, और अभी तो फिर कल वापस एक निर्णय लिया, टास्क फोर्स बनाया, उसमें नंदन निलकेनी जैसे तज्ञ व्यक्तियों को साथ में लेकर टास्क फोर्स बनाया। अभी शिक्षा जो है, एग्ज़ाम जो है, उसमें रिफॉर्म्स लाने के लिए ये कमेटी काम करेगी।
3: विपक्ष राजनीति कर रहा है, मांगे किसकी हैं, आंदोलन किसका था? युवाओं का, छात्रों का, और उन युवाओं छात्रों का आंदोलन इतना बड़ा था, अगर उसकी मांगे सरकार ने मान ली, वो आंदोलन वापस हो गया, अब कोई आंदोलन नहीं है, फिर सदन की कार्रवाई बाधित कर रहे हैं। और आज का ये भी नहीं कि कोई और दूसरा विषय था, उन्हीं छात्रों के भविष्य की परीक्षाओं की स्वच्छता के लिए कठोर कानून बनाने की कार्रवाई को लेकर के बिलाए, जिस पर आपने जैसा कहा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम फास्ट ट्रैक कोर्ट को इस्टेब्लिश कर रहे हैं, 3 महीने में डे टू डे सुनवाई, लॉजिकल एंड तक जाएंगे।
4: पहले तो होने दीजिए, तब ना बात करेंगे, फिर हम बोलते हैं। ट्रेजरी बेंच हम तो पिछले 12 साल कभी भी नहीं देखे, 14 से 26 किसी भी डिस्प्यूटेड इशू पर, पीपल्स इशू पर, जिसमें चर्चा होना चाहिए, जिसमें अपोजिशन का बोलने का फर्ज निभाना चाहिए, वो चर्चा नहीं करते। फार्म बिल के से लेकर लेबर कोड तक, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के बिल से लेकर हर एक इशू पर वो चर्चा नहीं चाहते।
5: लग रहा है जी, ये पहले तो इसी

0: Let's start the bulletin with the monsoon session that could finally see some business getting transacted today. The Lok Sabha expected to take up the anti-paper leak bill for discussion and for voting. The speaker has allotted, basically allocated 6 hours for the debate, and sources are telling EDTV that is Rahul Gandhi, the leader of opposition, that's likely to participate. It's also learned that the opposition has submitted 93 amendments. The breakthrough came after the speaker, Om Birla, reached out to leaders of all opposition parties, trying to persuade them to participate in the discussion. Yesterday, the government accused the opposition of stalling the debate after the opposition insisted that the Home Minister, Amit Shah, must first respond to the allegations of the excesses of the police and also those who were in plain uniform and the kind of force they used, who allowed that and who allowed pellet guns during the student protest that took place in Jantar Mantar.
1: हमारे साथ है महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और शिवसेना के पक्ष प्रमुख एकनाथ जी शिंदे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी में।
2: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: पहला सीधा सवाल है कि जो पिछले कुछ दिनों से मुंबई से लेकर दिल्ली में काफी आंदोलन हुआ, जेएनसी का नीट की पेपर को लेकर के काफी सारा हंगामा हुआ, तो आप इस जेएनसी के आंदोलन की तरफ किस नजरिए से देखते हैं?
2: नीट का पेपर लीक होना ये तो दुर्भाग्यपूर्ण बात है, क्योंकि उससे लाखों छात्रों का जीवन और भविष्य जुड़ा होता है और ये छात्र देश के भविष्य है, ये देश का फ्यूचर है। इसलिए मैंने कहा कि ये बात जो हुई है ये नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन हो गई। लेकिन उससे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि इसका राजनीतिकरण करना, इसको पॉलिटिसाइज करना, वो गलत है। और इसमें आज युवाओं के साथ, छात्रों के साथ हम लोग हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री जी ने इसको बहुत ही काफ़ी गंभीरता से लिया हुआ है, तुरंत इसमें अनेक निर्णय लिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट लाया, 10 साल की सजा, 10 करोड़ का जुर्माना, यहाँ पर 3 महीने में सजा होगी, फास्ट ट्रैक पर केस चलेगी, और अभी तो फिर कल वापस एक निर्णय लिया, टास्क फोर्स बनाया, उसमें नंदन निलकेनी जैसे तज्ञ व्यक्तियों को साथ में लेकर टास्क फोर्स बनाया। अभी शिक्षा जो है, एग्ज़ाम जो है, उसमें रिफॉर्म्स लाने के लिए ये कमेटी काम करेगी।
3: विपक्ष राजनीति कर रहा है, मांगे किसकी हैं, आंदोलन किसका था? युवाओं का, छात्रों का, और उन युवाओं छात्रों का आंदोलन इतना बड़ा था, अगर उसकी मांगे सरकार ने मान ली, वो आंदोलन वापस हो गया, अब कोई आंदोलन नहीं है, फिर सदन की कार्रवाई बाधित कर रहे हैं। और आज का ये भी नहीं कि कोई और दूसरा विषय था, उन्हीं छात्रों के भविष्य की परीक्षाओं की स्वच्छता के लिए कठोर कानून बनाने की कार्रवाई को लेकर के बिलाए, जिस पर आपने जैसा कहा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम फास्ट ट्रैक कोर्ट को इस्टेब्लिश कर रहे हैं, 3 महीने में डे टू डे सुनवाई, लॉजिकल एंड तक जाएंगे।
4: पहले तो होने दीजिए, तब ना बात करेंगे, फिर हम बोलते हैं। ट्रेजरी बेंच हम तो पिछले 12 साल कभी भी नहीं देखे, 14 से 26 किसी भी डिस्प्यूटेड इशू पर, पीपल्स इशू पर, जिसमें चर्चा होना चाहिए, जिसमें अपोजिशन का बोलने का फर्ज निभाना चाहिए, वो चर्चा नहीं करते। फार्म बिल के से लेकर लेबर कोड तक, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के बिल से लेकर हर एक इशू पे वो चर्चा नहीं चाहते।
5: लग रहा है जी, ये पहले तो इसी आज से चलना चाहिए था, हम लोगों को भी नहीं लगा जी आज से चलो, एक वीक हो गया आज से चलेगा, लेकिन ये ऑपोजिशन कांग्रेस, मुझे लगता है कांग्रेस अलग डिस्कशन मूड में है ही नहीं, तो इसके डिस्कशन मांग रहे थे, वो राजी हो गए 6 घंटा, उसके बाद भी बोला प्लस पॉइंट और भी देंगे, फिर सजेशन भी दे दीजिए, जो भी बोलना है बोल दीजिए, इतना कुछ बोलने के बाद भी वो लोग डिस्कशन नहीं चाह रहे, डिस्कशन नहीं कर रहे, ये दुख की बात है।

0: It's day six of the monsoon session, and it is the session that could finally see some business getting transacted today. It's the Lok Sabha that's expected to be taking up that anti-paper leak bill for discussion and for voting. We have the speaker who has now allotted 6 hours for the debate and sources are telling NDTV that Rahul Gandhi is likely to be participating. It's also learned that the opposition has submitted 93 amendments. The breakthrough has come about after Om Birla, the speaker, reached out to leaders of all opposition parties trying to persuade them to participate in the discussion. It was yesterday that the government accused the opposition of stalling the debate, while the opposition has insisted that it's the Home Minister Amit Shah who must first respond to allegations of the excesses of the police during the student protest.
1: NEET ka paper leak hona, ye to durbhagyapurna baat hai. Kyunki usse लाखों छात्रों का जीवन और भविष्य जुड़ा होता है और ये छात्र देश के भविष्य है, ये देश का फ्यूचर है। इसलिए मैंने कहा कि ये बात जो हुई है ये नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन हो गई। लेकिन उससे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि इसका राजनीतिकरण करना, इसको पॉलिटिसाइज करना, वो गलत है। और इसमें आज युवाओं के साथ, छात्रों के साथ हम लोग हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं। देश के प्रधानमंत्री जी ने इसको बहुत ही काफ़ी गंभीरता से लिया हुआ है, तुरंत इसमें अनेक निर्णय लिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट लाया, 10 साल की सज़ा, 10 करोड़ का जुर्माना, यहाँ पर 3 महीने में सजा होगी, फास्ट ट्रैक पर केस चलेगी। और अभी तो फिर कल वापस एक निर्णय लिया, टास्क फोर्स बनाया, उसमें नंदन निलकेनी जैसे तज्ञ व्यक्तियों को साथ में लेकर टास्क फोर्स बनाया। अभी शिक्षा जो है, एग्ज़ाम जो है, उसमें रिफॉर्म्स लाने के लिए ये कमेटी काम करेगी।
2: मांगे किसकी हैं, आंदोलन किसका था? युवाओं का, छात्रों का। और उन युवाओं छात्रों का आंदोलन इतना बड़ा था, अगर उसकी मांगे सरकार ने मान ली, वो आंदोलन वापस हो गया, अब कोई आंदोलन नहीं है, फिर सदन की कार्रवाई बाधित कर रहे हैं। और आज का ये भी नहीं कि कोई और दूसरा विषय था, उन्हीं छात्रों के भविष्य की परीक्षाओं की स्वच्छता के लिए कठोर कानून बनाने की कार्रवाई को लेकर के बिलाए, जिस पर आपने जैसा कहा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम फास्ट ट्रैक कोर्ट को इस्टेब्लिश कर रहे हैं, 3 महीने में डे टू डे सुनवाई लॉजिकल एंड तक जाएंगे।
3: पहले तो होने दीजिए, तब ना बात करेंगे, फिर हम बोलते हैं। ट्रेजरी बेंच हम तो पिछले 12 साल कभी भी नहीं देखे, 14 से 26 किसी भी डिस्प्यूटेड इशू पर, पीपल्स इशू पर, जिसमें चर्चा होना चाहिए, जिसमें अपोजिशन का बोलने का फर्ज निभाना चाहिए, वो चर्चा नहीं करते। फार्म बिल के से लेकर लेबर कोड तक, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के बिल से लेकर हर एक इशू पे वो चर्चा नहीं चाहते।
4: लग रहा है जी, ये पहले तो इसी आज से चलना चाहिए था, हम लोगों को भी नहीं लगा जी आज से चलो, एक वीक हो गया आज से चलेगा। लेकिन ये अपोजिशन कांग्रेस, मुझे लगता है कांग्रेस डिस्कशन मूड में है ही नहीं, तो इसलिए डिस्कशन मांग रहे थे, वो राजी हो गए 6 घंटा, उसके बाद भी बोला प्लस पॉइंट और भी देंगे, फिर सजेशन भी दे दीजिए, जो भी बोलना है बोल लीजिए। इतना कुछ बोलने के बाद भी वो लोग डिस्कशन नहीं चाह रहे, डिस्कशन नहीं कर रहे, ये दुख की बात है।
0: And we have my colleague Aishwarya Jain joining us in order to get us details. Aishwarya, an action-packed session of the parliament is expected today. This is day 6 of the monsoon session. Talk us through, you know, what is expected given the fact that there is going to be a debate. 6 hours have been allotted. Rahul Gandhi is supposed to be speaking in the parliament. Take us through the details of what all is on the table, what all is on the agenda.
5: Well, that's right. In fact, 6 hours' time have been allotted yesterday by the Lok Sabha Speaker, and it is the discussion that remains to be seen, that whether that will take place or not, because certainly yesterday it was at many times when the Lok Sabha adjourned because of the ruckus and the demands that the opposition parties have put forward, they are continuously stating that first there should be a statement from the Home Minister regarding the alleged brutality of the police personnel against the students who protested on July 20th towards the Parliament and also Prime Minister. While on one side he is coming time and again on social media issuing statements, why can't he come to the Parliament and can address the demand of an apology from the Prime Minister over the Neet paper leak cases is something that is prominent. Yes, of course, there were back channel talks that happened overnight between this government and the opposition is what we have been told. The Lok Sabha Speaker urged the opposition and the Treasury benches to discuss. Remember, at 2 p.m. yesterday when the Lok Sabha got adjourned, it was Lok Sabha Speaker who stated that 3 hours time is now being given to both the factions, the opposition and the Treasury benches. They should resolve concern issue between themselves and they should come and have a constructive debate. More than 90 amendments have been given as far as the public examination prevention for unfair

0: छात्र है, युवा पीढ़ी है, हमारे देश का भविष्य बनाने वाले हैं, ये तो बोल रहे आग लगा दो, क्योंकि इनको जनता ने ठुकरा दिया है, जनता के अदालत में हार गए हैं, अभी अपनी पार्टी बचाने के लिए उनके प्लेटफॉर्म का सहारा ले रहे हैं। पवार साहब तो गए वहाँ पर आंदोलनकारियों को भी मिले और प्रधानमंत्री जी के पास भी गए, और उन्होंने बाद में कहा भी कि मैं ये
1: सुझाव कुछ दिए
0: ये छात्रों को न्याय मिले, उनसे वो तो एक ही इंडिया अलायंस में, तो पवार साहब से छिकना चाहिए बाकी लोगों ने।
1: एक सवाल है महाराष्ट्र को लेकर के कि आपके कई सारे विधायक, चाहे खासदार हो या आमदार हो, इन्होंने पिछले कुछ दिनों में कई सारे गलत शब्दों का इस्तेमाल किया है लोगों के ऊपर, पत्रकारों के ऊपर, और बाकी भी लोगों को मारपीट के हाथ से हुए, डॉक्टर को मारपीट के हाथ से हुए, तो आपको नहीं लगता कि ऐसे विधायक लोगों को जो शिवसेना के हैं,
0: कतई हम समर्थन नहीं करते इसका, डॉक्टरों पे हल्ले का समर्थन नहीं करेंगे। मैंने खुद ही बोला है, इनकी कानूनी कार्रवाई में भी हमने हस्तक्षेप नहीं किया, हमने शिस्त भंग की कार्रवाई भी उन पर करी है, और हमारे हर विधायक या लोक प्रतिनिधि ये कोई भी गलत किसी के बारे में हरकत करे ये बर्दाश्त हम नहीं करेंगे, उसका समर्थन हम कभी किया नहीं, हमने कभी किया नहीं और ना करेंगे।
1: विरोधियों का आरोप है कि आप के विधायक और आमदार लोग गुंडागर्दी पे उतर आते हैं, अच्छे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते।
0: देखिए, जब जनता का सवाल होता है, जनता को न्याय दिलाना होता है, तब लोग रास्ते में आ जाते हैं, लेकिन किसी को मारपीट करना, किसी को गलत शब्दों का इस्तेमाल करना, इसका समर्थन हम नहीं करते।
2: Well, with that, we're slipping to a very short break. Back with a whole lot more on the other side. Just stay with us.

0: देश का टायर जेके टायर।
1: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
2: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
3: अरे मेरे राजा।

0: देश का टायर जेके टायर।
1: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
2: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
3: अरे मेरे राजा।

0: All right, our big focus at the moment, after weeks in which the conversation was dominated by paper leaks and student protests, and also recently parliamentary disruption, the focus could finally shift to the question that matters most to millions of young Indians. Will this new law actually prevent another exam scandal? The Lok Sabha is expected to take up the anti-paper leak bill today, with 6 hours set aside for the debate. Sources are telling NDTV that Rahul Gandhi is likely to participate, and the opposition has already submitted 93 amendments. But this breakthrough came after Speaker Om Birla reached out to leaders of all opposition parties, trying to persuade them to participate in this discussion. Just yesterday, the government accused the opposition of stalling debate, while the opposition argues accountability cannot begin and end with a new law. It basically wants answers over allegations of police excesses during the student protests before the House moves on. Therefore, they are insisting that the Home Minister must first respond to allegations of the police excesses during the student protests. We've lined up some crucial political reactions for you this morning. Listen in.
1: नीट का पेपर लीक होना ये तो दुर्भाग्यपूर्ण बात है, क्योंकि उससे लाखों छात्रों का जीवन और भविष्य जुड़ा होता है, और ये छात्र देश के भविष्य है, ये देश का फ्यूचर है। इसलिए मैंने कहा कि ये बात जो हुई है ये नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन हो गई। लेकिन उससे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि इसका राजनीतिकरण करना, इसको पॉलिटिसाइज करना, वो गलत है। और इसमें आज युवाओं के साथ, छात्रों के साथ हम लोग हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री जी ने इसको बहुत ही काफ़ी गंभीरता से लिया हुआ है, तुरंत इसमें अनेक निर्णय लिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट लाया, 10 साल की सज़ा, 10 करोड़ का जुर्माना, यहाँ पर 3 महीने में सज़ा होगी, फास्ट ट्रैक पर केस चलेगी, और अभी तो फिर कल वापस एक निर्णय लिया, टास्क फोर्स बनाया, उसमें नंदन निलकेनी जैसे तज्ञ व्यक्तियों को साथ में लेकर टास्क फोर्स बनाया। अभी शिक्षा जो है, एग्ज़ाम जो है, उसमें रिफॉर्म्स लाने के लिए ये कमेटी काम करेगी।
2: विपक्ष राजनीति कर रहा है, मांगे किसकी हैं, आंदोलन किसका था, युवाओं का, छात्रों का, और उन युवाओं छात्रों का आंदोलन इतना बड़ा था, अगर उसकी मांगे सरकार ने मान ली, वो आंदोलन वापस हो गया, अब कोई आंदोलन नहीं है, फिर सदन की कार्रवाई बाधित कर रहे हैं। और आज का ये भी नहीं कि कोई और दूसरा विषय था, उन्हीं छात्रों के भविष्य की परीक्षाओं की स्वच्छता के लिए कठोर कानून बनाने की कार्रवाई को लेकर के बिलाए, जिस पर आपने जैसा कहा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम फास्ट ट्रैक कोर्ट को इस्टेब्लिश कर रहे हैं, 3 महीने में डे टू डे सुनवाई लॉजिकल एंड तक जाएंगे।
3: पहले तो होने दीजिए, तब ना बात करेंगे, फिर हम बोलते हैं। ट्रेजरी बेंच हम तो पिछले 12 साल कभी भी नहीं देखे, 14 से 26 किसी भी डिस्प्यूटेड इशू पर, पीपल्स इशू पर, जिसमें चर्चा होना चाहिए, जिसमें अपोजिशन का बोलने का फर्ज निभाना चाहिए, वो चर्चा नहीं करते। फार्म बिल के से लेकर लेबर कोड तक, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के बिल से लेकर हर एक इशू पे वो चर्चा नहीं चाहते।
4: लग रहा है जी, ये पहले तो इसी आज से चलना चाहिए था, हम लोगों को भी नहीं लगा जी आज से चलो, एक वीक हो गया आज से चलेगा, लेकिन ये ऑपोजिशन कांग्रेस, मुझे लगता है कांग्रेस डिस्कशन मूड में है ही नहीं, तो इसलिए डिस्कशन मांग रहे थे, वो राजी हो गए 6 घंटा, उसके बाद भी बोला प्लस पॉइंट और भी देंगे, फिर सजेशन भी दे दीजिए, जो भी बोलना है बोल लीजिए, इतना कुछ बोलने के बाद भी वो लोग डिस्कशन नहीं चाह रहे, डिस्कशन नहीं कर रहे, ये दुख की बात है।
0: Aishwarya Jain has been tracking all the latest developments for us. He joins us live at the moment. Aishwarya, we're given to understand the opposition has submitted 93 amendments. What are the most significant changes it wants, though?
5: Well, certainly a very important legislative as far as those who are indulging in the paper leak. This is the law that came into existence back in 2024 by Modi government. And now there are proposed amendments that have been made as far as

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो सुबह केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा,
4: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से।
5: देश का टायर जेके टायर।

0: Your friend said, ye le le. We said, maybe not. Hi, my name is Siddharth Sharma. I'm your NDTV Automate, your ultimate guide into the world of automobiles and mobility.
1: Meetha, ya namkeen, chahe jaise khao, 100% suji se bani, are pure vermicelli, swadisht, sehatmand, har roz.
2: ए युग तुम्हारा, ए रण तुम्हारा, हर चुनौती तुम्हारी, हर शिखर तुम्हारा, तुम्ही हो भारत का स्वाभिमान।
3: हर सेक्टर, हर स्टेट, हर रीजन, हर उम्र के इनोवेटर्स ने दिया जबरदस्त प्रतिसाद। तभी तो वंदे भारतम में एप्लीकेशंस पहुंचे 25,000 के पार और रजिस्ट्रेशन डेडलाइन बढ़कर हुई है 30 जुलाई। आप भी भारत के सबसे बड़े ग्रास रूट इनोवेशन मूवमेंट से जुड़े vandebharatam.org पर रजिस्टर करें।
4: He has tracked the pulse of power from Washington to Korea. Witnessed history being made in global capitals and conflict zones.
5: This location from Tel Aviv
4: brought clarity to complex issues of national security and international affairs.
6: Prime Minister Narendra Modi spoke to him at length yesterday.
7: The Ayatollah Khamenei is gone.
8: There has been a missile attack right behind you,
9: and we need to rush into a shelter.
10: Heading there.
11: Will Prime Minister KP Sharma Oli resign?
4: And now, Aditya Raj Kaul, covering international affairs like no one else, only on NDTV Network.
12: POK ke firing range mein khade hain.
13: Just few inches away is POK.
12: Ho sakta hai dushman ko pata ho ki Saif Ali Khan yahan par khade hain.

0: भारतीय जनता पार्टी एंड दैट्स द स्ट्रेटजी ऑफ द एनडीए दिस टाइम. दे हैव अप्रोच देयर यंग एमपीज फ्रॉम द एनडीए अलायंस टू हैव अ डायरेक्ट कनेक्ट विद द यूथ एंड बिकॉज देयर फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम देयर एक्टिविटी ऑन इंस्टाग्राम इज मच मोर देन दोज ऑफ द कैबिनेट मिनिस्टर्स. दीज एमपीज हैव बीन अप्रोच फ्रॉम द अलाइज ऑफ द एनडीए एज वेल. द लिस्ट दैट वी हैव एक्सेस सो फार, श्रीकांत शिंदे फ्रॉम द एकनाथ शिंदे ऑफ द शिवसेना फैक्शन, ही विल बी स्पीकिंग. दे विल बी Arun Bharti from the LJP Ram Vilas. It would be young MPs from the TDP who will be speaking, including Bharat and Ram Mohan Naidu might also speak in this regard, who's a cabinet minister. There are also Anupurna Patel from the Apna Dal who would be speaking. It would be very interesting to see what would be the strategy of the opposition camp, who they will be pitching, because the sources clearly revealing that Priyanka Gandhi and Rahul Gandhi might speak from the Congress party apart from these leaders. Deependra Hooda is one of the speaker that we have got confirmation from the Congress party, and who the alliance partners of the India bloc would be pitching for would be very interesting to see in the debate that will pan out for 6 hours, as the time has already been allotted by the Lok Sabha speaker.
1: Right, thank you so much, Aishwarya. We will keep coming back to you for more on that. Do remember the NDA meeting that's underway. This is before, the anti-paper leak bill that's going to be coming up in Parliament. It was introduced just yesterday. So the monsoon session could finally see some business getting transacted, with the Lok Sabha expecting to take up that anti-paper leak bill for discussion and for voting. The Speaker has allotted, my colleague Aishwarya was mentioning, 6 hours for that debate. And sources are telling NDTV that Rahul Gandhi is likely to be participating in that discussion. It's also learned that the opposition has submitted 93 amendments. The breakthrough has come about after the Speaker, Om Birla, reached out to leaders. These are leaders of all opposition parties, trying to persuade them that they need to participate in this discussion. Yesterday, the government accused the opposition of stalling the debate, while the opposition insisted that it's the Home Minister who must first respond to the allegations when it comes to the excesses of police that were seen during the protests on the 20th of July at Jantar Mantar.
2: NEET ka paper leak hona, ye to durbhagyapurna baat hai. Kyunki usse lakho छात्रों का जीवन और भविष्य जुड़ा होता है, और ये छात्र देश के भविष्य है, ये देश का फ्यूचर है. इसलिए मैंने कहा कि ये बात जो हुई है ये नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन हो गई. लेकिन उससे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि इसका राजनीतिकरण करना, इसको पॉलिटिसाइज करना, वो गलत है. और इसमें आज युवाओं के साथ, छात्रों के साथ हम लोग हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं. देश के प्रधानमंत्री जी ने इसको बहुत ही काफ़ी गंभीरता से लिया हुआ है, तुरंत इसमें अनेक निर्णय लिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट लाया, 10 साल की सज़ा, 10 करोड़ का जुर्माना, यहाँ पर 3 महीने में सज़ा होगी, फास्ट ट्रैक पर केस चलेगी, और अभी तो फिर कल वापस एक निर्णय लिया, टास्क फोर्स बनाया, उसमें नंदन निलकेनी जैसे तज्ञ व्यक्तियों को साथ में लेकर टास्क फोर्स बनाया. अभी शिक्षा जो है, एग्ज़ाम जो है, उसमें रिफॉर्म्स लाने के लिए ये कमेटी काम करेगी.
3: क्या विपक्ष राजनीति कर रहा है? मांगे किसकी हैं? आंदोलन किसका था? युवाओं का, छात्रों का. और उन युवाओं छात्रों का आंदोलन इतना बड़ा था, अगर उसकी मांगे सरकार ने मान ली, वो आंदोलन वापस हो गया, अब कोई आंदोलन नहीं है, फिर सदन की कार्रवाई बाधित कर रहे हैं. और आज का ये भी नहीं कि कोई और दूसरा विषय था, उन्हीं छात्रों के भविष्य की परीक्षाओं की शुचिता के लिए कठोर कानून बनाने की कार्रवाई को लेकर के बुलाए, जिस पर आपने जैसा कहा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम फास्ट ट्रैक कोर्ट को इस्टेब्लिश कर रहे हैं, 3 महीने में डे टू डे सुनवाई लॉजिकल एंड तक जाएंगे.
4: न पेपर लीक पे जो नया अमेंडमेंट बिल आया, ये तय हुआ कि उस पर आज डिबेट होगा।

0: चिंता हो, ऐसे ना करें कि किसी के दिल को दुखे, तो इसलिए मैं यही चाहूंगा कि बड़े दिल के साथ और प्यार और मोहब्बत के साथ आगे बढ़े।
1: And with that, we're slipping into a short break. Back with a whole lot more. Stay with us.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
2: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
1: अरे मेरे राजा,
3: सबका राजा आकर मसाला।
4: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से।
5: देश का टायर जेके टायर।

0: In sports news now, India's para athletes continue to make the nation proud at the Commonwealth Games. It's Sharmila Dhankar who has clinched gold in the para shot put with a throw of 9.81 meters, while Shilpa Shaila secured bronze after that successful protest. Our correspondent Vimal Mohan caught up exclusively with the gold medalist.
1: सबसे पहले शर्मिला, पिछली बार आप मिस कर गई थी और सिर्फ 6 साल पहले आपने शुरू किया है शॉट पर फेंकना और 9.81 मीटर फेंक के कितनी बड़ी कामयाबी है आपकी जिंदगी की। बहुत सारी संघर्ष की कहानी है, लोगों को पता चलनी चाहिए, कितनी बड़ी जीत है आपके लिए।
2: ये बहुत बड़ी जीत है सर हमारे देश के लिए, हम बहुत खुश है।
1: बहुत खुश है शर्मिला। हाँ,
2: पैरा एथलीट का पहला गोल्ड और ब्रॉन्ज पहला ही है, पहली बार मेडल आया है जी इस कॉमनवेल्थ में।
1: बिल्कुल। और शिल्पा को तो प्रोटेस्ट करना पड़ा, क्यों शिल्पा?
2: हाँ यस सर, शिल्पा ने
1: आपको
2: प्रोटेस्ट नहीं किया सर,
3: नहीं
2: प्रोटेस्ट, उन्होंने खुद ने ही जांच किया है, एक थ्रो उसका नपे था वो ही उन्होंने जांच किया है।
1: तो आपको गोल्ड ब्रॉन्ज जो मिला है ये ऐतिहासिक कामयाबी है, हिस्ट्री में ये पहली बार हो रहा है एथलेटिक्स में, पैरा एथलेटिक्स के। शर्मिला, आपके लिए मैं एक कहानी आपकी जो मैं पढ़ रहा था, आपकी कमाल की कहानी है। आपने गार्ड का काम किया है, क्लीनर का काम किया है, खेतों में काम किया है और
2: मेड का काम,
1: हाँ
2: मेड का भी काम किया है सर, डॉक्टर मैडम
1: मेड
2: हॉस्पिटल
1: का भी
2: में।
1: काम किया है, ये कितनी बड़ी बात है। मतलब वहां से और सिर्फ 6 साल में यहां तक जीतना।
2: बहुत सपोर्ट मिली है हमें पीसीआई से, एसआई से और घर वालों से, तब जाके ये मेडल आया है, अकेले किसी की सपोर्ट से नहीं आया, सबको मिलके अच्छी सपोर्ट की है।
1: और आपका एक और
2: सत्यनारायण
1: सपना
2: सर
1: है,
2: तो हमारी स्टार्टिंग से ही सपोर्ट कर रहे हैं, मैडम को
1: सत्यनारायण मेरे
2: उसका
1: भी बहुत अच्छे दोस्त हैं, वो मैं उनको जानता हूँ, काफी इसमें लगे रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं। एक आपका तो एक और सपना है, एक तो ओलंपिक्स का सपना है और आप अपनी बेटी, आपकी जैवलिन फेंकने लगी है मेरे ख्याल से, तो आप बेटी
2: हाँ
1: के साथ
2: जी
1: मेडल जीतना चाहते हैं।
2: सर, हमारा सपना है कि नेक्स्ट कॉमनवेल्थ में तीन नुमा बेटी खेले, एक ही छत के नीचे
1: अरे
2: तीन
1: क्या
2: बोल
1: बात।
2: रहे हैं।
1: शर्मिला, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मुझे लगता है कि जो आप कर रही हैं, एक आया बनकर के आपने काम किया, गार्ड क्लीनर बन के और 6 साल के अंदर गोल्ड जीता, आपको लगता है कि दुनिया में कुछ भी असंभव है? कोई भी है, 40 साल की उम्र में जीत रही हैं आप।
2: अगर हम ठान ले तो सर कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है।
1: चलिए सत्या सर, और कितना मेडल है, गोल्ड कितना आएगा और आपके पैरा से?
4: और 102 गोल्ड आएगा, 2 सिल्वर आने का चांस है, 4 मेडल लेके आएगा। मैं
1: चलिए मैं
4: पहले भी
1: ज्यादा
4: बोला
1: तंग नहीं
4: था,
1: करूंगा जी।
4: मैं हमारा 5 to 6 मेडल आएगा, ये कभी भी मैं ये कम बोलता है, ज्यादा लेके आता है।
0: A huge victory there for India at the Commonwealth Games. But that is a wrap on this edition. News and updates will continue on the other side. My colleague Radhika, stay with us.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा
4: सबका राजा आकर मसाला।
5: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ। 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.
6: Meanwhile, the war of words over the student protests has drawn in BJP MP and actor Kangana Ranaut, whose latest social media posts have triggered fresh political controversy. Now, in a series of Instagram stories, Kangana Ranaut has launched a scathing attack on the Kokro Janta Party and its supporters, describing videos from the protests as puke-inducing, referring to the protesters as Generation Gutter, and making disparaging remarks about young women who participated in the demonstration. These comments come at a time when Parliament is preparing to debate the Anti-Paper Leak Bill, which is legislation born out of the very protests that Kangana Ranaut is now criticizing in this manner. You must know that political leaders have been sharply divided over the conduct of the student protests, the police response as well. And now Kangana Ranaut's intervention in the manner in which she's responded as well is likely to intensify an already polarized debate. We've got crucial reactions lined up for you. Listen in.
7: Kangana Ranaut ne is tarah ke shabdon ka istemal agar kiya hai to main samajhta hu bahut hi nindyan hai, ye condemnable hai. Kangana Ranaut ko har martaba is tarah ki bakwas karne ki aadat ho gayi hai. इनको पूछो नीट का फुल फॉर्म मालूम है, नहीं पता होगा उनको। और आप जेंजी स्टूडेंट छात्र जो हमारे भारत का भविष्य है, उनके बारे में ऐसा बोल रहे होगा कि मैं पूरा सुना नहीं, लेकिन आप जो बता रहे हो कि उन्होंने वॉमिट हो रही है और इतनी गंदगी छोड़ गया, अरे किस तरह के आप अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हो। एक कामयाब प्रोटेस्ट रहा, संवैधानिक तौर से प्रोटेस्ट कर रहे थे बच्चे, उनके बारे में आप इस तरह कचरा छोड़ दिया। अरे भाई आपने देखा नहीं वहां के विजुअल, साफ भी कर रहे थे वहां पर बच्चे।
8: ये एक महिला होते हुए भी जिस तरह से ये आंदोलन में बच्ची जो हमारी बेटियां थी उनको प्रताड़ित किया गया, मारा गया, एक बच्ची तो शहीद हो गई, और पुलिस ने जिस तरह से घिनौनी हरकतें की उन बच्चों के ऊपर, उसके बारे में जरा भी ये नहीं होता। एक महिला होते हुए भी मुझे इस बात का आश्चर्य है।

0: Sabha expected to take up the anti-paper leak bill for discussion and voting. The Speaker has allocated 6 hours for the debate, and sources tell NDTV that Rahul Gandhi is likely to participate. It is also learnt that the opposition has submitted 93 amendments. The breakthrough came after Speaker Om Birla reached out to leaders of all opposition parties, trying to persuade them to participate in the discussion. Yesterday, the government accused the opposition of stalling debate, while the opposition insisted that Home Minister must first respond to allegations of police excesses during the student protests.
1: Students are being beaten up by pellet gun.
2: कि महत्वपूर्ण विधेयक पर हम चर्चा करें, संवाद करें, अपने मत और विचारों को रखें, सरकार से भी और प्रतिपक्ष से भी मेरा यह आग्रह है कि सभी माननीय सदन सहमति बनाए और आज हम 2 बजे इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, ऐसा सभी लोगों ने सहमति व्यक्त की है। समय सरकार और प्रतिपक्ष बैठकर समय तय कर लेगा।
3: इसका विपक्ष राजनीति कर रहा है, मांगे किसकी हैं, आंदोलन किसका था, युवाओं का, छात्रों का, और उन युवाओं छात्रों का आंदोलन इतना बड़ा था, अगर उसकी मांगे सरकार ने मान ली, वो आंदोलन वापस हो गया, अब कोई आंदोलन नहीं है, फिर सदन की कार्रवाई बाधित कर रहे हैं। और आज का ये भी नहीं कि कोई और दूसरा विषय था, उन्हीं छात्रों के भविष्य की परीक्षाओं की शुचिता के लिए कठोर कानून बनाने की कार्रवाई को लेकर के बिलाए, जिस पर आपने जैसा कहा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम फास्ट ट्रैक कोर्ट को इस्टेब्लिश कर रहे हैं, 3 महीने में डे टू डे सुनवाई लॉजिकल एंड तक जाएंगे।
4: इस विषय पर तो मेरे ख्याल में हमारे बच्चों के भविष्य के विषय है और पूरे देश इस पे संसद के जो भी सोच है ये है वो देखना चाहते हैं संसद में। तो मेरे ख्याल में आज अच्छा चर्चा होना चाहिए। हमारे तरफ से नेचुरली कई लोग बोलेंगे, भाजपा के भी कोई होंगे उनकी तरफ से बताने के लिए, लेकिन हम चाहते हैं कि क्या जो सरकार ने बिल लेके आए हैं, जो ये विधायक लेके आए हैं, क्या वो काफ़ी है, सारे प्रश्न को उठाते हैं।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।
4: Meanwhile, the war of words over the student protests has drawn in BJP MP and actor Kangana Ranaut, whose latest social media posts have triggered fresh political controversy. Now, in a series of Instagram stories, Kangana Ranaut has launched a scathing attack on the Kokro Janata Party and its supporters, describing videos from the protests as puke-inducing, referring to the protesters as Generation Gutter, and making disparaging remarks about young women who participated in the demonstration. These comments come at a time when Parliament is preparing to debate the Anti-Paper Leak Bill, which is legislation born out of the very protest that Kangana Ranaut is now criticizing in this manner. You must know that political leaders have been sharply divided over the conduct of the student protests, the police response as well, and now Kangana Ranaut's intervention in the manner in which she's responded as well is likely to intensify an already polarized debate. We've got crucial reactions lined up for you. Listen in.
5: कंगना रनावत ने इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल अगर किया है तो मैं समझता हूँ बहुत ही निंदनीय है, ये कंडेमनेबल है। कंगना रनावत को हर मरतबा इस तरह की बकवास करने की आदत हो गई है। इनको पूछो नीट का फुल फॉर्म मालूम है, नहीं पता होगा उनको। और आप जेंजी स्टूडेंट छात्र जो हमारे भारत का भविष्य है उनके बारे में ऐसा बोल रहे हो, क्योंकि मैं पूरा सुना नहीं, लेकिन आप जो बता रहे हो कि उन्होंने वॉमिट हो रही है और इतनी गंदगी छोड़ गया, अरे किस तरह के आप अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हो। एक कामयाब प्रोटेस्ट रहा, संवैधानिक तौर से प्रोटेस्ट कर रहे थे बच्चे, उनके बारे में आप इस तरह कचरा छोड़ दिया। अरे भाई आपने देखा नहीं वहां के विजुअल, साफ भी कर रहे थे वहां पर बच्चे।
6: ये एक महिला होते हुए भी जिस तरह से ये आंदोलन में बच्ची जो हमारी बेटियां थी उनको प्रताड़ित किया गया, मारा गया, एक बच्ची तो शहीद हो गई,

0: Kokro Janata Party and its supporters, describing videos from the protests as puke-inducing, referring to the protesters as Generation Gutter, and making disparaging remarks about young women who participated in the demonstration. These comments come at a time when Parliament is preparing to debate the Anti-Paper League Bill, which is legislation born out of the very protest that Kangna Ranaut is now criticizing in this manner. You must know that political leaders have been sharply divided over the conduct of the student protests, the police response as well. And now Kangna Ranaut's intervention in the manner in which she's responded as well is likely to intensify an already polarized debate. We've got crucial reactions lined up for you. Listen in.
1: कंगना रनावत ने इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल अगर किया है तो मैं समझता हूँ बहुत ही निंदनीय है, ये कंडेमनेबल है। कंगना रनावत को हर मर्तबा इस तरह की बकवास करने की आदत हो गई है। इनको पूछो नीट का फुल फॉर्म मालूम है, नहीं पता होगा उनको। और आप जेंजी स्टूडेंट छात्र जो हमारे भारत का भविष्य है उनके बारे में ऐसा बोल रहे हो, कि मैं पूरा सुना नहीं लेकिन आप जो बता रहे हो कि उन्होंने वॉमिट हो रही है और इतनी गंदगी छोड़ गया, अरे किस तरह के आप अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हो। एक कामयाब प्रोटेस्ट रहा, संवैधानिक तौर से प्रोटेस्ट कर रहे थे बच्चे, उनके बारे में इस तरह कचरा छोड़ दिया। अरे भाई आपने देखा नहीं वहां के विजुअल, साफ भी कर रहे थे वहां पर बच्चे।
2: ये एक महिला होते हुए भी जिस तरह से ये आंदोलन में बच्ची जो हमारी बेटियां थी उनको प्रताड़ित किया गया, मारा गया, एक बच्ची तो शहीद हो गई, और पुलिस ने जिस तरह से घिनौनी हरकतें की उन बच्चों के ऊपर, उसके बारे में जरा भी ये नहीं होता एक महिला होते हुए भी।

0: to flaunt freedom for drugs and endless body counts. She called the Gen Z's reels that they were puke-inducing and said she never seen so much ugliness in one place, comparing them to actual cockroaches, and even questioned who is birthing and raising them. So all these kind of remarks being made by a member of parliament against, you know, the young people who are there protesting. Now, these remarks have triggered a sharp political backlash. Congress has questioned Kangana Ranaut's remarks, asking that being a woman herself, how does she feel no remorse? Akhilesh Yadav, Samajwadi Party, called on Prime Minister Modi to take cognizance of the kind of language that Kangana Ranaut used in her post.
1: It's very shocking. This is really the generation that represents the future of India. What is more, they're going to be the largest single voting bloc in next year's general elections in 2029. About 380 million, that is 38 crore of the voters are going to be...
2: Is it correct to call them...
1: Of course not. It's completely wrong. They are the future of our country. We should hail them as those who have rescued our democracy today.
3: मैं दो बात पे जरूर कहना चाहूंगा. कंगना रनौत जी, जहां तक पॉलिटिकल बातें हैं, कोई उन्हें सीरियसली लेता नहीं है, और इसलिए मैं समझता हूँ तो प्रारंभ से ही हंसी के पात्र रहती है. अगर 2014 के बाद अगर देश स्वतंत्र हुआ, इस प्रकार के मंतव्य करने वाले, मैं समझता हूँ उसको सीरियसली लेना नहीं चाहिए.
4: अच्छा सयानी जी, एक जो है वो ट्वीट आया है कंगना रनौत के बारे में. उन्होंने ये लिखा है कि जेन जी ने प्रधानमंत्री के बारे में डेरोगेटरी, काफ़ी सारी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया महिलाओं ने वहाँ पर जो प्रदर्शन कर रही थी, उसके ऊपर में क्या कहना है आपका?
5: देखिए, मुझे लगता है कि जो प्रधानमंत्री जी देश के सबसे बड़े पद में बैठे हुए हैं, सबका सम्मान होना चाहिए. हमारी आवाज़ है, हम आवाज़ उठाए. जेन जी ने अपनी बात रख ली है, उनकी बात सरकार ने सुनी है. ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है. ये हमको कहता है कि डेमोक्रेसी भारत में अभी भी जिंदा है. सम्मान रहे सबका, बच्चों की भी सम्मान रहे और देश के प्रधानमंत्री का भी सम्मान रहे.
6: उनको कोई सीरियसली लेता है क्या? उनको कोई सीरियसली नहीं लेता. उनको कोई स्टूडेंट मूवमेंट का, स्टूडेंट्स एजिटेशन का, डेमोक्रेटिक प्रोसेस का, डेमोक्रेटिक वे ऑफ लाइफ का उनको कोई ज्ञान है क्या? वो हमेशा इस तरह की बातें करते हैं और इस तरह की बातें करके फिर उनके दिमाग में क्या है वो लोगों के सामने आ जाता है.
7: ये एक महिला होते हुए भी जिस तरह से ये आंदोलन में बच्ची, जो हमारी बेटियां थी, उनको प्रताड़ित किया गया, मारा गया. एक बच्ची तो शहीद हो गई और पुलिस ने जिस तरह से घिनौनी हरकतें की उन बच्चों के ऊपर, उसके बारे में जरा भी ये नहीं होता. एक महिला होते हुए भी मुझे इस बात का आश्चर्य है.
8: कंगना रनौत ने इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल अगर किया है तो मैं समझता हूँ बहुत ही निंदनीय है, ये कंडेमनेबल है. कंगना रनौत को हर मर्तबा इस तरह की बकवास करने की आदत हो गई है. इनको पूछो नीट का फुल फॉर्म मालूम है? नहीं पता होगा उनको. और आप जेन जी स्टूडेंट, छात्र, जो हमारे भारत का भविष्य है, उनके बारे में ऐसा बोल रहे हो? कि मैं पूरा सुना नहीं, लेकिन आप जो बता रहे हो कि उन्होंने वॉमिट हो रही है और इतनी गंदगी छोड़ गया, अरे किस तरह के आप अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हो? एक कामयाब प्रोटेस्ट रहा, संवैधानिक तौर से प्रोटेस्ट कर रहे थे बच्चे, उनके बारे में आप इस तरह कचरा छोड़ दिया? अरे भाई, आपने देखा नहीं वहाँ के विजुअल? साफ भी कर रहे थे वहां पर बच्चे.
9: कंगना रनौत रिफ्लेक्ट द माइंडसेट ऑफ बीजेपी. आई मीन, दिस इज द ट्रू कलर. दे डोंट हैव रिस्पेक्ट फॉर एनीवन इन दिस कंट्री एंड आधी आबादी विल ऑलवेज रिमेंबर दिस. And they'll give a befitting reply to them. I mean, this is being a woman herself. How could she speak like this? And now I don't want to, she's a lady, I don't want to make a harsh comment on her. But simply I pray to God that may wisdom prevail upon her and give her a good sense. She should realize what she was and where she is today. This is the true color of India. Whatever those young children, be it a boy or a girl, were there on the Jantar Mantar, they were representing the sentiment of youth of this country.
0: Now, the monsoon session could finally see some business getting transacted today, though we've already had one disruption. But the Lok Sabha is expected to take up the anti-paper leak bill for discussion and voting. It'll reconvene at 2 o'clock. The speaker has allocated 6 hours for the debate, and sources tell NDTV that Rahul Gandhi is likely to participate. It is also learned that the opposition has submitted 90

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: माँ भी हमेशा पीमार्क मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी।
2: कुछ तो बात है इस दिल में।
3: पीमार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933।
4: याद है ना मैंने क्या सिखाया था? सिल्वर के लिए स्टर्लिंग मार्क, गोल्ड के लिए हॉल मार्क
5: और मस्टर्ड ऑयल के लिए सिर्फ पीमार्क।
6: इस बार तो माँ से भी बेहतर बना।
3: पीमार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933। बरसों से सरसों।
2: कुछ तो बात है इस दिल में।
7: He has tracked the pulse of power from Washington to Korea. Witnessed history being made in global capitals and conflict zones.
8: This location from Tel Aviv
7: brought clarity to complex issues of national security and international affairs.
9: Prime Minister Narendra Modi spoke to him at length yesterday.
10: The Ayatollah Khamenei is gone.
11: There has been a missile attack right behind me.
12: And we need to rush into a shelter.
13: Heading there.
14: Will Prime Minister KP Sharma Oli resign?
7: And now, Aditya Raj Kaul, covering international affairs like no one else, only on NDTV Network.
15: Our pure Shahi Paneer Masala, delicious, healthy, every day.
16: ए युग तुम्हारा, ए रण तुम्हारा, हर चुनौती तुम्हारी, हर शिखर तुम्हारा, तुम्ही हो भारत का स्वाभिमान।
17: हर सेक्टर, हर स्टेट, हर रीजन, हर उम्र के इनोवेटर्स ने दिया जबरदस्त प्रतिसाद। तभी तो वंदे भारतम में एप्लीकेशंस पहुंचे 25,000 के पार और रजिस्ट्रेशन डेडलाइन बढ़कर हुई है 30 जुलाई। आप भी भारत के सबसे बड़े ग्रास रूट इनोवेशन मूवमेंट से जुड़ें। वंदे भारतम.org पर रजिस्टर करें।

0: चाहे जैसे खाओ 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।
1: This is the show where we bring you all the hot and happenings from the world of entertainment and lifestyle.
2: Really?
1: Fashion that made you gag. Films that made you fangirl. Art that made it to the gram and trends that kept us with the program. Let's get it. Hello and welcome to a brand new show. I am your host Mayank Chaudhary and this is Limelight.
3: थोड़े में ज्यादा स्वाद ये हित तो है इसकी खास बात।
4: वाओ मामा क्या स्वाद है।
3: अरे मेरे राजा
5: सबका राजा आकर मसाला।
6: माँ भी हमेशा अपनी मां मस्त स्टाइल में ही खाना बनाती थी।

0: India's para-athletes continue to make the nation proud at the Commonwealth Games in Glasgow. Sharmila Dhankar has clinched gold in the para-short putt with a throw of 9.81 metres, while Shilpa Shaila secured the bronze after a successful protest. Our correspondent Vimal Mohan caught up exclusively with the gold medalist. Take a look.
1: सबसे पहले शर्मिला, पिछली बार आप मिस कर गई थी और सिर्फ 6 साल पहले आपने शुरू किया है शॉट पर फेंकना और 9.81 मीटर फेंक के कितनी बड़ी कामयाबी है आपकी जिंदगी की। बहुत सारी संघर्ष की कहानी है, लोगों को पता चलनी चाहिए कितनी बड़ी जीत है आपके लिए।
2: ये बहुत बड़ी जीत है सर हमारे देश के लिए, हम बहुत खुश है।
1: बहुत खुश है शर्मिला। हाँ,
2: पैरा एथलीट का पहला गोल्ड और ब्रॉन्ज पहला ही है, पहली बार मेडल आया है जी इस कॉमनवेल्थ में।
1: बिल्कुल। और शिल्पा को तो प्रोटेस्ट करना पड़ा, क्यों शिल्पा?
2: हाँ यस सर, शिल्पा ने
1: आपको
2: प्रोटेस्ट नहीं किया सर, नहीं प्रोटेस्ट, उन्होंने खुद ने ही जांच किया है, एक थ्रो उसका नपे था वही उन्होंने जांच किया है।
1: तो आपको गोल्ड ब्रॉन्ज जो मिला है ये ऐतिहासिक कामयाबी है, हिस्ट्री में ये पहली बार हो रहा है एथलेटिक्स में, पैरा एथलेटिक्स के। शर्मिला, आपके लिए मैं एक कहानी, आपकी जो मैं पढ़ रहा था, आपकी कमाल की कहानी है। आपने गार्ड का काम किया है, क्लीनर का काम किया है, खेतों में काम किया है, और
2: मेड का काम,
1: हाँ
2: मेड का भी काम किया है सर, डॉक्टर मैडम
1: मेड
2: हॉस्पिटल
1: का भी
2: में।
1: काम किया है, ये कितनी बड़ी बात है। मतलब वहां से और सिर्फ 6 साल में यहां तक जीतना।
2: बहुत सपोर्ट मिली है हमें पीसीआई से, एसआई से और घर वालों से, तब जाके ये मेडल आया है, अकेले किसी की सपोर्ट से नहीं आया, सबको मिलके अच्छी सपोर्ट की है।
1: और आपका एक और
2: सत्यनारायण
1: सपना
2: सर
1: है,
2: तो हमारी स्टार्टिंग से ही सपोर्ट कर रहे हैं, मैडम
1: सत्यनारायण मेरे
2: उसका
1: भी बहुत अच्छे दोस्त हैं, वो मैं उनको जानता हूँ, काफी इसमें लगे रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं। एक आपका तो एक और सपना है, एक तो ओलंपिक्स का सपना है, और आप अपनी बेटी, आपकी जैवलिन फेंकने लगी है मेरे ख्याल से, तो आप बेटी
2: हाँ
1: के साथ
2: जी
1: मेडल जीतना चाहते हैं।
2: सर, हमारा सपना है कि नेक्स्ट कॉमनवेल्थ में तीनों माँ बेटी खेलें, एक ही छत के नीचे
1: अरे
2: तीन
1: क्या
2: गोल
1: बात।
2: आए।
1: तो शर्मिला, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मुझे लगता है कि जो आप कर रहे हैं, एक आया बनकर के आपने काम किया, गार्ड क्लीनर बन के, और 6 साल के अंदर गोल्ड जीता, आपको लगता है कि दुनिया में कुछ भी असंभव है? कोई भी है, 40 साल की उम्र में जीत रही हैं आप।
2: अगर हम ठान ले तो सर कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है।
1: चलिए सत्या सर, और कितना मेडल है, गोल्ड कितना आएगा और आपके पैरा से?
3: और 1 और 2 गोल्ड आएगा, 2 सिल्वर आने का चांस है, 4 मेडल लेके आएगा। मैं
1: चलिए, मैं
3: पहले भी
1: ज्यादातर
3: बोला
1: नहीं
3: था,
1: करूंगा। जी
3: मैं हमारा 5 to 6 मेडल आएगा, ये कभी भी मैं ये कम बोलता है, ज्यादा लेके आता है।

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: पर जब इंसान प्रकृति के साथ सामंजस्य को आत्मसात कर लेता है तो वो मधुर और लालन पोषण करने वाली बन जाती है। पी मार्क सरसों के तेल ने प्राकृतिक तरीके से सरसों के तेल को बनाया है शुद्धता और गुणवत्ता के साथ।
3: The mustard specialist since 1933, बरसों से सरसों।
4: कुछ तो बात है इस दिल में।
5: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
6: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
7: अरे मेरे राजा।
8: पीओके के फायरिंग रेंज में खड़े हैं।
9: Just few inches away is POK.
8: तो हो सकता है दुश्मन को पता हो कि सैफ अली खान यहाँ पर खड़े हैं। Is it fire?
10: ये युग तुम्हारा, ये रण तुम्हारा, हर चुनौती तुम्हारी, हर शिखर तुम्हारा, तुम्ही हो भारत का स्वाभिमान।
11: हर सेक्टर, हर स्टेट, हर रीजन, हर उम्र के इनोवेटर्स ने दिया जबरदस्त प्रतिसाद। तभी तो वंदे भारतम में एप्लीकेशंस पहुंचे 25,000 के पार और रजिस्ट्रेशन डेडलाइन बढ़कर हुई है 30 जुलाई। आप भी भारत के सबसे बड़े ग्रास रूट इनोवेशन मूवमेंट से जुड़े vandebharatam.org पर रजिस्टर करें।
12: प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी, एवरीडे।
13: दिस इज द शो वेयर वी ब्रिंग यू ऑल द हॉट एंड हैपनिंग्स फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ एंटरटेनमेंट एंड लाइफस्टाइल।
14: रियली?
13: पैशन दैट मेड यू गैग, फिल्म्स दैट मेड यू फैन गर्ल, आर्ट दैट मेड इट टू द ग्राम एंड ट्रेंड्स दैट केप्ट अस विद द प्रोग्राम। Hello and welcome to a brand new show. I am your host Mayank Chaudhary and this is Limelight.

0: चाहे जैसे खाओ 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्म इसलिए स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।
1: आपका पार्सल फिर से हमारे घर पे आया है।
2: कुछ तो बात है इस दिल में।
3: माँ भी हमेशा अपनी मार्क मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी, ये आपके लिए।
2: कुछ तो बात है इस दिल में।
4: P-Mark, the mustard specialist since 1933.
5: Meanwhile, the war of words over the student protests has drawn in BJP MP and actor Kangana Ranaut, whose latest social media posts have triggered fresh political controversy. Now, in a series of Instagram stories, Kangana Ranaut has launched a scathing attack on the Kokro Janta Party and its supporters, describing videos from the protests as puke-inducing, referring to the protesters as Generation Gutter and making disparaging remarks about young women who participated in the demonstration. These comments come at a time when Parliament is preparing to debate the Anti-Paper Leak Bill, which is legislation born out of the very protest that Kangana Ranaut is now criticizing in this manner. You must know that political leaders have been sharply divided over the conduct of the student protests, the police response as well, and now Kangana Ranaut's intervention in the manner in which she's responded as well is likely to intensify an already polarized debate. We've got crucial reactions lined up for you. Listen in.
6: कंगना रनावत ने इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल अगर किया है तो मैं समझता हूँ बहुत ही निंदनीय है, ये कंडेमनेबल है। कंगना रनावत को हर मर्तबा इस तरह की बकवास करने की आदत हो गई है। इनको पूछो नीट का फुल फॉर्म मालूम है? नहीं पता होगा उनको। और आप जेंजी स्टूडेंट छात्र जो हमारे भारत का भविष्य है उनके बारे में ऐसा बोल रहे हो? कि मैं पूरा सुना नहीं, लेकिन आप जो बता रहे हो कि उन्होंने वॉमिट हो रही है और इतनी गंदगी छोड़ गया, अरे किस तरह के आप अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हो? एक कामयाब प्रोटेस्ट रहा, संवैधानिक तौर से प्रोटेस्ट कर रहे थे बच्चे, उनके बारे में आप इस तरह कचरा छोड़ दिया? अरे भाई आपने देखा नहीं वहां के विजुअल? साफ भी कर रहे थे वहां पर बच्चे।
2: ये एक महिला होते हुए भी जिस तरह से ये आंदोलन में बच्ची जो हमारी बेटियां थी उनको प्रताड़ित किया गया, मारा गया, एक बच्ची तो शहीद हो गई, और पुलिस ने जिस तरह से घिनौनी हरकतें की उन बच्चों के ऊपर, उसके बारे में

0: भी है कुछ? पहले वो अपनी डिग्री तो बता दे, वो कितनी पढ़ी लिखी है जो जनरेशन छात्रों को ज्ञान बांट रही है।
1: देखिए, उनके इस कमेंट पर ध्यान ही नहीं देना चाहिए, वो हमेशा उठपटांग बातें करती हैं, देश विरोधी बात नहीं तो क्या है। अगर देश के छात्रों को ये घिनौना कहती हैं तो आप उनकी मानसिकता को समझ सकते हैं, ये स्वस्थ मानसिकता नहीं है। ऐसी बातों पर ध्यान ही नहीं देना चाहिए। कितने लोग कितने तरह की बातें करते हैं, बकते रहते हैं, तो वो क्यों आप लोग ध्यान दे रहे हैं उस पर? आप सोचिए कि उसमें जितने भी लोग यहाँ आंदोलन में थे वो पूरे देश भर से आए थे, उसमें आपके भी घर के बच्चे होंगे, पुलिस कर्मियों के घर के बच्चे होंगे, आईएएस ऑफिसर के घर के बच्चे होंगे। जब पूरा देश यहाँ उपस्थित है और उसको आप घिनौना कहते हैं, तो देश के युवाओं के प्रति आपकी क्या सोच है?
2: Very shocking. This is really the generation that represents the future of India. What is more, they're going to be the largest single voting bloc in next year's general elections in 2029. About 380 million, that is 38 crore of the voters are going to be.
3: Is it correct to call them?
2: Of course not. It's completely wrong. They are the future of our country. We should hail them as those who have rescued our democracy today.
4: मैं दो बात पे जरूर कहना चाहूँगा। कंगना रनौत जी, जहाँ तक पॉलिटिकल बातें हैं, कोई उन्हें सीरियसली लेता नहीं है, और इसलिए मैं तो प्रारंभ से ही हंसी के पात्र रहती है। अगर 2014 के बाद अगर देश स्वतंत्र हुआ, इस प्रकार के मंतव्य करने वाले, मैं समझता हूँ उसको सीरियसली लेना नहीं चाहिए।
5: अच्छा सयानी जी, एक जो है वो ट्वीट आया है कंगना रनौत के बारे में, उन्होंने ये लिखा है कि जेन जी ने प्रधानमंत्री के बारे में डेरोगेटरी काफ़ी सारी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया महिलाओं ने वहाँ पर जो प्रदर्शन कर रही थी, उसके ऊपर में क्या कहना है?
6: देखिए, मुझे लगता है कि जब प्रधानमंत्री जी देश के सबसे बड़े पद में बैठे हुए हैं, सबका सम्मान होना चाहिए। हमारी आवाज़ है, हम आवाज़ उठाए। जेन जी ने अपनी बात रख ली है, उनकी बात सरकार ने सुनी है। ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है, ये हमको कहता है कि डेमोक्रेसी भारत में अभी भी जिंदा है। सम्मान रहे सबका, बच्चों की भी सम्मान रहे और देश के प्रधानमंत्री का भी सम्मान रहे।
7: उनको कोई सीरियसली लेता है क्या? उनको कोई सीरियसली नहीं लेता। उनको कोई स्टूडेंट मूवमेंट का, स्टूडेंट्स एजिटेशन का, डेमोक्रेटिक प्रोसेस का, डेमोक्रेटिक वे ऑफ लाइफ का उनको कोई ज्ञान है क्या? वो हमेशा इस तरह की बातें करते हैं और इस तरह की बातें करके फिर उनके दिमाग में क्या है वो लोगों के सामने आ जाता है।
8: ये एक महिला होते हुए भी जिस तरह से ये आंदोलन में बच्ची जो हमारी बेटियां थी उनको प्रताड़ित किया गया, मारा गया, एक बच्ची तो शहीद हो गई, और पुलिस ने जिस तरह से घिनौनी हरकतें की उन बच्चों के ऊपर, उसके बारे में जरा भी ये नहीं होता एक महिला होते हुए भी? मुझे इस बात का आश्चर्य है।
9: कंगना रनौत ने इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल अगर किया है तो मैं समझता हूँ बहुत ही निंदनीय है, ये कंडेमनेबल है। कंगना रनौत को हर मर्तबा इस तरह की बकवास करने की आदत हो गई है। इनको पूछो नीट का फुल फॉर्म मालूम है? नहीं पता होगा उनको। और आप जेन जी स्टूडेंट छात्र जो हमारे भारत का भविष्य है, उनके बारे में ऐसा बोल रहे होगा कि मैं पूरा सुना नहीं, लेकिन आप जो बता रहे हो कि उन्होंने वॉमिट हो रही है और इतनी गंदगी छोड़ गए, अरे किस तरह के आप अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हो? एक कामयाब प्रोटेस्ट रहा, संवैधानिक तौर से प्रोटेस्ट कर रहे थे बच्चे, उनके बारे में आप इस तरह कचरा छोड़ दिया? अरे भाई, आपने देखा नहीं वहां के विजुअल? साफ भी कर रहे थे वहां पर बच्चे।
10: द कॉकरोच जनता पार्टी हैज क्लेम्ड अ मेजर ब्रेक थ्रू आफ्टर फ्रेश टॉक्स विद द गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव, सेइंग दैट की डिमांड्स ऑन प्रोटेस्टर्स हैव बिगन टू बी एक्सेप्टेड। रिमेंबर, नो केसेस अगेंस्ट प्रोटेस्टर्स वाज वन ऑफ द की कंडीशंस। सीजेपी स्पोक्सपर्सन सौरभ दास कॉल्ड इट अ मेजर विक्ट्री, सेइंग दैट बिहार एंड असम हैव इशूड नोटिफिकेशंस withdrawing cases, releasing detainees and assuring that no further action will be taken against the protesters. In Bihar as well, all cases registered before 6 p.m. on July 26 will now be withdrawn and all arrested protesters will be released. Assam has also decided to withdraw cases linked to the NEET paper leak protest and free those who were detained. The CJP says it's now awaiting similar guarantee notification from the union government and other BJP NDA rule states by tomorrow.
11: दिल्ली पुलिस के रिप्रेजेंटेटिव्स थे जो एक तरह से इंटरलोक्यूटर के तरह काम कर रहे थे हमारे डिस्कशंस के लिए, वो आए थे हमसे मिलने एंड हम लोगों से पूछा कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। हम लोगों ने बताया

0: कि जो वादे किए थे सरकार ने, हमें आशंका है कि वो शायद वादे नहीं रखे जाएंगे। तो वो साथ में ये गवर्नमेंट ऑफ बिहार होम डिपार्टमेंट का जो प्रेस रिलीज है जिसमें उन्होंने बोला है कि सारे FIRs वापस लिए जाएंगे प्रोटेस्टर्स के खिलाफ एंड फ्यूचर में भी कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, वो प्रेस रिलीज लेके आए थे। एंड साथ साथ हम लोग बैठ के ये डिस्कस कर रहे थे कि कौन कौन से दूसरे गवर्नमेंट्स हो सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स, जो ऐसे सिमिलर नोटिफिकेशंस निकाले जिससे प्रोटेस्टर्स को कोई हार्म ना आए। तो ऐसे ही कॉकरोच जनता पार्टी, हम लोग पूरे दिन एंड जब से ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ है हम लोग प्रोटेस्टर्स के लिए काम कर रहे हैं। एंड अभी हम लोगों ने काफ़ी लंबा डिस्कशन किया, ऑलमोस्ट 1.5-2 घंटे हो गए करते हुए, अभी हम लोग निकल रहे हैं। एंड सरकार ने गारंटी दिया है कि कल तक जितने भी हमारे यू नो एप्रीहेंशंस थे कि ये स्टेट में कुछ हो जाएगा वो स्टेट में हो जाएगा, उन सब का नोटिफिकेशंस निकल आएगा एंड प्रोटेस्टर्स एक तरीके से सेफ रहेंगे।
1: हम उम्मीद करते हैं कि अगर एक सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर सरकार की तरफ से एक एग्रीमेंट कर रहे हैं तो उसे ऑनर किया जाएगा, जितनी भी FIRs फाइल की गई हैं उन्हें विड्रॉ किया जाएगा, किसी भी प्रोटेस्टर या ऑर्गेनाइज़र को परेशान नहीं किया जाएगा, डिटेन नहीं किया जाएगा, अरेस्ट नहीं किया जाएगा और फ्यूचर में किसी भी प्रोटेस्टर या ऑर्गेनाइज़र पर कोई केस नहीं होगा। अगर कल तक ये रिटर्न एग्रीमेंट सरकार की तरफ से नहीं आता है और जितने भी अलग अलग राज्यों में छात्रों को, युवाओं को, प्रोटेस्टर्स को अरेस्ट किया गया है या डिटेन किया गया है, उन्हें रिलीज़ नहीं किया जाता है, तो कॉकरोच जनता पार्टी फिर से प्रोटेस्ट करने को मजबूर होगी।
2: जहाँ जहाँ भी हिंदुस्तान में, बिहार में हो, आसाम में हो, बंगाल में हो, महाराष्ट्र में हो, जहाँ जहाँ भी पीसफुल प्रोटेस्ट हुए हैं और जहाँ जहाँ छात्रों को टारगेट किया जा रहा है या प्रोटेस्टर्स को टारगेट किया जा रहा है, वहाँ हम चाहेंगे कि अगर कोई मुकदमा कोई डालेगा कोई भी सरकार, तो हम फिर उसके लिए एक व्यवस्था बनाएंगे ताकि वहाँ कुछ हमारे वकील खड़े हो सकें। तो इसी सोच के साथ हम चाहते हैं कि कोई कार्रवाई नहीं हो, अगर FIR होती है तो FIR विड्रॉ हो।
3: Sonam Wangchuk has reacted to the viral celebrations by the CJP leadership after the protests ended in a message seen as a reminder on grace. Listen into what he said.
4: कुछ देश में हुआ तो उसको खुशी मनाएं, मगर विजय में भी विनम्रता हो, ऐसे ना करें कि किसी के दिल को दुखे। तो इसलिए मैं यही चाहूंगा कि बड़े दिल के साथ और प्यार और मोहब्बत के साथ आगे बढ़े।
3: Prime Minister Modi's video outlining the government's tougher crackdown on paper leaks was briefly restricted on Meta platform of Facebook in India before it was then restored. Meta says the content was removed in error due to a technical glitch and has since been reinstated, with a spokesperson confirming the restoration. Sources, however, say the company has apologized to the government and informed officials that the takedown was inadvertent. However, the government is treating the matter seriously in examining Meta's explanation as well as the sequence of events, and sources add that the global heads of Meta and Instagram have been summoned by the IT ministry for an explanation. Well, let's go across to Tejshree now for more. And Tejshree, so the government not satisfied with the apology and you know the explanation given so far, and now the summoning of the heads of Meta and Instagram?
5: Well, absolutely. If the replies would have been satisfactory, then definitely they would not have been summoned. There was some kind of communication between the officials, between the Ministry of Information and Technology and, of course, with the Meta officials as well. But it doesn't seem like that there is some kind of satisfactory response. That is why they have been summoned. Because remember that 8 to 9 a.m. was that particular time when that video was not visible on Facebook, or rather I should say that it was restricted on these social media platforms. And then several questions were also raised as to what content actually it had that it was restricted on the social media platforms, keeping in mind that this video also had made already a record of having a very wider reach given the time as the video was posted, and just within minutes this video has reached millions of viewers. As that is why as well, you know, as we speak as well, this video is gaining a lot of attention. Post that also we we have seen that Prime Minister has been making a couple of videos as to approach more of a younger generation. Perhaps at that point of time when government is trying to make outreach towards the younger generation, towards the students, towards the youngsters, Meta restricting such kind of videos of Prime Minister Narendra Modi, that is also, you know, quite concerning. And perhaps that is why Meta saying that it was just a glitch, and that is why they have issued an apology. Apology, it doesn't seem like

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: याद है ना मैंने क्या सिखाया था? सिल्वर के लिए स्टर्लिंग मार्क, गोल्ड के लिए हॉल मार्क
2: और मस्टर्ड ऑयल के लिए सिर्फ पी मार्क।
3: इस बार तो माँ से भी बेहतर बना।
4: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933, बरसों से सरसों।
5: कुछ तो बात है इस दिल में,
6: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
7: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
8: अरे मेरे राजा,
9: सबका राजा आकर मसाला।
10: पीओके के फायरिंग रेंज में खड़े हैं,
11: जस्ट फ्यू इंचेस अवे इज पीओके।
10: हो सकता है दुश्मन को पता हो कि सैफ अली खान यहाँ पर खड़े हैं। इज इट फायर?
12: ए युग तुम्हारा, ए रण तुम्हारा, हर चुनौती तुम्हारी, हर शिखर तुम्हारा, तुम्ही हो भारत का स्वाभिमान।
13: हर सेक्टर, हर स्टेट, हर रीजन, हर उम्र के इनोवेटर्स ने दिया जबरदस्त प्रतिसाद। तभी तो वंदे भारतम में एप्लीकेशंस पहुंचे 25,000 के पार और रजिस्ट्रेशन डेडलाइन बढ़कर हुई है 30 जुलाई। आप भी भारत के सबसे बड़े ग्रास रूट इनोवेशन मूवमेंट से जुड़े, vandebharatam.org पर रजिस्टर करें।
14: प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी, एवरीडे।
15: दिस इज द शो वेयर वी ब्रिंग यू ऑल द हॉट एंड हैपनिंग्स फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ एंटरटेनमेंट एंड लाइफस्टाइल।
16: रियली?
15: पैशन दैट मेड यू गैग, फिल्म्स दैट मेड यू फैन गर्ल, आर्ट दैट मेड इट टू द ग्राम एंड ट्रेंड्स दैट केप्ट अस विद द प्रोग्राम। Hello and welcome to a brand new show. I am your host, Mayank Chaudhary, and this is Limelight.

0: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
1: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
0: अरे मेरे राजा,
2: याद है ना मैंने क्या सिखाया था? सिल्वर के लिए स्टर्लिंग मार्क, गोल्ड के लिए हॉल मार्क
0: और मस्टर्ड ऑयल के लिए सिर्फ पी मार्क।
3: इस बार तो माँ से भी बेहतर बना।

0: तुम्हारा, ये रण तुम्हारा, हर चुनौती तुम्हारी, हर शिखर तुम्हारा, तुम ही हो भारत का स्वाभिमान।
1: हर सेक्टर, हर स्टेट, हर रीजन, हर उम्र के इनोवेटर्स ने दिया जबरदस्त प्रतिसाद। तभी तो वंदे भारतम में एप्लीकेशंस पहुंचे 25,000 के पार और रजिस्ट्रेशन डेडलाइन बढ़कर हुई है 30 जुलाई। आप भी भारत के सबसे बड़े ग्रास रूट इनोवेशन मूवमेंट से जुड़े vandebharatam.org पर रजिस्टर करें।
2: प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी, एवरीडे।
3: दिस इज द शो वेयर वी ब्रिंग यू ऑल द हॉट एंड हैपनिंग्स फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ एंटरटेनमेंट एंड लाइफस्टाइल।
4: रियली
3: पैशन दैट मेड यू गैग, फिल्म्स दैट मेड यू फैन गर्ल, आर्ट दैट मेड इट टू द ग्राम एंड ट्रेंड्स दैट केप्ट अस विद द प्रोग्राम। Hello and welcome to a brand new show. I am your host Mayank Chaudhary and this is Limelight.

0: चाहे जैसे खाओ 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज.
1: Meanwhile, the war of words over the student protests has drawn in BJP MP and actor Kangana Ranaut, whose latest social media posts have triggered fresh political controversy. Now, in a series of Instagram stories, Kangana Ranaut has launched a scathing attack on the Cockroach Janata Party and its supporters, describing videos from the protests as puke-inducing, referring to the protesters as Generation Gutter, and making disparaging remarks about young women who participated in the demonstration. These comments come at a time when Parliament is preparing to debate the Anti-Paper League Bill, which is legislation born out of the very protest that Kangana Ranaut is now criticizing in this manner. You must know that political leaders have been sharply divided over the conduct of the student protests, the police response as well. And now Kangana Ranaut's intervention in the manner in which she's responded as well is likely to intensify an already polarized debate. We've got crucial reactions lined up for you. Listen in.
2: कंगना रनावत ने इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल अगर किया है तो मैं समझता हूँ बहुत ही निंदनीय है, ये कंडेमनेबल है. कंगना रनावत को हर मर्तबा इस तरह की बकवास करने की आदत हो गई है. इनको पूछो नीट का फुल फॉर्म मालूम है, नहीं पता होगा उनको. और आप जेंजी स्टूडेंट छात्र जो हमारे भारत का भविष्य है उनके बारे में ऐसा बोल रहे हो, कि मैं पूरा सुना नहीं लेकिन आप जो बता रहे हो कि उन्होंने वॉमिट हो रही है और इतनी गंदगी छोड़ गया, अरे किस तरह के आप अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हो. एक कामयाब प्रोटेस्ट रहा, संवैधानिक तौर से प्रोटेस्ट कर रहे थे बच्चे, उनके बारे में आप इस तरह कचरा छोड़ दिया. अरे भाई आपने देखा नहीं वहां के विजुअल, साफ भी कर रहे थे वहां पर बच्चे.
3: ये एक महिला होते हुए भी जिस तरह से ये आंदोलन में बच्ची जो हमारी बेटियां थी उनको प्रताड़ित किया गया, मारा गया, एक बच्ची तो शहीद हो गई, और पुलिस ने जिस तरह से घिनौनी हरकतें की उन बच्चों के ऊपर, उसके बारे में जरा भी ये नहीं होता. एक महिला होते हुए भी मुझे इस बात का आश्चर्य है.
1: Hello and welcome. You're watching NDTV. I'm Gargi Rawat. Coming up ahead in a few minutes from now, Lok Sabha is expected to debate the Anti-Paper League Bill. This is as Parliament will reconvene. The mission also wants a statement from the government over the use of pellet guns against protesters on July 20th in Delhi. All that and more coming up ahead. First, a look at the headlines we're tracking. The Supreme Court takes note of police action on Jantar Mantar protesters, will form an SIT to probe the violence, issues notice to 5 state police as cops didn't follow protocol laid down by the top court. NDTV has accessed the Delhi police's diary, which clearly mentions that pellet guns were indeed used in Delhi. This was at the behest of the DCP. Delhi police's response is awaited. The opposition demands answers from Home Minister.

0: अमित शाह। Parliament set for another day of showdown. The Lok Sabha to take up the anti-paper leak bill. Rahul Gandhi expected to speak on the bill. The opposition has also demanded a debate on pellet gun use against protesters. BJP MP Kangana Ranaut sparks a controversy after she hits out at Gen Z for the abuse during the protest. She hits out at young Hindu protesters, claims they were only there to flaunt freedom of drugs and endless body counts. Prime Minister Modi's video on stricter actions against paper leaks was briefly restricted on Facebook in India. While Meta has said sorry, the government has summoned the global head of Meta and Insta.
1: Piece of legislation has brought to address the concern of the students of this country and youth of this country. Such an important bill, Honorable Prime Minister is not there, Home Minister is not there.
2: Rajya Mantri baithe hain yahan pe. Aapka vishay to, haan batao aap vishay kya hai.
3: Sir. So before starting the bill, Sadan, we need a clarification from the government.
2: Sadan par patal par rakhe jane wale. Sadan par patal par rakhe jane wale patr. Item number two, Shri Jitin Prasad.
4: Six.
5: Adhyaksh Mahoday.
2: Time ghante, ek minute. Sansadiye कार्य मंत्री जी आप बैठकर आपस में चर्चा कर लेना मैंने आप सुनिए ऐसे नहीं होता है मैंने व्यवस्था 6 घंटे की दी थी दोनों दल और सब दल मिलकर अभी शुरू होने के 1 घंटे बाद आपस में चर्चा करके और मुझे बता देना मैंने व्यवस्था पहले 6 घंटे की दी थी पर संसदीय कार्य मंत्री आप बैठकर चर्चा कर लेना
5: बहनों जी 1 मिनट वेणु जी एक मिनट आप एक मैं बताता हूँ सर आपने घोषणा किया कि इस विधायक पे 6 घंटे का आप टाइम देना चाहते हैं फिर भी आप सदन के नेता सब मिलकर के बात कीजिए आपने वहां से एक निर्देशन दिया था फिर मैंने सब पार्टी के नेताओं से बातचीत किया आज कांग्रेस के चीफ व्हिप और समाजवादी के हमारे चीफ व्हिप और डीएमके के उसके बाद एसपी शरद पवार जी का एनसीपी पार्टी सबसे हमने बात किया तो सबने कहा कि ठीक है 6 घंटे को हम 2 घंटे बढ़ा करके 8 घंटे हम चर्चा करेंगे ये एग्रीमेंट हुआ सब थे हम लोग फिर उसके बाद नहीं फिर अभी मैंने एक मिनट आप मणिकम टेकर को बुला लीजिए आपका चीफ व्हिप है
2: गरम संसदीय कार्य मंत्री झूठ नहीं बोलते यहाँ मणिकम टेकोर था उनसे बात करके आए थे
5: और मैं
2: बुलाया मणिकम टेकोर को हाँ मेरे को आपने कहा मैंने आपको कहा मैंने संसदीय कार्य मंत्री
5: ठीक है मैं यहाँ सदन में कहता हूँ वेणुगोपाल जी अगर आप 2 घंटा एक्स्ट्रा चाहिए सरकार कोई आपत्ति नहीं रखता है एक बार मिलकर के तय कर लेंगे अभी अभी स्पीकर साहब ने कह दिया हम और 1 घंटा बढ़ाने में हमारा कोई आपत्ति नहीं है सरकार
2: आप कितने आप बता दे कितने घंटे की बात करना चाहते हैं
5: इसलिए मैंने क्रम पर बोला पहले आपने 6 घंटे बोला फिर बाद में 8 घंटे बोला 8 घंटे के बाद भी और भी समय चाहिए तो हम 10 घंटे के लिए तैयार है
2: ठीक है ओके ओके ठीक चलिए प्लीज बैठ जाइए अव्यवस्था जम गई जब बीएससी नहीं होती तो सदन का सेंस लिया जाता है इसलिए सदन का सेंस बन गया है ठीक है आगे बढ़ें सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र आइटम नंबर 2 जितिन प्रसाद जी
6: अध्यक्ष महोदय मैं आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 2 पर मेरे नाम के समक्ष उल्लेखित पत्रों को सदन के पटल पर रखता हूँ
2: आइटम नंबर 3 श्री रामनाथ ठाकुर

0: मैं अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की पुनरीक्षित कार्यसूची में क्रम संख्या 3 पर अपने नाम के समक्ष दर्ज पद सभापटल पर रखता हूं।
1: आइटम नंबर 4 श्री नित्यानंद राय
2: मेघवाल जी।
1: अर्जुन मेघवाल जी।
3: धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, मैं आपके अनुमति से लोकसभा की संशोधित कार्यसूची के क्रम संख्या 4 पर अंकित दस्तावेज जो श्री नित्यानंद राय साहब के नाम के आगे अंकित है, आपके अनुमति से सदन के पटल पर रखता हूं। धन्यवाद।
1: आइटम नंबर 5 श्री एसपी सिंह बघेल।
4: मैं आपकी अनुमति से आज की लोकसभा की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 5 पर मेरे नाम के आगे उल्लिखित पत्र सदन के पटल पर रखता हूं।
1: आइटम नंबर 6 श्री बीएल वर्मा जी।
5: आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज लोकसभा की संशोधित कार्य सूची में क्रम संख्या 6 पर अपने नाम के सम्मुख अंकित पत्र स्वापत्र पर रखता हूं।
1: आइटम नंबर 7 श्री बंडी संजय कुमार।
6: मैं आज की पुनरीक्षित कार्य सूची में क्रम संख्या 7 पर मेरा नाम के सम्मुख लिखित सभापट पर रखता हूं।
1: आइटम नंबर 8 श्री पवित्रा मार्गेटा जी।
7: So, with your permission, I rise to lay on the table of the House paper mentioned against my name at serial number 8 of the Minister of Textiles as per today's revised list of business.
1: Item number 9, Srimati K. Kanimoji. Aap sadan ke patal pe Sri Rao Rajendra Singh ji. Chali, koi baat nahi, ho jata hai. Item number 10.
8: सर,
1: आप रखना चाहते हैं? अच्छा, राव साहब रख दें।
8: आदरणीय अध्यक्ष इशी
1: राव साहब रख दें, कोई बात नहीं।
8: आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आज की कार्य सूची में अपने नाम के समक्ष यथा सूचीबद्ध उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति के 17वें और 18वें प्रतिवेदन की एक एक प्रति हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण प्रस्तुत करता हूँ।
1: आइटम नंबर 10 श्री जितिन प्रसाद जी।
9: रिस्पेक्टेड सर, विद योर काइंड परमिशन आई मेक अ स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्टेटस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रिकमेंडेशंस कंटेन्ड इन द 195th रिपोर्ट ऑफ द स्टैंडिंग कमिटी ऑन कॉमर्स ऑन डिमांड फॉर ग्रांट्स 26-27, डिमांड नंबर 10 पर्टेनिंग टू द डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री।
1: आइटम नंबर 11 श्री रामनाथ ठाकुर जी।
0: माननीय अध्यक्ष जी महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की कार्यसूची क्रम संख्या 11(1) में वर्णित कृषि एवं किसान कल्याण विभाग कृषि एवं कल्याण।
10: All right, so there you can see business being conducted in the Lok Sabha, and this is as we're expecting the debate on the anti-paper leak bill that was tabled yesterday in the Lok Sabha to take place today. 6 hours that debate is expected to continue. Rahul Gandhi is expected to speak. Priyanka Gandhi Vadra is going to be leading the debate as well, and many of the young MPs from the BJP are also going to be addressing Parliament on the bill. However, remember there have been continuous disruption since yesterday and today as well. There were disruptions because the opposition wants Home Minister Amit Shah to speak in Parliament to give an answer on why pellet guns were used against the student protesters at Jantar Mantar the day that the student protesters were marching to Parliament. Remember, there was a massive showdown and the police, then there was violence as well, and there have been allegations back and forth as to how the violence was sparked. The Supreme Court is also has taken up a petition on this issue and is going to be forming an SIT to look into the violence. But meanwhile, what has been proven, and NDTV too has reported on this and actually accessed the police diary, that yes, pellet guns were indeed requisitioned on that day to control the mobs. We will go back to what's taking place in the Lok Sabha. But first, let's go across to Aishwarya. Aishwarya, tell us what's happening. When is this debate on the anti-paper leak? Well, let's listen into what's taking place in the Lok Sabha.
1: Item number 14, Lok Pariksha Anuchit Sadhan Nivaran Sanshodhan Vidhek 2026. Mane Mantri ji, kuch rakhna chahte hain? Ek minute. Mane Mantri ji, ek minute. Mane Sadashigan, aaj ka din hum sab ke liye mahatpoorn hai. जब सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों इस विधेयक पर चर्चा के लिए सहमत हुए, ये विधेयक

0: लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 में संशोधन करने का प्रस्ताव करता है। इसका उद्देश्य लोक परीक्षाओं की निष्पक्षता, पारदर्शिता तथा विशिष्टता की ओर अधिक सुदृढ़ बनाना है तथा प्रश्न पत्र लीक, संगठित परीक्षा अपराधों एवं अनुचित साधनों पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए विधि व्यवस्था को और सशक्त बनाना है। परीक्षा प्रणाली की विशिष्टता और पारदर्शिता राष्ट्रहित का महत्वपूर्ण विषय है। इस विषय पर व्यापक चर्चा, गंभीर विचार विमर्श इस सदन में होना आवश्यक है। पूरा देश चाहता है कि सभी माननीय सदस्य इस विषय पर सार्थक विचार विमर्श करें, अपने अनुभव साझा करें, अपने विचार रखें और रचनात्मक सुझाव रखें ताकि हम एक बेहतर कानून बना सकें। कानून जितना बेहतर होगा, मेरा मानना है, परीक्षा प्रणाली के अंदर विशिष्टता और प्रामाणिकता भी हम सुनिश्चित कर पाएंगे। इसलिए मेरा सभी माननीय सदस्यों से आग्रह है कि हम इस चर्चा को सकारात्मक रूप से संसदीय परंपराओं, नियमों और मर्यादाओं के अनुरूप रखें ताकि एक अच्छा सकारात्मक देश हमारे देश के युवा विद्यार्थियों के बीच में जाए। माननीय मंत्री महोदय,
1: अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधक विधेयक 2026 पर विचार किया जाए।
2: बोलो
1: स्पीकर सर, दिस बिल विच वॉज इंट्रोड्यूस यस्टरडे इज इन फैक्ट एन अमेंडमेंट टू द अर्लियर बिल पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024, विच वॉज ऑल्सो ब्रॉड बाई दिस गवर्नमेंट and not only broad, it was perhaps the first of its kind in the history of independent India. The earlier bill and the amendment today are in a way a reaffirmation of this government's deep commitment to safeguard the welfare of the students and the youth of this country. And at the same time, it is also a reiteration of Prime Minister Modi ji's resolve not to allow anyone to compromise with the future of the children of Mother India. And therefore, this bill can be described in a way as a milestone legislation in the history of इंडियन पार्लियामेंट। अब ये जो एग्जामिनेशन को लेकर के तरह तरह की वारदातें होती रही या पेपर लीक भी होता रहा, ये केवल किसी एक प्रदेश या एक प्रांत तक सीमित नहीं रहा, ऐसा पहले भी होता था। अलग अलग पार्टियों की सरकारें रही, अलग अलग प्रदेश रहे, सूची लंबी है, लेकिन केवल याददाश्त ताजा करवाने के लिए कुछ एक ऐसे वारदात जो बहुत ज्यादा समाचार सुर्खियों में रहे, 2019 में रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का एग्जामिनेशन, वो भी इन्हीं कारणों से, लेकिन शायद उस समय उस तरह की कार्रवाई नहीं की गई जिस तरह की अब प्रस्तावित की जा रही है। 2011 में ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन, 2009 में हो गया, 2012 में 2009 में रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, 2011 में वेणुगोपाल जी बाई चेंजिंग फिगर्स और डिजिट्स यू कैन नॉट चेंज द रिकॉर्ड सो इट इज ऑन रिकॉर्ड 2009 रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड 2011 आई विल गो ऑन एंड ऑन द लिस्ट इज वेरी लॉन्ग देन 2011 ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2012 एम्स न्यू दिल्ली एंट्रेंस पेपर लीक 2013 महाराष्ट्र सेकेंडरी सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन सो इफ आई गो ऑन एंड ऑन देन आई विल नॉट बी एबल टू टॉक अबाउट द बिल एज सच बट द लिस्ट इज ओके 2010 ओके इफ दैट सेटिस्फाइज ओ इफ दैट सेटिस्फाइज यू यू आर वेलकम यू आर वेलकम यू आर वेलकम 2010 बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन उत्तर प्रदेश 2012 तमिलनाडु पब्लिक सर्विस कमीशन आई कैन गो ऑन टिल यू आर सर्टिफिकेटेड 2009 वेस्ट बंगाल जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम सो देयरफॉर इट वॉज रियलाइज्ड बाय दिस गवर्नमेंट दैट we need to have an exclusive legislation usi par aa rahe hain usi par aa rahe hain i am following a chronology unfortunately the chronology starts from the earlier times aur isliye ye socha gaya ki overall public examinations ko lekar ke ek vyapak samuhik vyavastha vidhek laya jaye bharat sarkar mein char pramukh recruitment agencies hain जैसा कि हम सब जानते हैं यूपीएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड और इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल और इसी तरह से हायर एजुकेशन एडमिशंस के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी उसका गठन भी 2017 में किया गया था इसी सरकार द्वारा अब आप कह रहे हैं कि डेट्स क्यों बता रहा है वो इसलिए के 1992 में फर्स्ट टाइम देर वॉज अ रिकमेंडेशन मेड टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देन हेडेड बाय द कांग्रेस पार्टी दैट देर शुड बी अ कॉमन टेस्टिंग नेशनल एजेंसी इट वॉज 1992 देन इन 2010 ड्यूरिंग यूपीए रूल देर वॉज अगेन अ कमिटी विच सजेस्टेड आई डोंट नो वाई दिस वॉज नॉट गिवन ड्यू कंसिडरेशन फॉर वट एवर रीजन्स and for whatever interest so I think you must compliment prime minister modi and this government it has finished an unfinished task which you should have accomplished aur isliye for the first time in 2024 this bill was brought in It was brought in the month of January 2024, enacted in February 2024, implemented in June 2024, and notified also the same month. अब इस विधेयक के जो मूल उद्देश्य थे और basic objectives, to give more credibility and transparency to examination in whatever form, to reassure the students that they would be rewarded for their genuine sincere efforts and also to ensure that their future is safe aur isse pehle jaise maine kaha there was no comprehensive law available to deal with such cases is bill ko aur ye jo act laya gaya 2024 ko it was made as I said it was applicable to all these agencies that I have just now mentioned it was made not bailable non-compoundable such offences were made absolutely cognizable and also liable to invite stringent punishment ab us bill ki detail mein main nahi jaunga kyunki abhi uttar karne dene ke samay bhi rahega lekin aap is baat se to sehmat hoge ki haliya jo ghatnakram raha hai uska sangyan lete hue pradhanmantri swayam ne ye nirnay liya कि हमें इसी विधेयक को थोड़ा और मजबूत करने की आवश्यकता सो वी लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ द 2024 एक्ट एंड द सब्सिक्वेंट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स like any responsible government should do. And therefore, this amendment is being brought in to make the law more stringent, A, and to ensure speedy justice, so that the credibility of all these exams gets enhanced and gets reinstated. Mota mota is me, because then we have others to speak, and finally I'll come out with the reply. Jo subsection 1 of section 10 tha, usme tha ki any person or persons involved will be liable to a punishment not less than 3 to 5 years and a fine up to 10 lakh. Aaj ye jo amendment laya ja raha hai, iske tahat the same duration of imprisonment has been made not less than 5 to 10 years and fine up to 50 lakh. The section 2 of section, subsection 2 of section 10, isme tha ki service provider. Now who is service provider? Service provider also, we have tried to cover a wide range so that nobody goes scot-free. I'll just read out the definition of service provider which has been provided in this amendment. Service provider means any agency, any organization, any body, any association of persons, any business entity, any company, any partnership or single proprietorship firm, including its associates, subcontractors and provider of support of any computer resource or any material by whatever name it may be called, which is engaged by the public examination authority for the conduct of public examination. So service provider ke liye saza pehle bhi kafi mazboot thi. There was fine up to 1 crore in the 24 act, usko badha karke ab 5 crore kiya ja raha hai. Iske saath saath, the recovery of the proportional cost of exam, aur sabse mahatvapurn ke 2024 ke kanoon mein ye bhi likhit tha ke the provider will be barred from

सेक्शन 10 डायरेक्टर और सीनियर मैनेजमेंट जो उसके इंचार्ज होंगे इवन दे विल नॉट बी स्पेयर्ड। कई बार ऐसा हो जाता है कानून में कि जो इमीडिएट हैंडलर है उसको पनिशमेंट हो जाती है। सो दिस एक्ट सीक्स टू इंक्लूड ऑल इन्वॉल्व डायरेक्टली इनडायरेक्टली वन वे और द अदर सो दैट इट सेट्स अ डिटरेंट एग्जाम्पल ऑल्सो फॉर अदर्स। तो सीनियर डायरेक्ट मैनेजमेंट पर्सन और डायरेक्टर के लिए द इम्प्रिजनमेंट वॉज 3 to 10 years इन द अर्लियर एक्ट, वी आर इंक्रीजिंग इट टू 5 to 10 years एंड द फाइन वॉज अप टू 1 crore, इट हैज बीन इंक्रीज टू 5 crore। एंड फाइनली द ऑर्गेनाइज क्राइम कमिटर्स वेयर देर इज अ माफिया गैंग फाउंड, देर इज अ नेक्सस फाउंड एज वी हैव एक्सपीरियंस। I am not accusing any government, not finding fault. As I said right in the beginning, it is a malaise. It is an issue which is being faced by almost every state and UT of this country, regardless of whichever party in power. It is happening in Punjab. It is happening in Karnataka also, whether we name those states or not. So organized crime, that is examination authority or service provider institution, whatever, in that case the imprisonment earlier was 5 to 10 years, it's been increased to 7 to 10 years, and the fine was earlier up to 1 crore, it is now proposed to be increased to 10 crore. Aur sabse mahatvapurna baat jiska pradhanmantri ji ne video ke madhyam se zikr bhi kiya, to ensure speedy justice we will have special fast track courts established only for the cases dealing with unfair means in examinations. Aur chahe wo special task force ho chahe wo central jaise, because this bill and the earlier bill also entitles the government or the authorizes the government to pass this on to any central agency or to special task force or even where the police PRC is conducting, उनके लिए सेक्शन 12 ए हैज बीन एडेड टू दिस अर्लियर बिल विच प्रोवाइड्स फॉर स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट्स। अब उसमें भी हमने एक समय सीमा तय कर दी है, द इन्वेस्टिगेशन हैज टू बी कंप्लीटेड विद इन अ स्पैन ऑफ 2 months रिगार्डलेस ऑफ वेदर इट इज अ सेंट्रल एजेंसी और अ स्पेशल टास्क फोर्स, और 2 महीने के भीतर सारी जांच इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल की जाएगी और उसके बाद जो भी ट्रायल कोर्ट होगा, जो अभी इस केस में इज गोइंग टू बी ए फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट, उसमें ये 3 महीने, यानी जिस दिन वारदात रिपोर्ट हुई है उस दिन से लेकर के आखिरी निर्णय आने तक 5 महीने से ज्यादा अवधि काल नहीं रहा जाएगा। सो आई थिंक दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट्स इनकॉर्पोरेटेड इन दिस अमेंडमेंट। और उसके बाद भी अगर कोई अपील करना चाहे तो अपील विल नॉट बी लेस देन डबल बेंच ऑफ हाई कोर्ट एंड अपील विद इन 30 डेज, दैट टू इफ देर आर जस्टिफाइबल ग्राउंड्स टू सेटिस्फाई द क्राउन। इसके साथ ही साथ इससे जुड़े जो और जुर्म होंगे, जो और क्राइम होंगे, दे विल ऑल्सो नॉट गो अनअटेंडेड और स्कॉट फ्री। जो हमारी भारतीय न्याय समिति के प्रावधान है उसके अंतर्गत उनका भी निवारण करने का प्रावधान रहेगा। और इसलिए मेरा ये निवेदन है कि एक बड़ा ही महत्वपूर्ण विधेयक लेकर के आए हैं हम, और सरकार की प्रतिबद्धता का आप इसी बात से अनुमान लगा सकते हैं कि इसी विधेयक के लाने के साथ ही साथ हमारे लॉ मिनिस्टर साहब की ओर से भी एक प्रस्ताव जारी कर दिया गया कि वक्त जाया ना हो तो ये जो स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट्स है इनको स्थापित करने का भी क्रम साथ ही साथ प्रारंभ किया जाए। उसमें दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड में पहले ही इन्होंने गठित कर दिया है और आने वाले दिनों में बाकी स्थानों पर भी। इसके साथ ही साथ अभी कल ही प्रधानमंत्री जी ने एक महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए एक टास्क फोर्स

ऐलान किया है टू रिकमेंड रिफॉर्म्स टू मेक द एग्जाम्स सिस्टम्स लीक प्रूफ। उसमें कुछ एक बड़े वरिष्ठ लोग सम्मिलित किए गए हु बिलोंग टू द वर्ल्ड ऑफ एकेडमिक्स, वर्ल्ड ऑफ टेक्नोलॉजी एंड हु आर नोन टू हैव एक्सपर्टाइज एंड एक्सपीरियंस इन दीज डोमेन्स। मिस्टर नंदन निलेकानी, को फाउंडर इन्फोसिस, मिस्टर एस सोमनाथ, इसरो चीफ, टपन डेका एक्स डीआईबी, मिस्टर वी कामाकोटी, डायरेक्टर आईआईटी मद्रास चेन्नई, और इसी तरह से हमारे दो और मेंबर भी उसमें शामिल हैं, एक फॉर्मर सेक्रेटरी एजुकेशन और एक टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट। और साथ ही साथ जो राधा कृष्ण कमेटी गठित की गई थी 22 जून 2024 में, उसमें से जो मोटी मोटी 46 की रिकमेंडेशंस थी, उसमें से भी लगभग 76% अर्थात 35 इम्प्लीमेंट हो चुकी है। तो कहने का कुल मिलाकर के तात्पर्य है, बहुत समय ना लेते हुए, कि सरकार की नीति बड़ी ईमानदार है और ये संशोधन भी एक बड़े ईमानदाराना प्रयास के तहत लाया जा रहा है। और मुझे विश्वास है कि किसी भी दल के नेता को या किसी भी पार्टी के किसी

0: entire country is concerned about this subject matter. So very important issue. The people of the country, people in the country who like to make so many suggestions, experts who like to submit so many suggestions. So my amendment to the motion moved by the Honorable Minister is that the bill be circulated for the purpose of eliciting public opinion thereon by 1st December 2026 so that the bill can be made more fruitful. I am moving the amendment.
1: Okay. Shri Gaurav Gogoi.
2: धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. इस बिल पर प्रारंभ करने से पहले मैं आपका ध्यान असम में हुए बाढ़ और वहां पर लगभग 70 व्यक्तियों की मौत की तरफ आकर्षित करता हूं और इस सदन से बड़ी पीड़ा मन से, बड़े दुखी मन से केंद्र सरकार से असम के लोगों के लिए एक विशेष पैकेज की मैं गुजारिश करता हूं. सर, मैं शुरुआत करता हूं इस बिल से और अभी हमने आदरणीय मंत्री जी के वक्तव्य सुना और उनके बात और इस संशोधन वाले बिल का विवरण पढ़ के साफ साफ पता चल जाता है कि ये सरकार शिक्षा विभाग को लेकर गंभीर नहीं है, सुधार नहीं लाना चाहती. ये सिर्फ एक दिखावा का बिल है क्योंकि ये बिल एक संशोधन बिल है. आज से 2 साल पहले ये बिल लाया गया था, पब्लिक एग्जामिनेशंस प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर एक्ट 2024. उस समय में भी एक यूजीसी एक ये नीट के 2024 के परीक्षा को लेकर पूरे देश भर में लोगों के मन में व्यापक चिंता थी. उस समय में भी इसी तरह आज जैसे मंत्री जी कह रहे हैं, सरकार ने इस बिल का इंट्रोडक्शन करते हुए यह कहा कि यह बहुत ही एक ऐतिहासिक कदम है, एक बहुत बड़ा कदम है और इससे शिक्षा विभाग सुधरेगा और इससे परीक्षा में जो पेपर लीक होते हैं अब नहीं होगा, अब किसी का साहस नहीं होगा. ऐसे ऐसे कड़े दंड उस समय सरकार ने कहा कि 2024 के बिल में वो लाए हैं. तो जो 2024 के नीट यूजी पेपर लीक पे जो तहकीकात हुई, जो इन्वेस्टिगेशन हुआ, मैं पढ़ना चाहता हूं उसकी स्थिति आज क्या है ताकि पता तो चले कि ये सरकार 2 साल पहले जो नीट परीक्षा को लेकर जो व्यापक भ्रष्टाचारी हुई उसको लेकर यह सरकार कितनी गंभीर है. बहुत दुख के साथ मैं कहना चाहता हूं कि एक अखबार में आर्टिकल आया 2026 में कि जो 45 व्यक्ति थे जो चार्जशीट हुए थे नीट यूजी 2024 पेपर लीक के मामले में, 45 में से 44 को बेल मिल चुका है. ये है इनकी गंभीरता, ये है इनके छात्रों के प्रति इनकी संवेदना. जो मूल व्यक्ति है जिसको मास्टरमाइंड कहा जाता है, संजीव मुखिया, 11 महीने तक वो फरार था, 11 महीने तक सरकार उसको पकड़ नहीं पाई. अप्रैल 2025 में वो फाइनली उसका गिरफ्तार हुआ और फिर उस मामले में उसको बेल मिल गया. मई 6, 2025 एक दूसरे व्यक्ति रंजीत कुमार बरुआ जो करियर एकेडमी एजुकेशन ट्रस्ट के चेयरमैन है वो बेल. एक अमित कुमार सिंह जो पेपर सॉल्वर के गैंग में था उसको मई 7, 2025 को उसको बेल. एक पंकज कुमार जो कैंडिडेट्स को वो सारे कागज लीक करता था मोबाइल फोन के द्वारा, मई 15, 2025 उसको बेल. राकेश जिसका ये आरोप था कि उसने प्रश्न कागज को उसकी चोरी की, उसको बेल. तो ऐसे एक लंबा ब्यौरा है, चाहे वो अमित प्रसाद महाराणा का हो या धीरेन्द्र कुमार पांडा का हो. तो ये कानून उस समय भी विफल था और ये कानून जिस मंशा से आज ला रही है आज भी ये विफल होगा. ये कानून आपकी विफलता का स्मारक है क्योंकि ऐसे कानून 2024 के में लाने के पश्चात भी 2026 में तो लीक हुआ ना सर. अगर कानून

0: इतना ही सशक्त था, तो आज 2 साल बाद ही इतना बड़ा व्यापक लीक कैसे हुआ? और अफसोस की बात है सर, उस समय में भी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान थे, और जब 2024 का जब पेपर लीक का मामला जब पूरे देश भर में आया, तो आपको पता है धर्मेंद्र प्रधान जी ने उस समय क्या कहा? उन्होंने कहा, कहां हुआ पेपर लीक? नहीं हुआ पेपर लीक। और आज भी पहले 2.5 महीने तक तो उनका रवैया यही था कि कहीं कोई धांधली नहीं हुई, सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, 21 बच्चों की जान गई, आत्महत्या उन्होंने की, आपको शर्म नहीं आती इस सरकार को कि जिस मंत्री के तहत में 21 बच्चों ने अपनी जान गंवा दी, आत्महत्या की, जब उसने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दिया, कल जब वो सदन में आए आपने उनको ऐसा माला पहनाया ताकि जैसे वो पाकिस्तान से जंग लड़के आए हैं, ऐसा माला पहनाया, ऐसा उनका वजूद उनको बड़ा किया मानो कि वो पाकिस्तान से जाकर सीमा पे जाकर जंग लड़के आए हैं। ये है उनकी सच्चाई। दुख लगता है सर, आज ये बात प्रधानमंत्री आते हैं इंस्टाग्राम के रील पर, वो अलग बात है कि जो पहली कैबिनेट बैठक हुई उस कैबिनेट बैठक में शिक्षा को कैसे सुधारा जाए, पेपर माफिया को कैसे खत्म किया जाए, पेपर सेटर के माफिया को कैसे खत्म किया जाए, पेपर सॉल्वर के माफिया को कैसे खत्म किया जाए, टेस्टिंग सेंटर के माफिया को कैसे खत्म किया जाए, प्रिंटिंग प्रेस के माफिया को कैसे खत्म किया जाए, कोचिंग सेंटर के माफिया को कैसे खत्म किया जाए, सिलेबस कैसे स्कूल के सिलेबस के साथ मिले, आउट ऑफ सिलेबस परीक्षा के पेपर ना आए, CBSE के OMR में धांधली न हो, इन सब चीजों पर व्यापक चर्चा करने के बजाय प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं इंस्टाग्राम पर और ध्यान दो, इंस्टाग्राम पर और ध्यान दो। और प्रधानमंत्री जब आते हैं हाई पावर कमिटी की बात करते हैं, तो 2 साल पहले जो के राधा कृष्ण की जो हाई कमिटी थी उसका क्या हुआ? 2 साल हाई कमिटी आपने गठन की, प्रधानमंत्री केंद्र सरकार के निरीक्षण में एक हाई कमिटी बनी, के राधा कृष्ण फॉर्मर इसरो के चेयरमैन। अगर वास्तविक में उन्होंने इतना बढ़िया काम किया तो 2 साल पश्चात ही आज क्यों दोबारा ऐसा पेपर लीक हुआ? सरकार ये दिखाना चाहती है कि ये बहुत गंभीर है। पिछले कुछ दिनों में पता चला कि NTA के लगभग 47 लोगों को बदला गया। सर, मैं इस सरकार से मैं ब्यौरा चाहूंगा कि वे जो 47 लोग हैं जिनको आपने ट्रांसफर किया या सस्पेंड किया, कौन है वो? क्योंकि NTA की जो एक्चुअल सैंक्शन कैपेसिटी है, NTA की जो सैंक्शन कैपेसिटी है वो 34 की है, 34 की सैंक्शन कैपेसिटी है। ये 47 कौन है ये 47? 34 में से तो शायद 10-11 वैकेंसियां हैं, 24 ही है जहां पर लोग बैठे हुए हैं। तो ये जो 47 जो सैंक्शन, ये कौन है जो आउटसोर्स करके अपने लोगों को लाया NTA में, वो लोग हैं क्या? उसका ब्यौरा मिलना चाहिए। हम जानना चाहते हैं आपने NTA के DG को बदला और NTA के चेयरमैन को रखा, ऐसा क्यों? आपको NTA के DG पर विश्वास नहीं, आपने मान लिया कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा होना चाहिए, आपने ये भी मान लिया, तो आपको NTA के चेयरमैन पर इतना विश्वास क्यों? ये हम जानना चाहते हैं। सुनाई दे रहा होगा सर, एक विशेष संगठन के साथ जुड़े हुए हैं, उसका ब्यौरा देख लीजिए, NTA के चेयरमैन का ब्यौरा देख लीजिए। इससे पहले वह मध्य प्रदेश के पब्लिक सर्विस चेयरमैन के कमीशन के चेयरमैन थे, और उस समय में भी धांधली हुई। उससे पहले वह छत्तीसगढ़ में भी पब्लिक सर्विस कमीशन में चेयरमैन थे, उस समय में भी धांधली हुई। ऐसे इतने धांधली से जुड़े हुए व्यक्ति को आज भी इतने पेपर लीक होने के पश्चात भी आपकी सरकार बचा रही है। जिस NTA के द्वारा 21 बच्चों ने आत्महत्या की, आज भी वो चेयरमैन बचा हुआ है। क्यों? क्योंकि वो एक विशेष संघ के साथ जुड़ा हुआ है। और यही दर्शाता है कि आप शिक्षा विभाग में आप सुधार नहीं चाहते, क्योंकि आरएसएस के लिए शिक्षा विभाग बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है, महत्वपूर्ण विभाग है। मैंने कोई असंसदीय बात नहीं की, आरएसएस के लिए शिक्षा विभाग बहुत महत्वपूर्ण विभाग है। और इसीलिए हम देखते हैं, चाहे यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर्स के अपॉइंटमेंट में हो, कॉलेज के प्रिंसिपल के अपॉइंटमेंट में हो, जब फैकल्टी की बदली होती है उसमें हो, चाहे आउटसोर्सिंग में हो, हर चीज में हम देखते हैं कि जो यूनिवर्सिटी, जिन यूनिवर्सिटी की कल्पना पंडित नेहरू ने एक साइंटिफिक टेंपर के द्वारा उन यूनिवर्सिटीज के एक सपना देखा था, आज उन्हीं यूनिवर्सिटीज में क्वालिटी पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। आप शिक्षा के माध्यम से इस पीढ़ी को आने वाले चुनौतियों के लिए तैयार नहीं कर रहे, आप शिक्षा के माध्यम से इस पीढ़ी के लोगों को आने वाले समय में आपके दल के सदस्य बने, आपको वोट दे, उसके लिए आप एक माहौल बना रहे हो। यह है आपके लिए शिक्षा का उद्देश्य, यह है शिक्षा का उद्देश्य। और हमने देखा कि वे जो संस्थाएं, चाहे वो आईआईटी हो, चाहे जेएनयू हो, चाहे डीयू हो, देश भर से माता पिता अपने बच्चों को बोल रहे कि जाओ दिल्ली जाओ, अगर दिल्ली नहीं जा सकते तो बॉम्बे जाओ, बिहार में जाओ, लेकिन धरना प्रदर्शन करो। आज शिक्षा की बात है, आपको अपना भविष्य आपको बचाना है। मैं नहीं जा सकता पर मेरी आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। एक माँ ने एक आशीर्वाद के साथ अपने बेटी को भेजा, एक बाप ने अपने बेटे के पीठ पे थपथपाकर उसको जंतर मंतर पे भेजा, और डीयू आईआईटी जेएनयू कहती है आप मत जाओ, छात्रों को कहती है अगर आप जाओगे तो आपके करियर पर प्रभाव बन सकता है। यह है शिक्षा की संस्थाएं। ऐसे हम आने वाले पीढ़ी, आने वाले चुनौतियों के लिए हम भारत का निर्माण करेंगे, अपने युवाओं को हम उनको ताकत देंगे। इसीलिए अगर एक बात इस पूरे घटनाक्रम से निकलती है वो ये है कि आज शिक्षा में ये इस बिल से, जिसमें आपने पेनल्टीज बढ़ा दिए, पनिशमेंट बढ़ा दिए, इससे हमारा शिक्षा विभाग नहीं सुधरेगा। राहुल गांधी जी बार बार कहा कि धर्मेंद्र प्रधान जी सिर्फ एक मुखौटा है आपके शिक्षा विभाग, आपकी शिक्षा के प्रति जो उनका, आपकी जो नीति है वो सिर्फ एक, उसका एक चिन्ह है, एक सिंबल है। उनके हटने से भी शिक्षा में सुधार आएगा? आज भी ना बच्चों को विश्वास आता है इस बात पर, ना हमें इस बात पर विश्वास है। लेकिन इसके पश्चात भी आज शिक्षा पर बातचीत हो रही, आज शिक्षा को लेकर धरना हो रहा है, आज शिक्षा को लेकर जंतर मंतर में हजारों की तादाद पर लोग इकट्ठित हुए, आज शिक्षा के विषय पर सारे दल संगठन सबने अपने अपने प्रदेशों में, चाहे महाराष्ट्र में हो, चाहे यूपी में हो, चाहे बिहार में हो, चाहे पश्चिम बंगाल में हो, चाहे या असम में हो, सब जगह विभिन्न राजनीतिक दल संगठन और इन दल संगठन से अलग सारे युवा सड़क पे आ गए, सबने अपने शिक्षा की मांग की। और क्यों मांग की? उनके दुख को पहले हमें समझना चाहिए, उनके पीड़ा को हमको समझना चाहिए, वो उनके अंदर जो नाराजगी है उस बात को हमें समझना चाहिए। नहीं तो किसी का इतना साहस नहीं कि सड़क पे आके गर्मी बारिश, सड़क पे सोना, पुलिस की लाठी खाना, दिन दिन भूख हड़ताल पे रहना, सबकी इतनी साहस नहीं है। ये साहस कहां से आता है? ये साहस आता है उस दर्द से, जिस दर्द में अपने भविष्य को लेकर वो विवश है, जिस दर्द में अपने देश के भविष्य को लेकर वो विवश है, जिस दर्द को वो आज के समाज में उसको व्यक्त भी नहीं कर सकते, सरकार से सवाल भी नहीं पूछ सकते। और बहुत ही बढ़िया एक व्यक्ति ने इस पूरे जो दर्द है, इस दर्द का दर्द के बारे में बात करते हुए गोपालदास नीरज के गीत की बात करता है। वो व्यक्ति जिस व्यक्ति से राहुल गांधी जी मिलने गए, उसने कहा, उसने हमें याद दिलाया कि नीरज की वो पंक्तियां, स्वप्न झरे फूल से, मीत चुभे शूल से, लुट गए सिंगार सभी, भाग गए बबूल से, और हम खड़े खड़े बहार देखते रहे, कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे। ये बच्चों की वो दुख है, क्या करें, हमारे पास पैसे नहीं है इतने कि हम पेपर खरीद पाए, 30-30 लाख का पेपर हमें खरीदने के पास, हमारे पिताओं के पास इतने सामर्थ्य नहीं है। वो दुख है, वो नाराज है, और इसीलिए जब वो दुख से वो लड़ नहीं पाते तो आत्महत्या पर आ पड़ते। और एनसीआरबी में सर आज देश की ये व्यवस्था, देश की असली ये है कि आज एनसीआरबी में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो में ये भी एक कारण है कि आत्महत्या हुई क्योंकि वो बच्चा एग्जाम में फेल हुआ, ऐसा भी एक कारण आ गया है। बच्चों की आत्महत्या, छात्रों की आत्महत्या लगभग 1 लाख से ऊपर बढ़ चुकी है, 1 लाख से ऊपर, जिसमें से 2000 ने तो साफ साफ कहा है, 2400 ने साफ साफ कहा है कि मैं फेल हो गया और इसीलिए मैं सुसाइड ले रहा हूं। बहुत लोग बच्चों ने फैमिली, पारिवारिक कारण से, फैमिली रीजन से वो आत्महत्या उन्होंने की, लेकिन इसके पश्चात भी वे युवा आए, वो चाहे गुजरात से हो, वो चाहे महाराष्ट्र से हो, चाहे विदेश से हो, चाहे दक्षिण भारत से हो, महाराष्ट्र से, वो सब आए। और जब वो आए और दिल्ली की गर्मी, दिल्ली के बारिश से जब वो जो उन्होंने उसमें जो दर्द है, उसमें जो संघर्ष है, उस संघर्ष को याद करते, उस संघर्ष को झेलने में उन्होंने याद किया सावित्री बाई फूले को। वे लड़कियां जो आई थी, ऐसे बहुत लड़कियां थी जिन्होंने रील पे कहा कि मैं अपने माता पिता को बिना बोले में जा रही हूं क्योंकि मुझे लड़ना है। ऐसे भी लड़कियां थी जिन्होंने कहा कि मैं छात्र नहीं हूं, मैं काम करती हूं, लेकिन मैंने भी कुछ साल पहले नीट का परीक्षा दिया था, मैं पहले अटेम्प्ट में मेरा पेपर लीक हो गया, कितना मानसिक मेरे पे दबाव बना मैं खुद समझ सकती हूं। आज अगले पीढ़ी के साथ, जिस समय मैं खड़ी नहीं हो पाई, मैं बाहर नहीं आ पाई, लेकिन आज अगले पीढ़ी के साथ मैं खड़ा होना चाहती हूं, मैं जाऊंगी आज। ये सब वहां पे आए क्यों? क्योंकि उन्होंने इतिहास को याद किया कि जिस प्रकार से सावित्री बाई फूले हो या फातिमा शेख हो, जिस प्रकार से समाज ने उन पर उत्पीड़न किया, लेकिन वो कभी भी अपने बाग से हटे नहीं। युवा लोग आए, एक लड़का था हरे शर्ट में, वो पुलिस को बोल रहा कि आ मार, मुझे मारो, मारो सर मारो। उसमें वो भगत सिंह का जज्बा हमें दिखाई दिया, हमेशा उसने हाथ नहीं उठाया, उसने खाली बोला कि मारो, क्योंकि ये थी लोगों की और युवाओं की ताकत कि अब वो डर उनसे चला गया, डर खत्म हो गया, डर गायब हो गया। लाठी है, दर्द होगा, रात को सोने में मुश्किल होगी, लेकिन सब लोग कह रहे थे कि कुछ नहीं होता, अगर शिक्षा के लिए, अपने भविष्य के लिए अगर मुझे 2-3 लाठी भी खानी पड़ेगी तो मैं लाठी खाने जाऊंगा। ऐसे भी लोग थे जो 20 जुलाई के रात को आए, वो 20 जुलाई के सुबह नहीं थे, 7 बजे नहीं थे, 4 बजे दोपहर को नहीं थे, वो रात को 10 बजे आए। क्यों? कि उनको दुख हुआ, उन्होंने रील में देखा कि किस प्रकार से पुलिस वालों ने बच्चों पर हाथ उठाया और उन्होंने बोला कि चलो मैं भी एक लाठी खाने जाऊंगा। ये है हमारा युवा शक्ति। मैं इस सदन से भारत के युवा समाज को मैं नमन करता हूं, आभार प्रकट करता हूं, शुभकामनाएं मैं देता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने हमें दोबारा याद दिलाया कि लोकतंत्र का मतलब क्या है। आपने दोबारा हमें याद दिलाया कि सवाल पूछना आप सबका, हमारा सबका मौलिक अधिकार है। हमने वो भी देखा उस मध्य प्रदेश से आए हुए आदमी को जिसके सर पर खून निकल रहा था। क्यों? क्योंकि कांटों से भरा हुआ एक डंडा उसके सर पर पड़ा और उसने तब भी वो पीछे नहीं हटा, खून से लथपथ उसका चेहरा, उस समय भी पुलिस को लड़का रहा था कि देखो ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनता जनार्दन है, जनता प्रजा राजा होता है। ये है वहां की उस ताकत। मैं अच्छा, बहुत लोग कहते हैं कि बहुत से गलत शब्द भी उस सभा में जंतर मंतर में किए गए, मैं उन गलत शब्दों का जो मर्यादा से बहुत दूर है, अमर्यादित है, उन शब्दों का समर्थन नहीं करता, लेकिन उन शब्दों के बारे में भी याद करना चाहिए जो बाकी बच्चों ने हमें याद दिलाया। किसी एक बच्चे ने याद दिलाया वसीम बरेली की कविता, जिसमें लिखा है जो उसूलों पर आंच आए तो टकराना जरूरी है, जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। ये है वो बच्चे जो अलग अलग प्रदेश से आए हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने अपनी इंसानियत दिखाई। हर वो बेटी जो वहां जाती थी वो कहती थी कि ये जंतर मंतर ये ऐसा एक जगह बन गया है जहां पर मैं अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हूं। जब पुलिस की लाठी आती है तो कोई अनजाना व्यक्ति, कोई अनजाना उसके सामने आकर शरीर से, अपने शरीर से उस लड़की को बचाता है, डंडा उसके लड़के के शरीर पर पड़ता है। वो लड़का कहता है कि इस उंगली से मैंने पिछली बार कमल पर वोट डाला, आज इसी उंगली को कमल के पुलिस ने तोड़ डाला। ये है उनका साहस। आज समाज, मैं पूरे छात्र के साथ पूरे समाज को भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूं, उस गुरुद्वारों को मैं के संचालकों को मैं धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने अपना दरवाजा खोला, लोगों को वहां पे शरण दिया। ये है हमारी हमारी देश की खूबसूरती। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि देश भर से लोगों ने फोन किया कि मैं वहां जा नहीं सकता, लेकिन स्विगी के द्वारा उन बच्चों को खाना तो पहुंचा सकता हूं। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं उन वकीलों का, वो चाहे सुप्रीम कोर्ट के बाहर हो, चाहे वो जंतर मंतर पे आए हो, सबने बोला कि लोकतंत्र के साथ संविधान के पक्ष में आज हम सब यहां पे खड़े हैं। लेकिन जहां पर हमने हमारी खूबसूरती देखी, जहां पे हमने इंसानियत देखा, जहां पर हमने लोकतंत्र की ताकत देखी, जहां पर हमने लोकतंत्र की ताकत देखी, वहीं पे हमने इस सरकार की क्रूरता भी देखी। हमने देखा आपने किस प्रकार से पैलेट गन का इस्तेमाल किया, हमने देखा किस प्रकार से आपने इलेक्ट्रिक बेटन का इस्तेमाल किया, हमने वो भी नजारा भी देखा कि किस प्रकार से एक पुलिस कर्मचारी ने एक लड़की के गाल पर थप्पड़ मारा। वो एसीपी भी, वो एसीपी का नाम भी हमें याद है, उस पुलिस कांस्टेबल का चेहरा भी याद है जिसने अपने डंडे के साथ एक लड़की के प्राइवेट पार्ट पे उसने आक्रमण किया। हमें याद है वो लड़कियां जिन्होंने आंसू, उनके आंसू निकल रहे थे आंखों से और कह रहे थे कि पुलिस वाले उनको मां बहन की गाली दे रहे थे। हम भूलेंगे नहीं वो बच्चियों जिन्होंने कहा कि मेरे पीठ पे जो कपड़े थे उन कपड़ों को इस पुलिस ने फाड़ दिया। ये है असलियत। और इसलिए बार बार हम मांग कर रहे हैं कि किसने आदेश दिया, वो आदेश कहां से आया कि पैलेट गन का इस्तेमाल हो, किसने आदेश दिया कि आंसू गैस का इस्तेमाल हो, किसने आदेश दिया कि लाठी पैरों पे नहीं लाठी सर पे पड़नी चाहिए, किसने वो आदेश दिया। और इसीलिए बार बार राहुल गांधी जी ने भी चिट्ठी लिखी है और आज भी हम देखते हैं कि अब सारी हम बातें कर रहे हैं। आज इस सदन में, इस सत्र में इस विषय पर भाग इसलिए लेना चाहते हैं क्योंकि हम सरकार से जवाब चाहते हैं और विशेष रूप से गृह मंत्री से जवाब चाहते हैं। गृह मंत्री से हम जवाब चाहते हैं।
1: मेरा कहना है
0: सर, गृह मंत्री से हम जवाब चाहते हैं।
1: यहाँ पर बैठे हैं
0: सर, आज ये बिल क्यों आया है, ये बिल क्यों आया है, ये बिल
1: अलग से,
0: ये बिल क्यों आया है, ये बिल क्यों आया है समझना चाहिए। ये बिल इसलिए आया है कि गृह मंत्री के द्वारा भेजी हुई पुलिस लोगों के हौसले को कुचल नहीं पाई, इसीलिए यह बिल आया है। आपने उस धरना को खत्म नहीं कर पाया, इसलिए यह बिल आया है। हमने देखा ना सिर्फ दिल्ली में, बिहार में आपने AK-47 का इस्तेमाल किया, यह नौबत है। हमने इसीलिए मैं लोगों का धन्यवाद करना चाहूंगा और धरना प्रदर्शनकारी के साथ है जिन्होंने कहा, जिन्होंने एक और हमें बहुत ही खूबसूरत गीत याद दिलाया, दिनकर का, अब जो सिर पर आ पड़े नहीं डरना है, जन्मे है तो दो बार नहीं मरना है। ये जो लोगों ने आज जो संदेश दिया है लोकतंत्र में, दोबारा उन्होंने आज हमारे ऊर्जा जो दी है, इसके लिए सारे विपक्षी दल, हम भारत के युवा समाज के साथ है, छात्र समाज के साथ है, वे सारे जिन्होंने संघर्ष किया उनके साथ है। और आज भी हम चाहते हैं कि गृह मंत्री आए और सदन के अंदर बोले कि क्यों आपने पुलिस के द्वारा बच्चों पर ये दुर्व्यवहार किया, बच्चों के पर आपने आक्रमण किया और बच्चों के साथ आज उनके आंसू निकलते हमने देखने पड़े। इन सभी बातों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।
1: सुश्री बांसुरी स्वराज।
2: धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं द पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स अमेंडमेंट बिल 2026 के सपोर्ट में खड़ी हुई हूं। अध्यक्ष जी, ये एक ट्रांसफॉर्मेटिव अमेंडमेंट है। इसकी न केवल आवश्यकता है बल्कि ये आज के समय की मांग भी है, और इस अमेंडमेंट को लाना आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के संवेदनशीलता और उनकी जिम्मेदाराना सरकार का प्रमाण है। अध्यक्ष जी, जब एक कंपेटिटिव एग्जामिनेशन कॉम्प्रोमाइज होता है तो उसका असर केवल उस कैंडिडेट पे नहीं होता जिसका भाग्य दाव पर लग जाता है, इसका असर तो उस उनींदी मां पर भी होता है जो सुबह 4 बजे गर्म दूध और भीगे हुए बादाम अपने बच्चे को खिलाती है, उसका असर उस पिता पर भी होता है जो अपनी इच्छाओं का त्याग कर उस बच्चे की फीस भरता है। स्वयं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि पेपर लीक एक घोर अपराध है, और इसीलिए मैं यहां कहना चाहूंगी और इस सदन को आश्वासन देना चाहूंगी कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए पेपर लीक को घोर पाप कहना केवल एक बयान नहीं है, ये उनकी सरकार की नियत है, इसीलिए ये अमेंडमेंट आज यहां पर लाया गया। स्पीकर सर, अ लॉ इज अ लिविंग इंस्ट्रूमेंट। It needs to evolve with the challenges that it faces. And in a democracy as complex as ours, in a democracy as large as ours, an examination is definitely the truest, most meritocratic ritual. Because this is one ritual where, under the same clock, the son of a laborer and the daughter of a CEO sit down, answer the same set of questions and get judged by the same yardstick. When such a ritual, such an examination is compromised, what gets diluted is a very holy covenant. A covenant that binds the most striving children of India. A quiet promise that in India, effort and merit alone shall prevail. Adhyaksh ji, aaj परीक्षा माफिया संगठित हो गया है, क्रॉस स्टेट क्रिमिनल नेटवर्क बन गया है, और ये बिल, ये जो संशोधन आज लाया गया है, ये ज्यूरिसडिक्शन की उलझन को सुलझाता है, उसको समाप्त ही कर देता है, क्योंकि इस बिल में ये प्रावधान है कि केंद्र सरकार एक स्पेशल टास्क फोर्स का गठन कर सकती है इन्वेस्टिगेशन के लिए, और एक बार जांच शुरू हुई तो घड़ी की गिनती चलने चलती है न्याय के पक्ष में। क्यों? क्योंकि ये बिल ये प्रावधान भी देता है कि हर स्टेट और हर यूनियन टेरिटरी में एक स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन हो। यही नहीं, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को ये बिल ये कहता है कि आपको मात्र 2 महीने के अंदर अंदर पूरी की पूरी प्रक्रिया समाप्त करनी है, और स्टाफ जो फास्ट ट्रैक कोर्ट है उसको पूरा का पूरा ट्रायल 3 महीने के भीतर भीतर खत्म कर अपना फैसला देना है। डे टू डे ट्रायल के साथ साथ ये भी प्रावधान इस संशोधन में दिया गया है कि स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स अपॉइंट करे जाएंगे, उनका एकमात्र काम होगा केवल और केवल इस प्रकार के मुकदमों की पैरवी करना, और किसी भी प्रकार की अननेसेसरी एडजर्नमेंट कोर्ट नहीं देगा। अगर किसी भी प्रकार की एडजर्नमेंट कोई भी पक्ष अगर लेगा तो उसके रीजंस जज राइटिंग में नोट कर देगा, और अगर किसी मुजरिम को यह लगता है कि अरे अपील कर वहां पर अपील का टाइम लंबा खींच लूंगा, तो अध्यक्ष जी मैं ये कहना चाहूंगी कि उसका भी ये उम्मीद पूरी तरह समाप्त करता है ये संशोधन, क्योंकि ये संशोधन ये कहता है कि अपील डायरेक्टली डिवीजन बेंच ऑफ हाईकोर्ट को जाएगी, यानी कि जहां पर 2 जजेस न्यायपीठ पर बैठे हुए हैं, और अपील भी मात्र 3 महीने के अंदर अंदर समाप्त कर उसका फैसला सुनाया जाएगा। अध्यक्ष जी, मैं स्वयं एक वकील हूं, हमें हमेशा एक लीगल मैक्सिम सिखाया गया, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड।
3: ये यही आत्मा बन गया है इस संशोधन का, और इसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और एनडीए की सरकार को बधाई देती हूं। स्पीड के साथ साथ ये संशोधन सजा को भी और कठोर करता है। आप ये देखिए कि अगर साधारण अपराधी है तो उसको 10 लाख नहीं 50 लाख का जुर्माना देना पड़ेगा अब, और उसकी सजा भी 3 से 5 वर्ष की बजाय 5 से 10 साल तक बढ़ा दी गई है। अगर कोई सर्विस प्रोवाइडर इसमें जुर्म करता है तो उसका जुर्माना बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए कर दिया गया है, और 8 साल के लिए उसको डीबार कर दिया जाएगा। और यही नहीं, अगर कोई क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन इसमें है, कोई संगठित अपराध इसमें अगर पाया जाता है, तो मिनिमम फाइन 10 करोड़ रुपए कर दिया गया है और जेल का टर्म 7 से 10 वर्ष कर दिया गया। एंड देयरफॉर स्पीकर सर, दिस अमेंडमेंट प्रोटेक्ट्स मेरिट, इट प्रिजर्व्स फेयरनेस एंड सेफगार्ड्स द ड्रीम्स ऑफ इंडियाज यूथ। It provides for expeditious investigation. It provides for time-bound trial procedures while reinforcing institutional accountability across the entire examination ecosystem. This amendment is the product of a responsive governance by a responsible Modi government. But Speaker, sir, this reform is not in isolation. अध्यक्ष जी, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी तो वो नेता हैं जो यूथ लेड डेवलपमेंट का मूल मंत्र देते हैं विकसित भारत के संकल्प को सिद्ध करने के लिए, और इसीलिए परीक्षा में चर्चा कर उन्होंने अपने व्यक्तिगत समय का निवेश करा है इस देश के युवाओं में। उन्होंने तो ये सुनिश्चित करा है कि हमारे देश का बच्चा एग्जाम वॉरियर से एग्जाम वॉरियर बन जाए। पिछले 12 वर्षों में शिक्षा के क्षेत्र में मोदी सरकार के अथक प्रयासों से रिफॉर्म एक्सप्रेस चल रही है। आप देखिए, 12 सालों में अध्यक्ष जी, मेडिकल कॉलेजेस एंड मेडिकल सीट्स हैव डबल्ड, दुगनी हो गई है उनकी संख्या। यही नहीं, IITs अब 16 के बजाय बढ़कर 23 हो गई हैं, IIMs 13 से बढ़कर 21 हो गई हैं, फंक्शनिंग एम्स ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज अब 7 नहीं, मोदी सरकार के कार्यकाल में 7 से बढ़कर 20 हो गई हैं। यही नहीं, नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज भारत में मोदी जी के कार्यकाल में 60% से ज्यादा हो गई हैं, बढ़ गई हैं। As far as higher education enrollment statistics are concerned, अध्यक्ष जी, 91 lakh additional students अब higher education के institutes में enroll करते हैं, जिसमें से 50 lakh महिला students हैं, female students हैं, और हाँ, SC students की enrollment तो 44% हो गई है। SC students की संख्या बढ़कर 65% हो गई है। अध्यक्ष जी, ये विस्तार केवल अफसरों का विस्तार नहीं है, ये सामाजिक न्याय का विस्तार है। लेकिन मोदी सरकार ने रिफॉर्म्स को केवल इंस्टीट्यूशंस तक सीमित नहीं रखा, डिजिटाइज कर ये सुनिश्चित कर दिया कि दीक्षा के माध्यम से एजुकेशन हर बच्चे के मोबाइल फोन तक पहुंच जाए, ईट पाठशाला के माध्यम से पूरी की पूरी लाइब्रेरी अब बच्चों की हथेली में है, CUET जैसा एडमिशन प्रोसेस के लिए एग्जामिनेशन लाकर एडमिशन प्रोसेस को और ज्यादा पारदर्शी यानी ट्रांसपेरेंट बना दिया, और NEP 2020 में भारत की एजुकेशन सिस्टम को रिजिड स्ट्रीम से मुक्त कर दिया गया है। यदि कोई स्टूडेंट बायोलॉजी के साथ साथ म्यूजिक पढ़ना चाहता है तो उसको अब अपनी प्रतिभा में किसी एक सब्जेक्ट का चयन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने यह सुनिश्चित कर दिया है कि प्रतिभा ना परिस्थितियों की अधीन होनी चाहिए और ना ही एजुकेशन स्ट्रीम्स की मोहताज। अध्यक्ष जी, जब अफसरों का विस्तार होता है, तो उसके साथ साथ उन अफसरों की निष्पक्षता भी सुनिश्चित करनी अनिवार्य है। ये अमेंडमेंट बिल 2026

यही सुनिश्चित करता है। अध्यक्ष जी, इस सदन में पिछले 2 वर्षों से मैंने देखा है कि बहस तथ्यों पर होनी चाहिए, बहस नैरेटिव पे नहीं होनी चाहिए, बहस प्रमाणों पर होनी चाहिए, बहस पूर्वाग्रह पर नहीं होनी चाहिए। इसीलिए मैं ये जरूर कहना चाहूंगी आपके माध्यम से विपक्ष के साथियों को, सबसे पहली बात तो बेल सरकार नहीं, इस देश का कोर्ट देता है, और लोकतंत्र में जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेचर। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी, कांग्रेस के साथी और विपक्ष के कुछ साथी एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि पेपर लीक की समस्या, एग्जाम कॉम्प्रोमाइजिंग की समस्या केवल और केवल 2014 के बाद पैदा हुई है। अध्यक्ष जी, मीडिया की रिपोर्टों का अगर हम सच माने तो विपक्षी दलों के जहां जहां पर शासित राज्य हैं, और पिछला जब एक दशक था, जब 2014 से पहले कांग्रेस लेड यूपीए सरकार था, तब एक नहीं, दो नहीं, बल्कि टोटल 22 बार पेपर लीक होकर कैंसिल करने पड़े। उनमें से कांग्रेस लेड यूपीए सरकार के अधिकार क्षेत्र में आने वाले 6 ऐसे एग्जामिनेशंस हैं जो सीधा केंद्र सरकार के नीचे आते थे। अध्यक्ष जी, एम्स पीजी एग्जामिनेशन 2006, ICAI CPT examination 2007, CLAT 2009, Railway Recruitment Board examination 2009, AIEEE 2011, SSC CGL examination 2013, ये सारी की सारी पेपर लीक तब थी जब विपक्षी दल सत्ता में था, यानी कांग्रेस लेड यूपीए गवर्नमेंट। अब मैं राज्यों के कुछ आंकड़े आपको देना चाहूंगी। राजस्थान में जब कांग्रेस की सरकार थी तो रीट, आरपीएससी, सीनियर टीचर रिक्रूटमेंट, पुलिस कांस्टेबल एग्जामिनेशन रिक्रूटमेंट, फॉरेस्ट गार्ड रिक्रूटमेंट, सीएचएमओ रिक्रूटमेंट एग्जाम्स लीक हुए। टीएमसी की जब सरकार थी पश्चिम बंगाल में टीचर रिक्रूटमेंट स्कैम में सुप्रीम कोर्ट ने 27,753 अपॉइंटमेंट्स को कैंसिल करा गया, क्योंकि उन्होंने उसमें फ्रॉड और मैनिपुलेशन पाया। यही नहीं, जब बीआरएस की सरकार थी तेलंगाना में तो टीएसपीएससी पेपर का लीक हुआ, उत्तर प्रदेश में जब सपा की सरकार थी तो पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट पेपर लीक हुआ, तब तो सॉल्वर गैंग्स और ऑर्गेनाइज्ड एग्जाम फ्रॉड के गैंग्स वहां ऑपरेट करते थे। और हाल ही में पंजाब में, ये तो इसी साल की बात कर रही हूं, फार्मेसी ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन में तो हाईटेक यानी ब्लूटूथ का इस्तेमाल कर उस पेपर को कॉम्प्रोमाइज करना गया। पर मैं पूछना चाहती हूं, इससे पहले कि विपक्ष मुझ पर यह इल्जाम लगाए दैट आई एम टॉकिंग अबाउट वॉट अबाउट ट्री, दिस इज नॉट अबाउट वॉट अबाउट ट्री, बट आई एम कॉलिंग आउट द ऑपोजिशन ऑन इट्स सिलेक्टिव आउटरीच। मैं पूछना चाहती हूं विपक्ष से कि अगर यह सिद्धांत की लड़ाई है तो सिद्धांत सरकार देख के बदल कैसे जाता है। मैं पूछना चाहती हूं कि अभी खड़े होकर इन्होंने तत्कालीन केंद्रीय शिक्षा मंत्री की बात करी, क्या माननीय गौरव गोगोई जी ने अभी तक पंजाब के एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा मांगा है या नहीं? यही बात नहीं है अध्यक्ष जी, एक सिंगल प्रोफेशनल टेस्टिंग एजेंसी की मांग पिछले 30 साल से इस देश में पेंडिंग थी। 1986 की जो नेशनल पॉलिसी थी एजुकेशन की, उसका जब प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 में आया, तब ये मांग उभर कर आई। इसको आईआईटी डायरेक्टर्स कमिटी ने 2010 में रीइटरेट करा, इसे दोहराया, लेकिन ये मांग, इसको अनदेखा कर दिया कांग्रेस पार्टी और यूपीए ने। क्यों? क्योंकि उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि इस देश के युवा का भविष्य कसौटी पर नहीं उखर रहा था, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि इस देश के युवा का भविष्य उसकी बलि दी जा रही थी। ये तो

0: मोदी की सरकार आई, एनडीए की सरकार आई, तो 2017 में एनटीए का गठन हुआ। अध्यक्ष जी, जहां पर कांग्रेस शासित यूपीए ने पॉलिसी वैक्यूम करा, वहीं पर अगर मैं जेंजी की भाषा को बोरो करूं, देन आई विल हैव टू से मोदी जी क्लॉक्ड इट एंड प्रोवाइडेड अ लेजिस्लेटिव सॉल्यूशन। बट व्हाइल नरेंद्र मोदी प्रोवाइडेड एन एंटी पेपर लीक law, a very robust law, which today is being even more formidable, all that the opposition did was chase political opportunism. Adhyaksh ji, fark saaf hai, fark keval sarkar ka nahi, fark soch ka bhi hai. UPA ka mantra hai delay, deflect and deny. Modi ka mantra hai detect, decide and deliver. इनका ये रवैया देख के अध्यक्ष जी, कवि दुष्यंत की दो पंक्तियां मुझे याद आती हैं। तुम्हारे पैरों के नीचे कोई जमीन नहीं है, तुम्हारे पैरों के नीचे कोई जमीन नहीं है, कमाल है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं है। अध्यक्ष जी, अपनी वाणी को विराम देने से पहले मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि बात राजनीति की नहीं है, बात इस देश के युवाओं की है, और इस देश के युवाओं का भविष्य किसी भी राजनीतिक विचारधारा या दल की डिफरेंसेस से ऊपर है, और इसीलिए मैं यहां से इस सदन के पटल से हर प्रकार के एग्जामिनेशन माफिया को चेताना चाहूंगी कि आप इस सदन के संकल्प से बड़े नहीं हैं। और आज आपके माध्यम से अपील करना चाहूंगी विपक्ष के साथियों से और सदन के एक एक सदस्य से कि सर्वसम्मति से आज इस संशोधन को पारित करिए। अब ना कोई पेपर बिकेगा, ना किसी का सपना झुकेगा। जो युवाओं के भविष्य को लूटेगा वो सलाखों के पीछे रहेगा। जय जगन्नाथ। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: श्री अखिलेश यादव जी,
2: अध्यक्ष महोदय, मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस महत्वपूर्ण विषय पे मुझे बोलने का मौका दे रहे हैं। मैं अपने साथी माननीय सदस्य गौरव गोगोई जी के से सहमत हूं। बहुत सारे महत्वपूर्ण उन्होंने बिंदु उठाए, और अध्यक्ष महोदय, मुझसे ज्यादा मेरे रिश्ते शायद हमारे विपक्ष के लोग ज्यादा जान रहे हैं, और जितना विपक्ष के लोग नजर रखेंगे मैं समझता हूं उतना रिश्ते और मजबूत हो जाएंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं आंदोलन को बहुत दूर से देख रहा था, और उस आंदोलन में जो जीत के बाद नारा लगा, एक नारा लगा अध्यक्ष महोदय, सरकार के खिलाफ नारा लगा कि सरकार को ये अहंकार था कि सरकार झुकती नहीं है, लेकिन उन्हीं नई पीढ़ी के लोगों ने ये वो नारा दिया कि झुकाने वाला चाहिए, सरकार भी झुकती है, और सरकारों को झुकाना भी नौजवानों को आता है। सरकार झुकी और स्वीकार किया उन्होंने, जो करोड़ों नौजवान जो मांग कर रहे थे कि सबसे पहले जो मंत्री जी हैं वो इस्तीफा दें, और बिंदु दूसरे अलग हैं जो हम लोगों को जानकारी में मिल रहा है। अध्यक्ष महोदय, सरकार हर विषय पे स्वीकार किया है, लेकिन पता नहीं अध्यक्ष महोदय ये बात समझ में नहीं आ रही है कि सदन में उन आश्वासनों को क्यों नहीं रख रही है सरकार जो सहमति बनी है। और उसके बाद अध्यक्ष महोदय, हम लोगों ने देखा कि जब मंत्री जी लौटे हैं, मंत्री नहीं रहे, उसके बाद सदन के बाहर उनका स्वागत किया गया। अध्यक्ष महोदय, जो स्वागत हुआ उसके लिए हमें कोई शिकायत नहीं है, लेकिन माननीय सदस्यों को कितनी बड़ी राहत मिली होगी कितने बड़े संकट से बचाया उन्होंने, एक प्रधान जी को हटा करके प्रधान जी प्रधानमंत्री बचा लिया आपने। और ऐसा अध्यक्ष महोदय आंदोलन किसी ने नहीं देखा, जिस आंदोलन में नई पीढ़ी के लोग, कम उम्र के लोग निकल करके आ गए और जो नारे दिए गए। ये सरकार पिछले कई वर्षों से नकारात्मक प्रचार पर टिकी हुई थी, नकारात्मक राजनीति करती थी और न जाने कितने हजार करोड़ रुपए खर्च किए होंगे सरकार ने नकारात्मक राजनीति के लिए। लेकिन नई पीढ़ी को मैं बधाई देना चाहता हूं, उनके मनोबल को और उनकी एकता को, और जिस तरीके से उन्होंने प्रचार किया अंततः सरकार को झुकना पड़ गया। भाजपा वचन नहीं देती, जुमला देती है, तो मुझे उम्मीद है कि सभी युवा नौजवानों का जो मांग किया उन्होंने, उन सभी मांगों को सरकार स्वीकार करेगी। और सरकार ये भी स्वीकार कर लिया होगा कि कोई दल मजाक मजाक में बना तो कितनी बड़ा दल बन गया, जो कोई चीज मजाक से शुरू हुई वो कितना सीरियस हो गई, और इतना सीरियस हुई कि हमारी सरकार लोकतांत्रिक हो गई कि जो उनको धरने पे बैठने दिया। सरकार लोकतांत्रिक थी कि उन्हें धरने पर बैठने दिया। हमने वो भी समय देखा है कि जहां पर धरने पे नहीं बैठने दिया, वर्षों वर्ष लोग बैठे रहे धरने पर, उनकी सुनी नहीं गई। इसी दिल्ली को घेरा था किसानों ने, और सरकार को लगा कि चुनाव आ गया तो सरकार ने तीनों काले कानून वापस ले लिए। जब सरकार घबरा जाती है, डर जाती है, तो सरकार स्वीकार कर लेती है। इसीलिए वो नारा मुझे अक्सर याद आ जाता है कि झुकाने वाला चाहिए सरकार भी झुकती है। जो विषय लाया गया है कि प्रिवेंशन ऑफ अनलॉफुल मींस एक्ट, सरकार को कम से कम यह बताना चाहिए था कि 2024 में जब ये लेकर के आए थे तो आज 2026 में कैसे पेपर लीक हो, और केवल गिनती के एक दो पेपर लीक नहीं हुए। ये ऐसा आंदोलन रहा जिसमें मां बाप और नई पीढ़ी के लोग सब जुड़ गए। अगर हम ये माने कि 20 लाख बच्चों ने परीक्षा लिखी थी और उनके घर परिवार के सदस्यों को हम उसमें जोड़ दें, दादा दादी मां बाप और परिवार का कोई सदस्य, तो 5 लोग प्रभावित थे, और 5 × 20 1 करोड़ लोग नाराज हुए सरकार से। और अक्सर हम पॉलिटिकल लोग हैं, हम लोग जानते हैं जब कभी आंदोलन करते हैं तो कितनी तैयारी करानी पड़ती है, गाड़ियों का इंतजाम, खाने का इंतजाम और इंतजाम। लेकिन ये पहला आंदोलन देखा कि जिसमें मां बाप भी जुड़ गए और कहा कि जाओ बच्चों आंदोलन करो, हम आपके साथ हैं। ये पहला आंदोलन ऐसा देखने को मिला है, और केवल दिल्ली में नहीं हुआ ये। अगर ये बात गलत है, अगर ये बात अध्यक्ष महोदय गलत लग रही है, तो देश के होम मिनिस्टर साहब को ले आइए, वो सब एक्सप्लेन कर देंगे। पहला आंदोलन जिसमें मां बाप ने साथ दिया, क्योंकि परीक्षा से कितना दुखी हैं लोग। ये जो परीक्षाएं लीक हुई हैं, कई महीनों पहले ये किताब बना दी थी, और अध्यक्ष महोदय जो लोग चढ़ावा चोटी नहीं बचा पाए वो पेपर लीक कैसे बचा पाएंगे। जो भगवान के दरबार से दान गायब हो गया, दान चला गया, वो लोग पेपर लीक बचाएंगे किस कानून को, जो कानून पहले बनाया उसी कानून का संशोधन करके लेके आए हैं। किसकी आंखों में आप धूल झोंक रहे हैं। और अगर कानून से बच रहा होता तो भाजपा की 10 साल की सरकार में 20 परीक्षाएं कैसे लीक हो गई, 20 परीक्षाएं लीक हुई अध्यक्ष महोदय, जिसमें कोर्ट तक जाना पड़ा, उसके बाद परीक्षा रद्द हुई है। दरोगा भर्ती का पेपर लीक हो गया, जूनियन

0: इनके भर्ती का पेपर लीक हो गया, ग्राम विकास पंचायत अधिकारी का पर्चा लीक हो गया, नलकूप चालक भर्ती का यूपी टीईटी का परीक्षा लीक हुआ, और एक बार नहीं हुआ, तीन बार पेपर लीक हुआ यूपी टेट का, हाई स्कूल बोर्ड का परीक्षा लीक कर दिया, इंटरमीडिएट की बोर्ड की परीक्षा लीक हुई, इंटरमीडिएट का फिर परीक्षा का लीक हुआ, कई बार हुई, सिपाही भर्ती लीक हुई। आप सोचिए कितनी परीक्षाएं लीक हुई हैं, और नीट परीक्षा कोई पहली बार लीक नहीं हुई, दोबारा लीक हो गई, कानून बनने के बाद लीक हुई, सहायक प्रोफेसर भर्ती लीक, लेखपाल भर्ती लीक हुई। यूपी जैसे स्टेट, जो सबसे बड़ा स्टेट है, जहां से प्रधानमंत्री चुन करके आते हो, वहां तक पेपर लीक हो जा रहा है, और जो संस्था परीक्षा एग्जामिनेशन करा रही है वो एनटीए में भी आउटसोर्स कर दिया आपने। हम विपक्ष के लोगों को तो डर ये लगता है अध्यक्ष महोदय, कहीं ऐसा ना हो कि ये पूरी सरकार को आउटसोर्स कर दें।
1: आउटसोर्स सरकार है
0: जो सबसे विश्वसनीय संस्था है, उसमें आउटसोर्स पे आपने कर्मचारियों को रखा हुआ है, किस बात की जवाबदेही है? यही अकाउंटेबिलिटी है आपकी? कहीं अकाउंटेबिलिटी ये तो नहीं है, आप अकाउंटेबिलिटी को ये कहीं समझ बैठे हो कि अकाउंट को भर दे वो एबिलिटी वाला ही हमें चाहिए, कहीं वो अकाउंटेबिलिटी तो नहीं है? आप बताइए, एनटीए को आउटसोर्स किया हुआ है आपने, जिस संस्था की जिम्मेदारी है महत्वपूर्ण परीक्षा कराने की, उसमें सब आउटसोर्स। और ये सच कहा कि कांग्रेस पार्टी के हमारे सदस्य ने मांग की है कि वो हम लोगों को पता होना चाहिए आखिरकार कौन लोग थे जो आउटसोर्स होकर के बैठ करके परीक्षा में इस तरह की घोटाला कर रहे थे। आखिरकार जवाबदेही क्या है, किसकी थी? और फिर केवल नीट की परीक्षा की बात करें और परीक्षाओं की बात करें, अगर हम अध्यक्ष महोदय जब से सरकार बनी है तब से सरकार की कोशिश रही है कि शिक्षा परीक्षा और यूनिवर्सिटी का ताना बाना पूरा ध्वस्त हो जाए, उसको एक रंगी बना दें हम, उसमें अंडरग्राउंड अनरजिस्टर्ड लोग शामिल हो जाएं। ये पिछले जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से हो रहा है। और फिर शुरुआत कहां से होती है? क्योंकि आप नहीं चाहते कि देश के गरीब लोग पढ़े लिखे आगे बढ़े। सरकार ने सबसे पहले हमला किया प्राइमरी स्कूल पर, और प्राइमरी स्कूल कितने बंद किए हैं आपने, जहां से बच्चे की शिक्षा की यात्रा शुरू होती है। एक गरीब परिवार का बेटा बच्चे कहां से पढ़ करके निकलते हैं? सबसे पहले प्राथमिक शिक्षा सरकारी स्कूलों से पढ़ करके निकलते हैं। हमारे बहुत सारे माननीय सदस्य होंगे, वो उन्हीं प्राथमिक विद्यालयों से पढ़ करके आज इस सदन तक पहुंचे होंगे। आपने सबसे पहले स्कूलों पे हमला किया, और प्राइमरी से लेकर के नौकरी तक पे आपने हमला किया है। युवाओं के भविष्य पर आपने चोट पहुंचाने का काम किया है, और जो प्राइमरी स्कूल जो आपने बंद किए हैं वो इसीलिए बंद किए हैं आपने कि पिछड़े दलित और गरीब के वर्ग के परिवारों के बच्चे पढ़ लिख न जाएं। क्योंकि आज भी अगर हम देखते हैं प्राइमरी स्कूल में कौन पढ़ने जा रहा है, सबसे समाज के गरीब परिवार के बच्चे पढ़ करने जा रहे हैं। सबसे पहला हमला आपने वहीं किया, और इसलिए क्योंकि नींव पर ही अगर हमला होगा तो ये आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जो आंकड़े सरकार के बताए गए हैं, 1,00,000 से ज्यादा सरकारी प्राइमरी स्कूल बंद कर दिए सरकार ने, और अगर ये बात गलत है तो हमें उम्मीद है सरकार इस पर भी जवाब देगी। और अगर हम आंकड़े निकालें तो जो आंकड़े दिखाई दे रहे हैं, यूपी में सबसे ज्यादा प्राइमरी स्कूल बंद हुए हैं। और ये सरकार की आंकड़ी है कि 7 लाख से ऊपर विद्यालय थे जो अब 6 लाख रह गए हैं, और यूपी में तो सबसे ज्यादा बंद हुए हैं। उत्तर प्रदेश में 26,386 सरकारी प्राइमरी स्कूल बंद कर दिए सरकार ने, और केवल प्राइमरी स्कूल बंद नहीं किए हैं, नौकरी पे भी हमला किया है। 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के बड़े पैमाने पे घोटाला किया गया, और घोटाला इतना बड़ा है कि वो सभी कोर्टों में गए हैं और पिछले कई वर्षों से आंदोलन कर रहे हैं, कोई स्थान नहीं बचा अध्यक्ष महोदय जहां पर वो शिक्षक भर्ती के लोग न गए हों। मंत्रियों के यहां गए, आंदोलन किया है, हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए। लेकिन देखिए सरकार भी कमाल की है कि सरकार उनको नौकरी नहीं देना चाहती, और इसलिए नौकरी नहीं देना चाहती है क्योंकि उन्होंने भर्ती गलत की है, और भर्ती में जिन लोगों का अधिकार छीना है वो सबसे ज्यादा पिछड़े और दलित परिवार के बेटे, जिनका अधिकार इस सरकार ने छीना है। और ये अगर बात नहीं ठीक है तो हमें उम्मीद है कि सरकार इसका भी जवाब देगी। माध्यमिक स्कूलों को भी बंद किया जा रहा है, और बड़े पैमाने पर स्कूल बंद हुए हैं, और जो बोर्ड की परीक्षाएं लीक हुई हैं, पूरे देश में बड़े पैमाने पर बोर्ड परीक्षाओं के पेपर लीक किए गए हैं। अध्यक्ष महोदय हम जानना चाहते हैं कि आखिरकार 10वीं और 12वीं के पेपर लीक क्यों हो रहे हैं, 10वीं और 12वीं के पेपर लीक क्यों हो रहे हैं, इसके लिए अगर कोई सरकार के पास जवाब हो तो बताएं। और जो बच्चियों ने जान दी है नीट की परीक्षा में, जब परीक्षा का पेपर लीक हो गया है, अध्यक्ष महोदय मैं अपनी तरफ से, पार्टी की तरफ से और सभी की तरफ से उन्हें श्रद्धांजलि देता हूं, और हमें उम्मीद है कि सरकार उन बच्चों की मांग मानेगी जिन बच्चों ने ये शर्त रखी है कि उनके परिवार के लोगों को 1 करोड़ मुआवजा दिया जाए। जब उच्च शिक्षा में जिस तरीके से भर्ती हो रही है, अध्यक्ष महोदय जो उच्च शिक्षा की भर्ती है उसमें जो अपॉइंटमेंट हो रहे हैं उनके बारे में तो क्या चर्चा करें, कि जब संस्था पे सबसे ऊपर बैठा व्यक्ति ही अन्याय करेगा तो पूरी संस्था में अन्याय होगा। जब से ये सरकार आई है जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं उन सब संस्थाओं में एक रंगी लोगों को बैठा करके उन संस्थाओं को ध्वस्त करने का काम कर रहे हैं, और न केवल उन संस्थाओं को खराब कर रहे हैं बल्कि अध्यक्ष महोदय उत्तर प्रदेश में एक स्वतंत्र सेनानी उनके नाम पर यूनिवर्सिटी बनी, मौलाना जौहर यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी बनकर के तैयार हो गई। इन्होंने कोई सरकारी यूनिवर्सिटी नहीं बनाई, और अगर कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी बन भी गई है तो उसको भी हथौड़ा लेकर के तोड़ने की तैयारी कर रहे हैं ये लोग। ये नफरत की राजनीति कहां लेकर के पहुंचा देगी। और जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से नफरत की राजनीति और दूसरे लोगों के साथ किस तरह का व्यवहार हो रहा है उन्हें कहीं भी न्याय तक नहीं दिला पाई सरकार। और जब नौकरी की बात आ जाए तो अध्यक्ष महोदय अग्निवीर भर्ती में भी जो हर साल में कितनी भर्ती होती थी, कभी 80,000 भर्ती हुआ करती थी, अब भर्ती केवल 10,000 हो पा रही है। आखिरकार अध्यक्ष महोदय सरकार नौजवानों की पढ़ाई और नौकरी पे हमला क्यों कर रही है, और नौकरी पे हमला क्यों हो रहा है? जब आप ये कहते हैं कि हमारे नौजवान हमारी डेमोग्राफी डिविडेंड बन करके आए हैं, कहीं यही नौजवान हमारी आपदा न बन जाए, इसके बारे में भी सरकार को सोचना चाहिए। और मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि अध्यक्ष महोदय अगर शिक्षा अच्छी होगी, परीक्षा सच्ची होगी, तो तरक्की भी पक्की होगी, और ये तरक्की नहीं चाहते हैं, इसीलिए शिक्षा पर और परीक्षा पर हमला कर रहे हैं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अध्यक्ष महोदय आपका धन्यवाद देता हूं, और जो बिल लेकर के आए हैं आप

0: पार्लियामेंट में बिल लेके आता है ये अच्छा है, या जो आंदोलन होता है तो उसको कुचलने के लिए देश में इमरजेंसी लगा देता है वो अच्छा आप बता दीजिए।
1: अध्यक्ष महोदय मैं इमरजेंसी को तो नहीं देखा हूं, लेकिन इमरजेंसी में क्या क्या हुआ है वो अभी दिल्ली की राजधानी में भी देखने को मिल गया है। आंसू के गैस के गोले और लकड़ी में लगा हुआ कुछ कील का और कांटे की चीजें, उस समय करंट नहीं लगाया जाता था, इस बार करंट लगाया गया, तो ये इमरजेंसी के बराबर ही हुआ है हमला, कम नहीं है, इमरजेंसी से कम अन्याय नहीं कर रहे हैं आप लोग। और याद करिए अध्यक्ष महोदय, अगर इमरजेंसी इन्हें याद आ गई है, अगर इमरजेंसी अध्यक्ष महोदय ने याद आ गई है तो इमरजेंसी के बाद भी परिवर्तन हुआ था और हमें भरोसा है कि इसके बाद भी परिवर्तन होगा। और अध्यक्ष महोदय मैं आखिरी में कहना चाहता हूं, कानून से नहीं नीयत साफ होगी तब नीट का परीक्षा साफ होगी, सवाल कानून का नहीं है, आपकी नीयत साफ नहीं है, और जिस समय आपकी नीयत साफ होगी तो परीक्षा भी साफ हो जाएगी। और हमारे साथी जो कुछ और बातें उठा रहे हैं, आज मौका नहीं है, लेकिन आपको भगवान भी माफ नहीं करेंगे, क्योंकि आप चढ़ावा चोरी में शामिल हुए हैं, और चढ़ावा ही नहीं, जो गुप्त दान था वो भी चोरी हुआ है, गुप्त दान, और ये पाप की श्रेणी में नहीं आता है, महापाप की श्रेणी में आता है।
2: अखिलेश जी बिल पे।
1: और अध्यक्ष महोदय आखिरी में मैं इतना ही कहना चाहता हूं, शिक्षा की रक्षा के लिए जो आंदोलन हुआ है वो हमेशा आंदोलन जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं आपका।
2: श्री अभिषेक बनर्जी।
3: थैंक यू सर, आई rise here today to speak on the Public Examination Amendment Bill 2026. We support this bill, but I want to make it very clear in the beginning that just because we support this bill doesn't mean or the government should expect us to applaud those who set the world on fire because they turn up with a bucket of water. We support this bill and the amendment because no responsible political party
4: आप इनको बोलिए
2: 2024 में बिल लाके आज अमेंडमेंट लाना पड़ रहा है। अरे शर्म करो,
4: इसको बंद कराइए, सरसा होने दीजिए सरसा।
3: सर एवरी स्टूडेंट
4: डिजर्व्स बैठिए, इसको
5: सभी से निवेदन है
2: सर, बिल पे
5: सभी से निवेदन है, आप सब लोग बैठिए प्लीज, सभी से निवेदन
2: सर, बिल पे चर्चा कौन चाहता है और कौन नहीं चाहता है ये साफ है सर, ये दिख रहा है। एवरी स्टूडेंट डिजर्व द अश्योरेंस दैट एग्जामिनेशन शुड बी फेयर, एवरी पेरेंट डिजर्व द कॉन्फिडेंस दैट सक्सेस इज डिटरमाइंड बाय हार्डवर्क टैलेंट एंड इंटीग्रिटी, not by money, influence or organized criminal syndicates. But support for this bill cannot be a substitute for accountability. A stronger law is necessary, yes, but by itself is not sufficient. If examination continues to be compromised by systematic failures, no amendment, however stringent, will restore the faith that million students have lost. That is the question before this august house today, sir. But let me also say this, the bill that is being discussed is not a solution, rather this bill is an admission. It is an admission that the NDA

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: पर जब इंसान प्रकृति के साथ सामंजस्य को आत्मसात कर लेता है तो वो मधुर और लालन पोषण करने वाली बन जाती है। पी मार्क सरसों के तेल ने प्राकृतिक तरीके से सरसों के तेल को बनाया है शुद्धता और गुणवत्ता के साथ।
2: The mustard specialist since 1933, बरसों से सरसों।
3: कुछ तो बात है इस तेल में।
4: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
5: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
6: अरे मेरे राजा।
7: सबका राजा आकर मसाला।
8: पीओके के फायरिंग रेंज में खड़े हैं।
9: Just few inches away is POK.
8: हो सकता है दुश्मन को पता हो कि सैफ अली खान यहाँ पर खड़े हैं। Is it fire?
10: ये युग तुम्हारा, ये रण तुम्हारा, हर चुनौती तुम्हारी, हर शिखर तुम्हारा, तुम्ही हो भारत का स्वाभिमान।
11: हर सेक्टर, हर स्टेट, हर रीजन, हर उम्र के इनोवेटर्स ने दिया जबरदस्त प्रतिसाद। तभी तो वंदे भारतम में एप्लीकेशंस पहुंचे 25,000 के पार और रजिस्ट्रेशन डेडलाइन बढ़कर हुई है 30 जुलाई। आप भी भारत के सबसे बड़े ग्रास रूट इनोवेशन मूवमेंट से जुड़े vandebharatam.org पर रजिस्टर करें।
12: प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी, एवरीडे।

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: पीओके के फायरिंग रेंज में खड़े हैं,
3: जस्ट फ्यू इंचेस अवे इज पीओके।
2: हो सकता है दुश्मन को पता हो कि सैफ अली खान यहाँ पर खड़े हैं। इज इट फायर?
4: ए युग तुम्हारा, ए रण तुम्हारा, हर चुनौती तुम्हारी, हर शिखर तुम्हारा, तुम्ही हो भारत का स्वाभिमान।
5: हर सेक्टर, हर स्टेट, हर रीजन, हर उम्र के इनोवेटर्स ने दिया जबरदस्त प्रतिसाद। अभी तो वंदे भारतम में एप्लीकेशंस पहुंचे 25,000 के पार और रजिस्ट्रेशन डेडलाइन बढ़कर हुई है 30 जुलाई। आप भी भारत के सबसे बड़े ग्रास रूट इनोवेशन मूवमेंट से जुड़े, vandebharatam.org पर रजिस्टर करें।
6: प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी, एवरीडे।
7: लॉन्च कंट्रोल 0 to 100।
8: दिस इजंट जस्ट अबाउट कार्स एंड बाइक्स, दिस इज अबाउट हाउ यू मूव।
9: दिस कार मेक्स नो सेंस, येट इट मेक्स एवरी सेंस।
10: व्हाट वी आर सिटिंग इनसाइड इज अ जोबी पावर्ड एयर टैक्सी।
11: योर फ्रेंड सेड ये ले ले, वी सेड मे बी नॉट। Hi, my name is Siddharth Sharma. I'm your NDT.
2: Hello and welcome. You're watching NDTV Newsroom. I'm Gargi Rawat. Here we bring you all the news as it's happening right here from the news floor. Of course, right now the big news is the debate on the anti-paper leak bill, which is taking place in the Lok Sabha. We'll be going across to it immediately after these headlines. Lok Sabha debates the anti-paper leak bill. Government says the law is for stricter and swifter justice. Opposition rakes up protests, violence and the alleged use of pellet guns. Samajwadi Party Chief Akhilesh Yadav hits out at the centre over the leak, says it could not stop Chanda Chori at the Ayodhya Ram Mandir. How will they stop paper leaks? Kiran Reed.

0: अगर कुछ युवाओं के हित में कर रही है तो हम वेलकम करते हैं ऐसे ऑर्डर्स को या जजमेंट्स को, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो कर रही है वो अपने तरीके से कर रही है, अपने आइडिया के हिसाब से कर रही है, वो करते रहे। हम लोग ग्राउंड पे थे बहुत टाइम से, हम लोगों की कुछ डिमांड्स थी एंड वो डिमांड्स पूरे होने चाहिए, वो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। हमारा जो की एक जो की डिमांड था वो था कि FIR सारे विड्रॉ होंगे सारे प्रोटेस्टर्स के खिलाफ, एंड फ्यूचर में भी कोई ऐसे एक्शन, रिटेलिएटरी मेजर, कोई भी एक्शन सरकार नहीं लेगी किसी भी प्रोटेस्टर के खिलाफ। अगर एंड ये लिखित में जो रिटर्न गारंटी होना चाहिए वो आ जाना चाहिए आज तक, मतलब कि ट्यूसडे तक आ जाना चाहिए। तो जितने भी सारे डिटेनीज थे, अरेस्टीज थे, उन सबको फ्री करना चाहिए, ये हमारा एक मुख्य डिमांड था। अब अगर उस पर हम लोगों ने ये नहीं बोला कि कोई माइनर है तो तभी आप उसको रिलीज़ करिए, या किसी के ऊपर पहले से FIR है तो उनको मत रिलीज़ करिए, ये सब हमारा कोई डिमांड नहीं था। एंड सरकार को भी समझना चाहिए कि हमारा जो डिमांड है वो जैसा गारंटी दिया था, जैसे देश के सामने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोनों मिनिस्टर्स ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पे जो एग्री किया था, वैसे ही डिमांड आपको रखना पड़ेगा। अभी अगर सुप्रीम कोर्ट बोल रही है कि जिनके ऊपर FIRs है पहले से उनको मत छोड़िए, तो वो हमें मंजूर नहीं है। हमारा जो डिमांड है वो क्लियर है एंड उसी के हिसाब से होना चाहिए, क्योंकि उसी चीज पे एग्रीमेंट भी हुई थी।
1: क्योंकि आपने अभी मेंशन किया कि आज ट्यूसडे तक वो आ जाना चाहिए था जो बातचीत वाला था, तो अभी उसमें कुछ वेट आप कर रहे हैं या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आज आ ही जाएगा, और उसको लेकर थोड़ा सा?
0: देखिए, कल हमें बहुत सारे पैनिक रिपोर्ट्स मिल रहे थे, स्पेशली बिहार से, कि बहुत सारे बच्चों को डिटेन किया जा रहा है, अरेस्ट किया जा रहा है, जेल भेजा जा रहा है। तो इसके वजह से हमें लगा कि शायद सरकार अपने गारंटीज पे अमल नहीं करेगी। इसे हम लोगों ने कल शाम को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया एंड उसमें हमने ऐलान किया कि अगर सरकार अपना जो उन्होंने जबान दिया है वो नहीं रखती है तो हमें हम फोर्स हो जाएंगे फिर से एक बड़ा प्रोटेस्ट कॉल करने का दिल्ली में। तो फिर क्या हुआ कि कुछ घंटे बाद सरकार के जो रिप्रेजेंटेटिव्स है उन्होंने रीच आउट किया, उन्होंने बोला कि बातचीत करनी है, तो हम मिले, रात 10 बजे मिले, 1 बजे तक वो मीटिंग चली एंड उसमें यही डिसाइड हो रहा था कि क्या कैसे रिलीज होंगे, कौन कौन गवर्नमेंट्स ऐसे गारंटी, यू नो, रिटर्न गारंटी वो लोग नोटिफिकेशन निकालेंगे। आपने देखा कि बिहार ने भी निकाला, असम ने भी निकाला, तो हम लोग उसी चीज पे चर्चा कर रहे थे कौन कौन से ऐसे स्टेट गवर्नमेंट्स होंगे जो निकालेंगे एंड क्या लैंग्वेज यूज होना चाहिए उसमें, क्योंकि हमें यही आशंका थी कि अगर हम लोग कुछ केवियट डाले या कंडीशंस डाले कि पहले के FIRs नहीं होने चाहिए या पीसफुल प्रोटेस्ट, मतलब कि पीसफुल वर्ड यूज किया, तो फिर पुलिस के पास पूरे पावर्स आ जाएंगे कि किसी को भी जो वो पसंद नहीं करते उसको नॉन पीसफुल प्रोटेस्टर बोल देंगे। तो हमने बोला कि सारे प्रोटेस्टर्स जो भी इस मूवमेंट में जुड़े थे उनके खिलाफ कोई FIR नहीं होना चाहिए।
2: All right, moving on to the other big issue that is dominating right now, the political row over the alleged pellet firing that took place during the July 20th NEET protest. That has only intensified with fresh details emerging from the Delhi Police diary entry. The diary reportedly records the use of riot control equipment by the RAF personnel during the Sansad Chalo March, including the firing of 2 plastic pellet rounds on orders of the DCP rank officer. The use of pellets is now under a probe. Remember, it's hugely controversial with the CRPF ordering a detailed inquiry into the RAF action. The inquiry report is expected next week, while explanations have been sought from the RAF personnel. Initially, when the story broke, the Delhi police had in fact denied that they used pellet guns. The opposition has launched a sharp attack over the incident, with Congress leaders demanding accountability from the government and a statement from the Home Minister.
3: जहाँ पर हमने हमारी खूबसूरती देखी, जहाँ पे हमने इंसानियत देखा, जहाँ पर हमने लोकतंत्र की ताकत देखी, जहाँ पर हमने लोकतंत्र की ताकत देखी, वहीं पे हमने इस सरकार की क्रूरता भी देखी। हमने देखा आपने किस प्रकार से पैलेट गन का इस्तेमाल किया, हमने देखा किस प्रकार से आपने इलेक्ट्रिक बेटन का इस्तेमाल किया, हमने वो भी नजारा भी देखा कि किस प्रकार से एक पुलिस कर्मचारी ने एक लड़की के गाल पर थप्पड़ मारा। वो एसीपी भी, वो एसीपी का नाम भी हमें याद है, उस पुलिस कांस्टेबल का चेहरा भी याद है जिसने अपने डंडे के साथ एक लड़की के प्राइवेट पार्ट पे उसने आक्रमण किया। हमें याद है वो लड़कियां जिन्होंने आंसू, उनके आंसू निकल रहे थे आंखों से और कह रहे थे कि पुलिस वाले उनके उनको मां बहन की गाली दे रहे थे।
4: पहला आंदोलन देखा कि जिसमें माँ बाप भी जुड़ गए और कहा कि जाओ बच्चों आंदोलन करो, हम आपके साथ हैं। ये पहला आंदोलन सर देखने को मिला है, और केवल दिल्ली में नहीं हुआ, ये केवल दिल्ली में नहीं हुआ। ये अगर ये बात गलत है, अगर ये बात अध्यक्ष महोदय गलत लग रही है, तो देश के होम मिनिस्टर साहब को ले आइए, वो सब एक्सप्लेन कर देंगे।
5: The morning opposition leaders meeting, it was decided that we will raise Mr. Amit Shah's reply. The government is afraid from replying to the questions of the leaders regarding the pelting of stones and other things by the police, excessive forces being used against the students on 20th July in Jantar Mantar. Mr. Amit Shah, the Home Minister, directly controls the Delhi police, therefore we wanted Mr. Amit Shah to come to Parliament and make a statement on it. But for the past 2 days, Mr. Amit Shah is not coming to Parliament, and it is very unfortunate that the Parliament, the students who have been badly treated, particularly the women students.
6: बिल्कुल होनी चाहिए। 20 तारीख को जो भी हुआ उसने काफी हदें लांघी है, और दिल्ली पुलिस के द्वारा उस दिन जो बच्चों को मारा गया है, 12-12 साल की बच्चों को मोलेस्ट किया गया है, सड़क पर उन्हें घसीटा गया है, सर फोड़े गए हैं, हमारे जो खुद के वॉलंटियर्स थे जो एक्चुअली सरकार की मदद कर रहे थे क्राउड मैनेज करने में, उनको भी मारा गया है, तो बिल्कुल से उसकी इंडिपेंडेंट जांच होनी चाहिए। किसने ऑर्डर दिया पैलेट गन चलाने का, किसके ऑर्डर पर बच्चों को इतना मारा गया, किसके ऑर्डर पर जो है उनको इतना घसीटा गया, इस बारे की पूरी इंडिपेंडेंट जाँच होनी चाहिए।
2: All right, so there's a lot of scrutiny on what took place on July 20th during that march to Parliament and the violence that broke out. The police is also combing CCTV footage of that day and identifying criminals. In fact, you know, criminals have been identified after the Delhi police went through hundreds of gigabytes of the CCTV footage. At least 100 CCTV video clips have showed crowds breaching security cordons, attacking police personnel, throwing stones and damaging property. Many faces with criminal history and files already existing in police records have appeared on CCTV, is what sources have said. So far, 2,873 people with criminal backgrounds have been identified using facial recognition systems. This is something commented on by the Supreme Court as well, saying often in such protests, you know, criminals infiltrate. Many of the names already existed in the records as habitual offenders, according to sources who have added that a significant number have more than one criminal case filed against them. So this is another aspect that is being looked into regarding the violence on the 20th of July. Now, the Supreme Court will be forming an SIT to probe the Jantar Mantar violence. This is what the Supreme Court said today. The top court has, in fact, questioned the police action during the student protest, with the Chief Justice of India, Surya Kant, saying that cops did not follow the protocol which has been laid down by the courts. The CJI said that a probe is meaningless without fixing accountability, adding that those responsible for the excesses will face the law. The Supreme Court has now issued a notice to Delhi, Maharashtra, Bihar, UP, Assam police, seeking details on action that was taken against protesters. The top court also directed that there should be no coercive action against any of the students. Delhi police's lawyer told the court that the injuries suffered by the police personnel also cannot be ignored. The lawyer said that nearly 250 cops were injured and added that forces cannot be demotivated. The SIT will be formed after the next hearing. Now, Prime Minister Modi's video in which he outlined the government's tougher crackdown on paper leaks was briefly restricted on Meta platform Facebook in India before it was restored. Meta says the content was removed in error due to a technical glitch and has since been reinstated, with a spokesperson confirming the restoration. Sources say the company has apologized to the government, also informing officials that the takedown was inadvertent. However, the government is treating the matter seriously. They're not satisfied with this explanation. They're examining Meta's explanation and the sequence of events. Sources add that global heads of Meta and Instagram heads have been summoned now by the IT ministry for an explanation. Right, with that, time for us to slip into a short break. Do remember, we will be bringing you all the very latest from the Lok Sabha as the debate continues on the anti-paper leaks bill. Stay with us.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: पर जब इंसान प्रकृति के साथ सामंजस्य को आत्मसात कर लेता है तो वो मधुर और लालन पोषण करने वाली बन जाती है। पी मार्क सरसों के तेल ने प्राकृतिक तरीके से सरसों के तेल को बनाया है शुद्धता और गुणवत्ता के साथ।
2: The mustard specialist since 1933, बरसों से सरसों।
3: कुछ तो बात है इस तेल में।
4: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
5: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
6: अरे मेरे राजा।
7: सबका राजा आकर मसाला।
8: पीओके के फायरिंग रेंज में खड़े हैं।
9: Just few inches away is POK.
8: तो हो सकता है दुश्मन को पता हो कि सैफ अली खान यहाँ पर खड़े हैं। Is it fire?
10: ए युग तुम्हारा, ए रण तुम्हारा, हर चुनौती तुम्हारी, हर शिखर तुम्हारा, तुम्ही हो भारत का स्वाभिमान।
11: हर सेक्टर, हर स्टेट, हर रीजन, हर उम्र के इनोवेटर्स ने दिया जबरदस्त प्रतिसाद। तभी तो वंदे भारतम में एप्लीकेशंस पहुंचे 25,000 के पार और रजिस्ट्रेशन डेडलाइन बढ़कर हुई है 30 जुलाई। आप भी भारत के सबसे बड़े ग्रास रूट इनोवेशन मूवमेंट से जुड़े vandebharatam.org पर रजिस्टर करें।
12: याद है ना मैंने क्या सिखाया था। सिल्वर के लिए स्टर्लिंग मार्क, गोल्ड के लिए हॉल मार्क
13: और मस्टर्ड ऑयल के लिए सिर्फ पी मार्क।
14: इस बार तो माँ से भी बेहतर बना।
2: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933, बरसों से सरसों।
3: कुछ तो बात है इस दिल में।
15: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी every day.
16: Launch control 0 to 100.
17: This isn't just about cars and bikes, this is about how you move.
18: This car makes no sense, yet it makes every sense.
19: What we are sitting inside is a Joby powered air taxi.
17: Your friend said ye le le, we said maybe not. Hi, my name is Siddharth Sharma. I'm your NDTV Automate, your ultimate guide into the world of automobiles and mobility.
15: Meetha ya namkeen, chahe jaise khao, 100% suji se bani, are pure vermicelli, swadisht, sehatmand, har roz.
20: What seems settled for me is unfinished business. So I rewind, I pause, I reflect. I dig until what's buried stands up to be counted. Breaking ground, not just headlines, the meaning behind them. This is Breaking Ground with me, Vedika Sood.
21: The front lines of Kargil. The fury of Operation Sindhu.
22: So many attacks.
21: The chaos and cries of disaster zones. To fighter jet cockpits. And the world's most defining interviews.
22: It's incredible.
21: He has seen history break. Live. Unfiltered. 20,000 hours of live broadcasting.
22: Welcome to Left, Right and Center.
21: Hard facts.
22: War struck country.
21: Hard questions.
22: In the Ukraine.
21: 30 years of trust.
22: In the Kargil area. North Ukraine. In France. In Italy. At Srinagar. Vishnu Shom for NDTV.
21: Vishnu Shom. Only on NDTV.
4: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
5: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
6: अरे मेरे राजा।

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: पर जब इंसान प्रकृति के साथ सामंजस्य को आत्मसात कर लेता है तो वो मधुर और लालन पोषण करने वाली बन जाती है। पी मार्क सरसों के तेल ने प्राकृतिक तरीके से सरसों के तेल को बनाया है शुद्धता और गुणवत्ता के साथ।
3: द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933 बरसों से सरसों।
4: कुछ तो बात है इस तेल में।
5: ये युग तुम्हारा, ये रण तुम्हारा, हर चुनौती तुम्हारी, हर शिखर तुम्हारा, तुम्ही हो भारत का स्वाभिमान।
6: हर सेक्टर, हर स्टेट, हर रीजन, हर उम्र के इनोवेटर्स ने दिया जबरदस्त प्रतिसाद। तभी तो वंदे भारतम में एप्लीकेशंस पहुंचे 25,000 के पार और रजिस्ट्रेशन डेडलाइन बढ़कर हुई है 30 जुलाई। आप भी भारत के सबसे बड़े ग्रास रूट इनोवेशन मूवमेंट से जुड़ें। vandebharatam.org पर रजिस्टर करें।
7: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी, एवरीडे।
8: याद है ना मैंने क्या सिखाया था? सिल्वर के लिए स्टर्लिंग मार्क, गोल्ड के लिए हॉल मार्क
9: और मस्टर्ड ऑयल के लिए सिर्फ पी मार्क।
10: इस बार तो माँ से भी बेहतर बना।
3: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933 बरसों से सरसों।
4: कुछ तो बात है इस दिल में।
11: लॉन्च कंट्रोल 0 to 100।
12: This isn't just about cars and bikes. This is about how you move. This car makes no sense, yet it makes every sense.
13: What we are sitting inside is a Joby-powered air taxi.
12: Your friend said, "Ye le le." We said, "Maybe not." Hi, my name is Siddharth Sharma. I'm your NDTV Automate, your ultimate guide into the world of automobiles and mobility.
7: Meetha, ya namkeen, chahe jaise khao, 100% सूजी से बनी

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: पर जब इंसान प्रकृति के साथ सामंजस्य को आत्मसात कर लेता है तो वो मधुर और लालन पोषण करने वाली बन जाती है। पी मार्क सरसों के तेल ने प्राकृतिक तरीके से सरसों के तेल को बनाया है शुद्धता और गुणवत्ता के साथ।
3: द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933 बरसों से सरसों।
4: कुछ तो बात है इस तेल में।
5: ए युग तुम्हारा, ए रण तुम्हारा, हर चुनौती तुम्हारी, हर शिखर तुम्हारा, तुम्ही हो भारत का स्वाभिमान।
6: हर सेक्टर, हर स्टेट, हर रीजन, हर उम्र के इनोवेटर्स ने दिया जबरदस्त प्रतिसाद। तभी तो वंदे भारतम में एप्लीकेशंस पहुंचे 25,000 के पार और रजिस्ट्रेशन डेडलाइन बढ़कर हुई है 30 जुलाई। आप भी भारत के सबसे बड़े ग्रास रूट इनोवेशन मूवमेंट से जुड़ें। vandebharatam.org पर रजिस्टर करें।
7: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी, एवरीडे।
8: याद है ना मैंने क्या सिखाया था? सिल्वर के लिए स्टर्लिंग मार्क, गोल्ड के लिए हॉल मार्क
9: और मस्टर्ड ऑयल के लिए सिर्फ पी मार्क।
10: इस बार तो माँ से भी बेहतर बना।
3: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933 बरसों से सरसों।
4: कुछ तो बात है इस दिल में।
11: लॉन्च कंट्रोल 0 to 100।
12: This isn't just about cars and bikes. This is about how you move.
13: This car makes no sense, yet it makes every sense.
14: What we are sitting inside is a Joby powered air taxi.
12: Your friend said, "Yeah, Lily." We said, "Maybe not." Hi, my name is Siddharth Sharma. I'm your NDTV Automate, your ultimate guide into the world of automobiles and mobility.
7: चाहे जैसे खाओ 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली, स्वादिष्ट, सेहतमंद हर रोज।
15: दिस इज द शो वेयर वी ब्रिंग यू ऑल द हॉट एंड हैपनिंग्स फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ एंटरटेनमेंट एंड लाइफस्टाइल।
16: रियली
15: पैशन दैट मेड यू गैग, फिल्म्स दैट मेड यू फैन गर्ल, आर्ट दैट मेड इट टू द ग्राम एंड ट्रेंड्स दैट केप्ट अस विद द प्रोग्राम। Hello and welcome to a brand new show. I am your host Mayank Chaudhary and this is Limelight.
17: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
18: वाओ मामा क्या स्वाद है।
19: अरे मेरे
2: राजा।
8: The front lines of Kargil. The fury of Operation Sindhu.
0: So many attacks.
8: The chaos and cries of disaster zones. The fighter jet cockpits. And the world's most defining interviews.
0: It's incredible.
8: He has seen history break. Live. Unfiltered. 20,000 hours of live broadcasting.
0: Welcome to Left, Right and Center.
8: Hard facts.
0: War struck country.
8: Hard questions.
0: In the Ukraine.
8: 30 years of trust.
0: In the Kargil area. North Ukraine. In France. In Italy. At Srinagar. I am Srinagar. Vishnu Shom for NDTV.
8: Vishnu Shom. Only on NDTV.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: ए युग तुम्हारा, ए रण तुम्हारा, हर चुनौती तुम्हारी, हर शिखर तुम्हारा, तुम्ही हो भारत का स्वाभिमान।
3: हर सेक्टर, हर स्टेट, हर रीजन, हर उम्र के इनोवेटर्स ने दिया जबरदस्त प्रतिसाद। अभी तो वंदे भारतम में एप्लीकेशंस पहुंचे 25,000 के पार और रजिस्ट्रेशन डेडलाइन बढ़कर हुई है 30 जुलाई। आप भी भारत के सबसे बड़े ग्रास रूट इनोवेशन मूवमेंट से जुड़े vandebharatam.org पर रजिस्टर करें।
4: लॉन्च कंट्रोल 0 to 100।
5: Welcome, you're watching Prime 5 with me, Raisha Sehgal. Our top focus today on the show, anti-paper leak showdown continues in the parliament. We'll be taking you through that. Lots more lined up. Even Kangana Ranaut's Priyanka Gandhi Vadra is currently speaking. Take a listen in Lok Sabha on the anti-paper leak bill. Take a listen.
6: Police lathi charge mein ghayal, Delhi ki us chhatra ki sthiti janne ke liye. Police lathi charge mein ghayal, Delhi ki us chhatra ki sthiti janne ke liye. जो आईसीयू में अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ रही है। हमसे कुछ ही समय पहले आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री जी श्री जेपी नड्डा वहां गए थे और उनसे कुछ समय पहले अन्य नेता भी गए। जब तक हम वहां पहुंचे, उनकी की मां नेताओं के आने जाने से गुस्से में। सुन लीजिए,
7: सुन लीजिए,
6: सुनिए। किसी की पीड़ा का मजाक नहीं उड़ाते, किसी कोई भी हो किसी की पीड़ा का मजाक नहीं उड़ाते।
7: बिल्कुल,
6: आप संसद में बैठे हैं
7: निशिकांत जी, आप ना रहे हो।
6: जब तक हम वहां पहुंचे, उस लड़की की मां नेताओं के आने जाने से गुस्से में थी। किस लिए आए हो, उसने आईसीयू के दरवाजे के बाहर खड़े होकर हमें पूछा। हमारे सामने कांपते हुए हाथ जोड़े कहने लगी कि धन्यवाद आप आए हैं, ठीक है, मगर मुझे किसी से नहीं मिलना, मुझे किसी से बात नहीं करनी। महोदय, उस मां की पीड़ा से उसका पूरा शरीर कांप रहा था, लेकिन उसने दृढ़ आवाज में कहा, सुबह से बड़े बड़े लोग यहां आ रहे हैं, एक के बाद एक वीडियो बना रहे हैं। वह भी आए जिन्होंने मेरी बेटी का ये हाल किया है। किस लिए, उसने हमसे पूछा।
7: शेम।
6: किस लिए? मेरी बेटी की बलि तो चढ़ गई है, लेकिन उसे कुछ भी हो जाए तो मैं उसके लिए अपने आप लड़ूंगी। किसी की मदद नहीं चाहिए, मैं अकेले लड़ लूंगी। महोदय, शायद मुझे यहां खड़े होकर सबके सामने ये बात नहीं कहनी चाहिए, मगर उस मां की गुहार ने मुझे शर्मिंदा किया। उसके दिल के टूटने की वो आवाज जो अस्पताल की दीवारों से मैं गूंज रही थी, मेरे मन में अभी भी गूंज रही है। इसलिए उस मां की इजाजत लिए बिना मैं आपके द्वारा आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय जी और आदरणीय गृह मंत्री महोदय जी से पूछना चाहती हूं कि क्या जरूरत थी एक मासूम बच्ची पर इस तरह दमन करने की? क्या जरूरत थी उन छात्रों पर आंसू गैस चलवाने की, उन पर लाठियां बरसाने की, उन पर वाटर कैनन्स चलवाने की? क्या जरूरत थी उन नौजवान लड़कियों को जलील करते हुए उनके कपड़े फाड़ने की, उनको बेरहमी से गंदी तरह पिटवाने की? देश के युवाओं पर पैलेट गन्स और AK-47 चलवाने की क्या आवश्यकता थी? क्या वे आतंकवादी थे? क्या आतंकवादी हैं? टेररिस्ट हैं? हाँ, कांग्रेस बोल रही है, हाँ कांग्रेस बोल रही है। जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, कांग्रेस बोल रही है, जवाब मांग रही है, जवाब दीजिए। कौन जवाब देगा, कौन जवाब देगा? गृह मंत्री जी जवाब देंगे? किसने ऑर्डर दिया, किसने ऑर्डर दिया दिया पहले गन्स चलाने के लिए? किसने ऑर्डर दिया? आपके माध्यम से मैं पूछती हूँ अध्यक्ष महोदय, किसने ऑर्डर दिया? प्रधानमंत्री जी ने दिया? गृह मंत्री जी ने दिया? जवाब देंगे? पूरा देश पूछ रहा है, सिर्फ कांग्रेस पार्टी नहीं पूछ रही है, पूरा देश पूछ रहा है अध्यक्ष महोदय। देश के माता पिता पूछ रहे हैं, छात्र पूछ रहे हैं, अध्यापक पूछ रहे हैं, पूरा देश आज ये पूछ रहा है। और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप इस सवाल का जवाब दें। क्यों डरते हैं आप इस देश के नौजवानों से? क्यों डरते हैं आप इस देश की बुलंद आवाज से? और उस आवाज को दबाने का हक आपको किसने दिया है? महोदय, ये सदन, यहाँ बैठे हुए सांसदों की जागीर नहीं है, ये इस देश की अमानत है। यहाँ बैठे हम सब, इस देश की जनता, इस देश के युवाओं, बुजुर्गों, गरीबों, अमीरों और सब धर्मों, सब वर्गों के देशवासियों के सेवक हैं। हम उनके प्रतिनिधि हैं और ये सत्ता हमें उन्होंने ही दी है। इस देश का संविधान हमारी सर आंखों पे, इस देश का लोकतंत्र सर्वोपरि है, इसे ध्वस्त करना पाप है। यह करोड़ों जनता हमसे सिर्फ एक चीज मांगती है, जवाबदेही। इंग्लिश में इसे अकाउंटेबिलिटी कहते हैं। हमें सत्ता देकर, हमें यहां तक लाकर सिर्फ उसकी ये गुहार है कि जो हम करें उसकी भलाई के लिए करें, और अगर उनके साथ अन्याय हो तो हम उनके प्रति जवाबदेह बने और उन्हें न्याय दिलवाएं। पिछले दिनों हजारों बच्चे सड़क पर उतरे, उन्होंने अपनी पीड़ा व्यक्त की। गांधी जी के दिखाए हुए रास्ते पर अहिंसा और सत्य को अपने दिलों में रखते हुए, गाते मुस्कुराते हुए शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया। लोकतंत्र के सबसे पवित्र सिद्धांत के तहत उन्होंने अपनी आवाज उठाने का अधिकार कायम किया। ये उस भारत के बच्चे हैं जो गांव में रहते हैं, जो महानगरों में रहते हैं, जो छोटे कस्बों में, छोटे शहरों में रहते हैं, जहां माँ अपने गहने बेच देती है, पिता अपनी जमीन गिरवी रख देता है, एक परिवार अपनी पूरी जिंदगी की कमाई बच्चे के सपने पर खर्च देता है। और अब उन्हीं बच्चों को लगने लगा है कि आज इस देश में मेहनत से ज्यादा बेईमानी मायने रखती है, मेरिट से ज्यादा पैसा मायने रखता है। तब सिर्फ एक छात्र नहीं हारता, उम्मीद हारती है। इन परेशान बच्चों ने अपनी उम्मीदें आपसे साझा की। उनकी मांगे क्या थी? कि पेपर लीक करके उनके साथ जो बार बार अन्याय किया जा रहा है उस पर कार्रवाई की जाए, कि जो सिस्टम उनके भविष्य को कुचल रहा है उसे सुधारा जाए, कि जो माफिया उन्हें घेरे हुए है उसे हटाया जाए, कि जिस मंत्री के कार्यकाल में ये सब हुआ वह इस्तीफा दे, कि उन पर बर्बरता करने वालों पर कार्रवाई की जाए और उसके लिए माफी मांगी जाए। बस यही उनकी मांग थी ना, कि जो शिक्षा और स्वतंत्र अभिव्यक्ति का अधिकार उन्हें संविधान ने दिया है उसे कायम रखा जाए। महोदय, हमारे एजुकेशन सिस्टम में कुछ समय से बहुत खामियां भर चुकी हैं। बच्चों पे जो प्रेशर डाला जाता है उसकी वजह से सैकड़ों बच्चों ने आत्महत्या कर डाली है, उससे भी ज्यादा बच्चे डिप्रेशन में डूब रहे हैं। परिवारों पर बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए घूस, कैपिटेशन फीस, ट्यूशन फीस, कोचिंग फीस आदि के घिनौने दबाव हैं। लोन लेने पड़ते हैं, सामान बेचना पड़ता है, और उसके बावजूद कोई गारंटी नहीं कि उनके बच्चों के भविष्य मजबूत बन पाएंगे, क्योंकि बेरोजगारी चरम पे है। इस सरकार ने रोजगार पैदा करने वाले सभी सेक्टर्स को लगातार कमजोर किया। एग्जामिनेशन सिस्टम खुद फेल हो गया है। पिछले दशक में 152 पेपर लीक हुए, 750 करोड़ छात्र प्रभावित हुए, मगर एक भी दोषी, एक भी माफिया को सजा नहीं। हमारे एजुकेशन में आरएसएस के प्रचारकों को भर भर कर उसे खोखला बना दिया है। जबरदस्ती एनटीए बनवाकर सिस्टम का केंद्रीकरण करके उसे और भी उलझा दिया। देश के कुल बजट में, हाँ जी, जबरदस्ती, आपने अभी अभी सुना, तमिलनाडु के हमारे साथी क्या कह रहे थे। देश के कुल बजट में एजुकेशन बजट की हिस्सेदारी हर साल बढ़ाने की बजाय घटती जा रही है। 1.4 लाख करोड़ रुपया का पूरा बजट एजुकेशन बजट है और 1.32 लाख करोड़ सिर्फ नीट देने वाले 22 लाख बच्चों के परिवारों से हर साल खींचा जाता है। एक और शर्मनाक आंकड़ा भी है, 1.4 लाख करोड़ रुपया हमारा पूरा एजुकेशन बजट और 16 लाख करोड़ रुपए जो मौजूदा सरकार ने बड़े उद्योगपतियों के लोन माफ किए हैं। सोचिए, सोचिए कि सच ये है अध्यक्ष महोदय कि जिस तरह अस्पताल में उस छात्रा की मां का विश्वास पूरे सिस्टम से हट गया है, उसी तरह देश के युवाओं का भरोसा इस पूरे सिस्टम से टूटा है। और जब इस तरह देश के भविष्य हमारे युवा निराश होकर सरकार और सिस्टम से अपना भरोसा हटा देते हैं, तो उस भरोसे को फिर से बनाने के लिए सिस्टम के अंदर से जवाब नहीं ढूंढा जा सकता, उसके दायरे से बाहर निकलना पड़ता है, नए सिरे से ठोस प्रयास करने पड़ते हैं। अफसोस की बात यह है अध्यक्ष महोदय कि इतना हो जाने के बाद भी आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय जी और उनके साथी इस सच्चाई को समझ नहीं पा रहे हैं। वे अभी भी ये सोच रहे हैं कि पीआर, नैरेटिव चेंज और पालतू मीडिया के सहारे एक बार फिर उनकी नैया पार हो जाएगी। परसों शिक्षा मंत्री जी ने शर्मनाक परिस्थितियों में अपना इस्तीफा दिया और कल यहीं मकर द्वार पर मेरे सत्ता पक्ष के सांसदों ने जिंदाबाद के नारे चिल्लाते हुए उनका संसद में ऐसे स्वागत किया जैसे मानो कोई सुपरस्टार पहुंच गए हैं। विडंबना देखिए महोदय, जब भूतपूर्व शिक्षा मंत्री को मुकुट पहनाया जा रहा था, स्वागत हो रहा था उनका, तब महाराष्ट्र में एक परिवार पेपर लीक पीड़ित अपनी बेटी की आत्महत्या का शोक मना रहा था। आपकी सरकार ने देश के करोड़ों छात्रों को क्या संदेश दिया? आपको किस बात का गौरव है, किस बात का अभिमान है, ये कौन सा अहंकार है? जहां आंखों में शर्म होनी चाहिए वहां बेशर्मी और स्वागत के नगाड़े बजाए रह रहे हैं। एक तरफ मातम है, दुख है, यहां फूल माला डाल रहे हैं। कोई आप पर कैसे यकीन करे? प्रधानमंत्री महोदय जी ने नया शिक्षा मंत्री चुना, एक ऐसे व्यक्ति को इस पद पर आसीन किया जिसने एक गर्भवती महिला के बलात्कारियों की रिहाई पर अपनी सहमति व्यक्त की, खुशी जताई। देश की करोड़ों लड़कियों को प्रधानमंत्री जी ने क्या संदेश दिया? सर अखबारों में है,
8: अखबार में नहीं। मेरा
9: कुछ भी बोल के चले जाते हैं क्या? तो कैसे क्या है इनके पास?
5: प्रियंका गांधी वाड्रा's speech in the Lok Sabha over the anti-paper leak bill, but she did not speak much about the anti-paper leak bill. Rather, she questioned the government on the use of pellet guns and the use of AK-47. And she further goes on to ask why the Prime Minister and the Home Minister are not saying anything on the violence that incurred on Monday, July 20th. What we're witnessing right now is...
10: जो अभी अभी हमारे वर्तमान नए शिक्षा मंत्री को जो उन्होंने टिप्पणी की, कैरेक्टर असैसिनेशन है एक तरीके से संसद में, और इस तरीके के भाषा हम उम्मीद नहीं करते हैं। मैं इसमें प्रहलाद जोशी जी ने भी खुद कहा है, एक तो उन्होंने प्रिया जी ने जो गलत बात कही है रिकॉर्ड पे उसको रिकॉर्ड से हटा दिया जाए, दूसरा इस तरह का भाषा का इस्तेमाल ना करें। आपने डिबेट से पहले आपने अपील किया कि संसद में डिबेट का स्तर को नहीं गिराने चाहिए। उनके पार्टी के वो सीनियर लीडर है, वो पहली बार चुन के आए हैं, मगर उनके पार्टी में सीनियर है, जिम्मेदारी के साथ बोलना चाहिए। अगर पूरा ऑथेंटिकेट नहीं कर सकते हैं तो मैं ये मानता हूं कि उनको क्षमा मांगना चाहिए सदन से।
8: मेरा मत ये सदन के अंदर, ये सदन सर्वोच्च लोकतांत्रिक संस्था का सदन है, इसका एक एक शब्द हमेशा रिकॉर्ड में रहता है। मैं माननीय सदस्य से आग्रह करूंगा कि बिना तथ्यों के हमें इस तरीके के सदन के पटल पर बात नहीं करनी चाहिए। ये तो डिलीट कर दिया, लेकिन आगे भी
6: सर जो प्रहलाद जोशी जी ने बिल्कीस बानो के बलात्कारियों की रिहाई पर जो बयान दिए उसका प्रमाण मैं आपको दे दूंगी, मैं भेज दूंगी। मैं ऑथेंटिकेट
11: करूंगा। स्पीकर का डायरेक्शन 115, उनको पहले ऑथेंटिकेट करने कहिए सर, ऑथेंटिकेट करेंगे उसके बाद वो आगे बढ़ेंगे, ऐसा नहीं होगा।
12: सर
11: उनको ऑथेंटिकेट करने के लिए कहिए, ऑथेंटिकेट करने कहिए उनको।
5: And well, that was Kiran Rijiju, who of the Parliamentary Affairs Minister, came out and said that Priyanka Gandhi Vadra is only character assassinating the leaders of the ruling party right now. A short while ago, Priyanka Gandhi Vadra also gave out a speech in the Lok Sabha where the anti-paper leak bill discussion is happening. She rather questioned the government as to who ordered the firing on the protesters and the use of pellet guns. There was not much that was spoken about the anti-paper leak bill. Rather, she also says that 152 paper leaks and zero convictions. But at this point of time, there is also selective outrage by the opposition.
8: मैं एक विषय बताऊं, एक मिनट दूं। नियम 353 के अंदर फिर मैं एक बार स्पष्ट कर दूं, किसी भी सदस्य द्वारा किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध महानहारी या अभियोगात्मक प्रकृति का कोई आरोप नहीं लगाया जाएगा जब तक कि सदस्य ने अध्यक्ष और संबंधित मंत्री को पर्याप्त अग्रिम सूचना नहीं दे दी हो। यह व्यवस्था है,
13: हाउस मैन दिस सेम हाउस ऑनरेबल श्रीकांत दुबे टोल्ड स्टिल दैट इज इन द रिकॉर्ड अबाउट इंदिरा गांधी जी, स्टिल दैट इज द रिकॉर्ड, स्टिल दैट इज द रिकॉर्ड। सर
8: बोलो, आप भी बोलो
14: सर। केसी वेणुगोपाल जी ने जो नाम लिया है और मैं नेहरू जी के बारे में जो बात कहा है मैंने सर, मैं उस पर कायम हूं और मैं किताब जो है ऑथेंटिकेट करने के लिए तैयार हूं। अय्याज थे नेहरू, अय्याज थे, मैं फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूं, आई एम अगेन रिपीटिंग। यही फैक्ट है और मैं किताब में ऑथेंटिकेट करके दे रहा हूं।
8: मैं जब आसन पर होता हूं जो मैं व्यवस्था देता हूं चाहे सत्ता पक्ष हो या प्रतिपक्ष हो, मैं समान व्यवस्था देता हूं। मैं जब आसन पे होता हूं बोलने दो, आप उनको बोलने दें, उनको बोलने दें। नो, अरे आप उनको नहीं बोलने देना चाहते, चलिए चलिए
12: 114
8: प्लीज प्लीज चाहिए।
15: सर सर सर, प्रियंका जी को ऑथेंटिक करना चाहिए, ऑथेंटिकेट करना चाहिए। आप जो मिस इन्फॉर्मेशन कर रहे हैं, नहीं तो मिस इन्फॉर्मेशन के लिए कार्रवाई करना चाहिए सर। ठीक है, कुछ भी बोल के चल सकता है क्या? और प्रोसीजर फॉर द मिनिस्टर द करेक्टिंग द मिस्टेक
12: 114
15: में, अगर वो आपने रूल का जिक्र किया 353 में, मुझे कोई नोटिस नहीं दिया है, मैं इधर प्रेजेंट हूं और मैंने ऐसे कैसे बिना ऑथेंटिकेशन बोल सकते मुझे बिना नोटिस दिए हुए, इसलिए मैं इसको खंडन करता हूं और उसको एक्सपेल करना चाहिए और उनको माफी मांगना चाहिए।
16: नहीं, ये चैप्टर आगे नहीं बढ़ेगा सर, बिल पे बिल पे
6: सर, रिटन बाय रिस्पेक्टेड जर्नलिस्ट, आई विल ऑथेंटिकेट यूजिंग दिस सर।
8: आप माननीय सदस्य प्लीज इसको छोड़ दें।
6: सर, अगर जोशी जी अपने बयान का
17: इस विधेयक पर ही चर्चा होगी,
6: आप इस बयान का खंडन कर रहे हैं?
17: माननीय सदस्य, मैं आपसे फिर आग्रह कर रहा हूं, इस सदन में इस विधेयक पर ही चर्चा होगी, फिर भी नो, ये विधेयक का विषय नहीं है। आप नो, आप बोलो तो विधेयक पर बोलो, ये मेरी अपेक्षा आपसे। प्लीज छोड़िए, इस विषय को छोड़िए।
6: आज हम सदन पटल पर एक ऐसे विधेयक में संशोधन पर डिबेट कर रहे हैं जो 2024 में पारित हो चुका था, और इसमें मुख्य संशोधन यही है कि पेपर लीक के अन्य अपराधों के लिए सजा बढ़ाई जाएगी। मगर जब से ये विधेयक पारित हुआ, तब से अब तक इस सरकार ने एक भी अपराधी को सजा नहीं दी। आपने देखा है कि कल और परसों से फेस रिकॉग्निशन द्वारा प्रदर्शन करने वाले बच्चों के नाम और पते सार्वजनिक किए जा रहे हैं, मगर यही काम पेपर लीक करने वाले अपराधियों के लिए अभी तक नहीं किया गया। ना इस विधेयक में पेपर लीक रोकने के कोई ठोस कदम है, इससे देश के युवाओं का भरोसा कैसे बनेगा? अध्यक्ष महोदय, आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय जी को आपके माध्यम से मैं कहना चाहती हूँ कि शायद उन्हें अपने सलाहकार बदलने चाहिए। वे असलियत से एकदम टूट चुके हैं, नई कमेटियां बनाने से काम नहीं चलेगा, उनका अध्यक्ष चाहे कोई भी हो। राधा कृष्ण कमेटी भी व्यवस्था में सुधार लाने के लिए बनी थी, आज तक उसकी एक सिफारिश लागू नहीं हुई है, और इस नई कमेटी में तो एक एक्स आईबी चीफ,
18: अरे बात
6: फिर चिल्लाएंगे, एक आईटी कंपनी के मालिक और एक गौमूत्र के विशेषज्ञ भी हैं। इन्हें शिक्षा के बारे में क्या पता जी? सर सच है, आप आज मेरे से नाराज हो रहे हैं, मन मुस्कुरा लीजिए।
18: वो आपने भी चुनाव लड़ा।
6: सर, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का रिकॉर्ड पहले से ही बहुत खराब है। वैसे भी कल की सुनवाई में सीबीआई का वकील पेश ही नहीं हुआ। संसद में विपक्ष को दोषी ठहराने से खोखले राजनीतिक खेल खेलने से काम नहीं चलेगा। आप जेन जी का भरोसा वापस जीतना चाहते हैं तो नए नए एंगल से अपने फोन से नए नए वीडियो बनाने से नहीं होगा। प्रधानमंत्री जी को कैमरे का एंगल नहीं, दिल का एंगल बदलना पड़ेगा। ये जेनरेशन जागरूक है, समझता है, झूठ पहचानने की उसकी अपार क्षमता है। इनका दिल और दिमाग जीतने के लिए आपको सच्चाई पर उतरना पड़ेगा। आपके शासन के चलते इस नौजवान पीढ़ी के साथ घोर अन्याय हुआ है, बर्बरता हुई है। इस सच्चाई को स्वीकार करिए। अपनी जिम्मेदारी से पीछे हटने से काम नहीं चलेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय जी, आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। शिक्षा विशेषज्ञों को इकट्ठा कीजिए, छात्रों, अध्यापकों, सभी स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर, अन्य विचारधाराओं के थॉट लीडर्स के साथ गहरी चर्चाएं करवाकर एक नई शिक्षा प्रणाली तैयार कीजिए। मौजूदा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में 8 महीने तो एग्जाम चलते हैं, अध्यापकों को पढ़ाने का समय नहीं मिलता। सिर्फ आरएसएस के लोगों से भरने की बजाय सिस्टम को शिक्षित, एजुकेटेड, उन्नत और उदार दृष्टिकोण के लोगों से भी भरिए, जिनकी योग्यता सिर्फ उनकी विचारधारा न हो। रोजगार पैदा करने के सख्त कदम उठाइए, इस पर फोकस करिए। मेडिकल कॉलेजेस की संख्या बढ़ाइए, चिकित्सा शिक्षा का विस्तार कीजिए, ताकि ये बच्चे जो मेहनत कर करके भी अपने भविष्य नहीं बना पा रहे हैं, एक उज्जवल भविष्य का सपना देख पाए। अध्यक्ष महोदय, छात्रों को सड़क से हटाया जा सकता है, लेकिन उनके सवालों को नहीं। हर लाठी जो किसी लड़की पर, किसी लड़के पर चली है, वे बच्चों की पीठ से ज्यादा सरकार की साख पर पड़ी है। देश के नौजवान न्याय मांग रहे हैं, भीख नहीं। वे यहां सरकार गिराने नहीं, अपना भरोसा बचाने के लिए आए थे। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं सरकार को कहना चाहती हूं, अपनी साख बचाइए, अपनी नीयत ठीक करिए, अपनी अकड़ का इलाज कीजिए, अपने वादों पर अमल कीजिए। आपके शासन में हमने बड़ी बड़ी चोरियां देखी हैं, चुनाव में वोटों की चोरी, राम मंदिर में चंदा की चोरी, आपके उद्योगपति मित्रों द्वारा देश की संपत्ति की चोरी, किसानों की जमीन की चोरी, लेकिन सबसे बड़ी चोरी हाँ ठीक है, सबसे बड़ी चोरी तब हुई, कहिए बोलिए शांति से सुन लीजिए। आपको मौका मिलेगा, आप जितनी भी चोरियों की बात करना चाहते हैं आप कर लीजिए, अभी मेरा समय है। सबसे बड़ी चोरी तब हुई जब देश के नौजवानों के भविष्य, उनके सपने चुराए गए। भविष्य की चोरी, सपने की चोरी, किसी भी चोरी से कहीं बड़ी होती है। महोदय, अगर देश का युवा निराश हो जाए, अगर देश का युवा निराश हो गया, उसकी उम्मीद टूट गई, तो सबसे बड़ी हार भारत की हार होगी। और हम कांग्रेस और विपक्ष के लोग जान दे देंगे, मगर भारत की हार नहीं होने देंगे। सर, अब तो मुस्कुरा लीजिए, भाषण खत्म।
19: जी ने राहुल गांधी जी का स्पीच का चोरी कर लिया है, वो पूरा जाओ।

0: तेजस्वी सूर्या
1: धन्यवाद स्पीकर सर। एक बहुत महत्वपूर्ण और संवेदनशील विषय पे बोलने के लिए आप मुझे मौका दिए हैं। अध्यक्ष महोदय, पूरे देश के युवा इस संसद के ओर, हम सब के ओर देख रहे हैं। इस बहस से, इस चर्चा से क्या निकल कर आएगी? उस आम युवा जो घर से इस सदन को देख रहे हैं, उनको ये तूतू मेमे से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ही इज नॉट कंसर्न्ड अबाउट किस सरकार में क्या हुआ, पिछले इतिहास में क्या हुआ, प्रदेशों में जब कौन राज कर रहा था तब क्या हुआ, उनको इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। द स्टूडेंट हु इज प्रिपेयरिंग फॉर द नेक्स्ट एग्जामिनेशन, ही इज मोर कंसर्न्ड अबाउट हु इज गोइंग टू फिक्स द सिस्टम फॉर द फ्यूचर, एंड ही नोस दैट दिस गवर्नमेंट अंडर द प्राइम मिनिस्टर मोदीज लीडरशिप इज ट्राइंग टू फिक्स द सिस्टम वंस एंड फॉर ऑल फॉर द बेटर फॉर हिज फ्यूचर। अध्यक्ष जी, एजुकेशन इस देश में एक ऐसा एक महत्वपूर्ण लैडर है समाज में आगे बढ़ने के लिए, सक्सेस पाने के लिए, और आम परिवार को, ऑर्डिनरी परिवार को शिक्षा के अलावा दूसरा रास्ता होते ही नहीं। बाकी जो परिवार होते हैं, अमीर परिवार से आते हैं बच्चे, उनको कई सारे रास्ता होते हैं। पापा के बिजनेस होता है, उनको लाइफ में ऑप्शन बी, ऑप्शन सी कई सारे होता है। जो आम परिवार से जो बच्चे होते हैं, उनको ऑप्शन बी, ऑप्शन सी नहीं होते। अध्यक्ष जी, उनको एग्जाम के तैयारी करना पड़ता है, शिक्षा के माध्यम से ही उनको जीवन में आगे जाना पड़ता है। और शिक्षा और एग्जामिनेशन एकमात्र ऐसा व्यवस्था है देश में जहां आपके सरनेम ना पूछा जाता है, जहां आपके परिवार का पर कैपिटा इनकम ना पूछा जाता है, आपके कास्ट, आपके बैकग्राउंड, आपके फाइनेंशियल बैकग्राउंड कुछ पता नहीं, पूछा नहीं जाता है। सिर्फ और सिर्फ आपका मेहनत के आधार पर आपको वहां एक अपॉर्चुनिटी मिलता है। और इसलिए अध्यक्ष जी, जब शिक्षा में और एग्जामिनेशन में मैल प्रैक्टिस जब होता है, जब पेपर लीक होता है, तब एक सिस्टम में वो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्स नहीं होता है, वो एक विश्वासघात होता है। इट इज अ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। और इसलिए जब नीट की जो लीक हुआ, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, ही सेड दैट दिस इज अ क्राइम, ये पाप है, और तुरंत सरकार ने शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में इसको सुधार करने के लिए प्रयास किए हैं। व्हाट डिड वी डू राइट आफ्टर द एग्जामिनेशन पेपर लीक? इमीडिएटली वी टुक 3 स्टेप्स। फर्स्ट, टू इंश्योर जस्टिस, केसेस दर्ज हो गया, सीबीआई जांच हुई, पूरे देश में इसके ऊपर जो किए थे उनका अरेस्ट हुआ। दिस वॉज टू इंश्योर जस्टिस। सेकेंड, रीनीट हमने की, एंड वी डिड इट इन अ रिकॉर्ड टाइम, ताकि बच्चों का एक पूरा एकेडमिक साल खराब ना हो। रीनीट वॉज कंडक्टेड, दिस वॉज द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, एंड वी डिलीवर्ड ऑन दैट। सेकेंड एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट अध्यक्ष जी, वॉज bringing in reforms to strengthen the NTA and make sure that the next NEET, whenever it happens, will not fail the students. Pradhanmantri ji, isliye do bade kadam uthaye. One, we have declared that the next examination will be a computer-based examination on the basis of how IIT JEE exams take place, a very big examinations reform. Second, the Prime Minister has also set up a high-powered committee to make various reforms, recommendations to, for in the whole of the examination apparatus, from setting the question papers to the examination center, and these all will be carried out in good faith. Third and the most important reform is also strengthening this law that we are discussing today. Adhyaksh ji, Priyanka ji, abhi tak bahut vistar mein baat ki. I want to ask her, in 2010, UPA government had introduced a similar bill Prevention of malpractices bill.
2: To take your seat.
1: Why did you not pass the bill? Why did that bill fail? If at all you were so concerned about the future of young people, in 2010 you should have passed this bill so that the last 30 years these paper leaks would not have taken place. Adhyakshi, in 75 years of India's independent history,

when who was in power. But is that going to solve the problem? The student does not need politics. He does not want solution. He does not want slogans. He wants solution. And this bill that Prime Minister Modi is bringing today is the solution. It is 30 years late, but for the first time in the country's history, 70 years ke baad ek special kanoon examination ke bare mein parit ho raha hai. All of these whiles, Priyanka ji asked a question. Why has there been no conviction? Priyanka ji, main aapko batana chahta hu. Convictions isliye nahi hota tha kyunki ek special kanoon iske liye nahi tha. Aap 2010 mein इसको इंट्रोड्यूस किए थे, पास नहीं किए थे. हम इस बार इसको पास कर रहे हैं. दिस इज द रीजन 70 ईयर्स में, इन 70 ईयर्स ऑफ द कंट्रीज हिस्ट्री, दिस इज द फर्स्ट टाइम अ स्पेशल लॉ टू क्रिमिनलाइज वॉज पास्ड इन 24 एंड इज बीइंग स्ट्रेंथन्ड नाउ इन 26. अध्यक्ष जी, बट आई वॉन्ट टू टेक दिस डिबेट फर्दर. I want to broaden the scope of this debate. आज जब चर्चा हो रही थी, कई सारे सुझाव आए शिक्षा के संबंध में, examination के संबंध में. I want to ask myself a question that many students ask every day. Why is our education system like this today? Exam system जो broken हो चुका है, exam system में जो faults है, this is only a symptom. The real problem is with the education system. Gen Z ke language mein agar bolna hai, Adhyaksh ji, fixing the exam system is only fixing the bug. Fixing the education system is actually fixing the source code. And fixing the source code is root and branch reform of our education system. How is our education system today? 16-17 years ke jo bachche hote hai, Adhyaksh ji, what do they face? एक बार उसके ऊपर चर्चा करना जरूरी है. अध्यक्ष जी, जो नीट की तैयारी होता है ना, वो सिर्फ दो साल से नहीं होता है, सेवेंथ एट स्टैंडर्ड से शुरू होता है इसका तैयारी. रोज घर पे बोला जाता है, दसवीं कक्षा में लाइफ का टर्निंग पॉइंट है, प्रेशर कुकर में शुरू होता है बच्चे. इलेवेंथ ट्वेल्थ में हर दिन गांव गांव से जो बच्चे जाते हैं कोचिंग हब्स में, कोचिंग सिटीज में, कोटा हो, पुणे हो, छोटे एक डॉर्मेट्री या हॉस्टल में छोटे रूम बनवाते हैं, दो साल वहां, तीन साल वहां वो रहते हैं. और क्या पढ़ाया जाता है उनको? नो क्रिएटिव थिंकिंग, नो फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकिंग, नो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स. सिर्फ रट करना होता है सुबह से रात तक, सुबह से रात तक. सुबह 4 बजे से शुरू होते रात 10-11 बजे तक, ना खेल, ना दोस्ती, घर परिवार से बातचीत नहीं. एक प्रकार से मशीन बन जाते हैं बच्चे. और जब बच्चों को वीकेंड पे या उनको समर में 10-15 दिन का छुट्टी मिलता है, जब घर पे जाते हैं, सब रिश्तेदार उनसे पूछते हैं, एग्जाम के ठीक तैयारी हो रहा है ना, कितना होगा रैंक इस बार, अच्छा मार्क्स होगा ना. और कंपैरिजन होता है, जो पड़ोसी का बच्चा होता है उनके साथ कंपैरिजन होता है, जो रिश्तेदार का बेटी होता है उनके साथ कंपैरिजन होता है. अध्यक्ष जी, 16-17 ईयर्स बच्चा, व्हाट इज द स्ट्रेस दैट वी आर पुटिंग इनटू. और मैं प्रियंका जी को आज मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, प्रियंका जी, आपने ये एजुकेशन सिस्टम के बारे में इतना टिप्पणी की ना, ये एजुकेशन सिस्टम किसका लेगेसी है? ये एजुकेशन सिस्टम, मैं बोलता हूं, 34 ईयर्स से जो नए शिक्षा नीति को आप नहीं लाए थे, दिस इज द ओल्ड एजुकेशन सिस्टम विच इज प्रोड्यूसिंग क्लक्स, विच इज प्रोड्यूसिंग नो ओरिजिनल थिंकिंग. आज देश में एक बड़ा प्रश्न उठा रहा है अध्यक्ष जी, वाई इज इंडिया नॉट बिल्डिंग ग्रेट प्रोडक्ट कंपनीज, वाई इज इंडिया नॉट प्रोड्यूसिंग ओरिजिनल रिसर्च, वाई आर इंडियन यूनिवर्सिटीज नॉट इन द टॉप 100? बिकॉज फंडामेंटली आर एजुकेशन सिस्टम promotes rote learning, memorization and rat mar ke exam pass karna. This has become the structure. aur main aaj bahut garv ke sath keh raha hu, Adhyaksh ji, this education system is being transformed root and branch by the national education policy that our government has brought in 2020. This is the

0: एजुकेशन सिस्टम को चेंज कर रहे हैं. इट वॉज पेंडिंग फ्रॉम लास्ट 34 ईयर्स. आवर गवर्नमेंट हैज डन दिस. और अखिलेश जी से लेकर सब लोग बहुत अच्छे सुझाव दिए एग्जामिनेशन के कंडक्शन कैसा होना चाहिए इसके ऊपर. मैं दो मिनट आपसे पूछना चाहता हूं, देयर ऑल गुड सजेशंस, पर आप एक बार एनईपी पढ़े हैं क्या? हैव यू सीन द एनईपी? अध्यक्ष जी, मैं पिछले दो महीनों से लगातार मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी के युवाओं से बात कर रहा हूं और ये युवा कुछ सुझाव दे रहे हैं, सरकार को दिए हैं. क्या सुझाव है? वन, आप पूरे अपना एजुकेशन सिस्टम को 8 साल 10 साल का जो अपना तैयारी है, यू आर डिसाइडिंग इट ऑन वन डे, एक दिन का 3 घंटे का एक परीक्षा में अपना पूरा डिसाइड हो रहा है फ्यूचर. अगर मुझे उस दिन वायरल फीवर आ गया, माइग्रेन आ गया, या जैसे बैंगलोर में जब नीट का एग्जाम हो रहा था, रीनीट का, कांग्रेस पार्टी का बड़ा एक आंदोलन हो रहा था, ट्रैफिक जाम में कुछ बच्चे वहां दे कुड नॉट रीच द एग्जामिनेशन ऑन टाइम, ऐसे कई सारे चीज होते हैं. द क्वेश्चन वॉज, द रिफॉर्म दैट द स्टूडेंट्स आस्क्ड वॉज, प्लीज डू नॉट हैव वन डे वन एग्जामिनेशन दैट विल डिसाइड आर फ्यूचर. दिस वॉज देयर डिमांड. दूसरा डिमांड उनका था, प्लीज हैव अ सिस्टम वेयर देयर इज अ डिफरेंट मेथड ऑफ असेसमेंट. अध्यक्ष जी, युवा इजी एग्जाम नहीं मांग रहे. एग्जाम इजी कर दो, आसान कर दो, ये युवाओं का मांग नहीं है. उनका मांग है क्वेश्चंस में थोड़ा ओरिजिनलिटी ले आओ. अगर मैं नीट के लिए तैयारी कर रहा हूं तो मुझे आप बायोलॉजी पे ज्यादा टेस्टिंग करो फिजिक्स और केमिस्ट्री से, ये उनका मांग है. और बच्चों का तीसरा मांग है, अध्यक्ष जी, मैं खुद मेरा एग्जाम्पल देता हूं. अध्यक्ष जी, जब मैं कॉलेज में था, आई वॉज वेरी इंटरेस्टेड इन केमिस्ट्री, आई वॉज इंटरेस्टेड इन फिजिक्स, बट आई वॉज वेरी बैड एट मैथ, आई सक्ड एट मैथ. और मैं ऑप्शन चाह रहा था, मैं फिजिक्स केमिस्ट्री भी पढ़ू और मैं हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स भी पढ़ू. पर ये मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच कांग्रेस के जो एजुकेशन सिस्टम था और कुछ हद तक अभी भी जारी है, दैट डज नॉट अलाउ फॉर दिस मल्टीडिसिप्लिनरी ऑप्शन. नाउ व्हाट हैव वी चेंज्ड? अध्यक्ष जी, आपके अनुमति से मैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का 3 वाक्य पढ़ना चाहता हूं. दिस इज गोइंग टू कन्विंस आर यंग पीपल दैट द होल रूट एंड ब्रांच रिफॉर्म ऑफ आर एजुकेशन सिस्टम इज टेकिंग प्लेस एंड देयर फॉर द एग्जामिनेशन एज वी नो इट टूडे विल चेंज इन द कमिंग ईयर्स. फर्स्ट, बच्चों का मांग क्या था? आज मेमोराइजेशन के आधार पर, रट मारने के आधार पर पूरा एजुकेशन सिस्टम है. इसके वजह से जो हम कॉलेज में पढ़ते हैं उसका कुछ महत्व नहीं होता है. ऑल दैट इज टेस्टेड इज वेदर यू कैन रिकलेक्ट, मेमोराइज एंड रिप्रोड्यूस इट, वॉमिट इन एन एग्जाम 3 ईयर्स में, 3 आवर्स में. दिस इज व्हाट इज एक्चुअली टेस्टेड. नाउ द फर्स्ट रिफॉर्म दे हैव आस्क्ड इज, इसके वजह से कोचिंग सेंटर बढ़ रहा है, द होल सिस्टम इज अ प्रॉब्लम. द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी डायग्नोसिस द प्रॉब्लम इन दीज वर्ड्स. प्लीज सुनिए अध्यक्ष जी, the current nature of secondary school exams including board exams and entrance exams and the resulting coaching culture of today are doing much harm to students. These exams also force students to learn a very narrow band of material in a single stream rather than allowing the flexibility and choice that will be so important in the education system of the future. ye diagnosis मोदी सरकार के नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे है. दिस इज नॉट द ओल्ड लेगेसी ऑफ द कांग्रेस पार्टीज एजुकेशन सिस्टम एंड दिस एनईपी इज नाउ बीइंग इंप्लीमेंटेड. दिस इज व्हाट इज इंप्लीमेंटेड नाउ. दूसरा अध्यक्ष, बोर्ड एग्जाम के लिए क्या कहे? व्हाट इज द फिक्स फॉर द बोर्ड एग्जाम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे? बोर्ड एग्जाम्स आर टू बी रीडिजाइंड. सुप्रिया जी प्लीज सुनिए, बोर्ड एग्जाम्स आर टू बी रीडिजाइंड टू टेस्ट प्राइमरीली कोर कैपेसिटीज, competencies, critical problem solving
1: she,
0: things.
1: She is listening you very patiently because after you she will speak.
0: Yes, please. Critical thinking rather than, ye suniye adhyaksh ji, rather than months of coaching and memorization with subject choice and up to 2 attempts a year a main examination and one for improvement to reduce the exam's high stakes character. और अध्यक्ष जी मुझे बताते हुए बहुत गर्व है, इस साल के CBSE 10th स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन साल में एक बार नहीं हुआ, NEP के आधार पर दो बार हुआ एंड स्टूडेंट्स वर गिवन द चॉइस टू सेलेक्ट द बेस्ट ऑफ द स्कोर्स. ये फ्लेक्सिबिलिटी हो रहा है सिस्टम में, दिस इज अ न्यू चेंज वी आर ब्रिंगिंग. थर्ड क्या है अध्यक्ष जी, मैंने बताया अध्यक्ष जी, अध्यक्ष जब मैं स्कूल में था मैं बहुत मुश्किल से मैथ्स में पास होता था, पर मैं डिबेट कंपटीशन में, एसे कंपटीशन में, क्विज में हमेशा मैं टॉप में होता था. बट वो सबको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज कहा जाता था, इट वॉज नॉट इवन कंसिडर्ड. एंड द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी सेज इट एस्टैब्लिशेस अ नेशनल असेसमेंट सेंटर फराक एज अ स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी दैट फुलफिल्स द बेसिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेटिंग नॉर्म्स, स्टैंडर्ड्स एंड गाइडेंस for a standardized assessment which will be a continuous evaluation and a 360 degree assessment of the student. ye sabse bada change hai dekh ji, 360 degree assessment of the student. ek din ka, ek 3 ghante ka pariksha kisi ka future aane wale dinon mein decide nahi karega. 3 saal se aap jab tak aap college mein ye board exam denge तब तक 360 डिग्री असेसमेंट, प्रोजेक्ट वर्क होगा, रिसर्च पेपर्स होगा, ओरिजिनल प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्सपर्टीज होगा, अन्य अन्य करिकुलर एक्टिविटीज होगा. ये 360 डिग्री असेसमेंट के आधार पर एग्जामिनेशन का मार्किंग होगा. व्हाट दिस मींस इन अदर वर्ड अध्यक्ष जी इज दिस इज गोइंग टू फंडामेंटली चेंज द नेचर ऑफ एग्जामिनेशन इन द कंट्री. और ये ऐसा नहीं है कि ये 25 साल के बाद जारी होगा, 20 साल के बाद जारी होगा. एज वी स्पीक अध्यक्ष जी, 8वीं कक्षा तक नए करिकुलम के आधार पर नए टेक्स्ट बुक्स तैयार होकर CBSE के बच्चों को दे दिया गया है, और इस साल 9th स्टैंडर्ड के बच्चों को नया करिकुलम मिलेगा. आने वाले 2-3 साल में 11th 12th का जब ये पूरा सिस्टम सुधार हो जाएगा, आज के जो एंट्रेंस एग्जाम का जो व्यवस्था है दैट इज गोइंग टू फंडामेंटली चेंज. और मैं पुनः दोहराना चाहता हूं, अ ब्रोकन एग्जामिनेशन सिस्टम इज ओनली अ सिम्टम एंड इट इज सिम्टम ऑफ अ ब्रोकन एजुकेशन सिस्टम एंड दैट एजुकेशन सिस्टम इज व्हाट इज बीइंग फिक्स्ड टुडे बाय द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020. एंड आने वाले दिनों में जो बच्चे इन नेक्स्ट 3-4 ईयर्स अध्यक्ष जी, जो बच्चे बाहर आएंगे नए एजुकेशन पॉलिसी के, दे विल नॉट फेस द काइंड ऑफ स्ट्रेस, द काइंड ऑफ प्रेशर दैट एग्जामिनेशन सिस्टम इज फोर्सिंग ऑन यंग चिल्ड्रन टुडे. अध्यक्ष जी आप मुझे 2-3 मिनट समय दीजिए, आई कंक्लूड. प्लीज प्लीज, बहुत महत्वपूर्ण 2-3 विषय है. अध्यक्ष जी जब हम इन सब विषय पे बात कर रहे हैं, वी शुड ऑल्सो फोकस ऑन वन मोर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट. और अध्यक्ष जी युवाओं के लिए मेंटल हेल्थ का है.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: वी आर ओवर जिमी।
2: हे लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे, गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपीएफ संभाल लेगा, आप अपना देख लो।
3: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूं? 17 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, लार्जेस्ट डेटाबेस ऑफ एलीट प्रोफाइल्स और 100% कॉन्फिडेंशियलिटी। एलीट मैट्रिमनी, इंडियाज मोस्ट सक्सेसफुल मैचमेकिंग सर्विस फॉर द एलीट।
4: पर जब इंसान प्रकृति के साथ सामंजस्य को आत्मसात कर लेता है तो वो मधुर और लालन पोषण करने वाली बन जाती है। पी मार्क सरसों के तेल ने प्राकृतिक तरीके से सरसों के तेल को बनाया है शुद्धता और गुणवत्ता के

0: द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933 बरसों से सरसों।
1: कुछ तो बात है इस दिल में।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा।
5: पीओके के फायरिंग रेंज में खड़े हैं।
6: जस्ट फ्यू इंचेस अवे इज पीओके।
5: हो सकता है दुश्मन को पता हो कि सैफ अली खान यहाँ पर खड़े हैं। Is it fire?
7: ए युग तुम्हारा, ए रण तुम्हारा, हर चुनौती तुम्हारी, हर शिखर तुम्हारा, तुम्ही हो भारत का स्वाभिमान।
8: हर सेक्टर, हर स्टेट, हर रीजन, हर उम्र के इनोवेटर्स ने दिया जबरदस्त प्रतिसाद। अभी तो वंदे भारतम में एप्लीकेशंस पहुंचे 25,000 के पार और रजिस्ट्रेशन डेडलाइन बढ़कर हुई है 30 जुलाई। आप भी भारत के सबसे बड़े ग्रास रूट इनोवेशन मूवमेंट से जुड़े वंदे भारतम .org पर रजिस्टर करें।
9: Launch control 0 to 100.
10: This isn't just about cars and bikes. This is about how you move.
11: This car makes no sense, yet it makes every sense.
12: What we are sitting inside is a Joby powered air taxi.
13: Your friend said, "Ye le le." We said, "Maybe not."
14: Hi, my name is Siddharth Sharma. I'm your NDTV Automate, your ultimate guide into the world of automobiles and mobility.
15: Front lines of Kargil, the fury of Operation Sindhu,
16: so many attacks,
15: the chaos and cries of disaster zones, the fighter jet cockpits, and the world's most defining interviews.
16: It's incredible.
15: He has seen history break live, unfiltered. 20,000 hours of live broadcasting.
5: We have some breaking news coming in for you. Rahul Gandhi has now targeted the education minister. Rahul Gandhi goes on to say that the prime minister could have picked anyone for the education minister post, but the prime minister chose the person who protects the rapists. That's what Rahul Gandhi has said after Priyanka Gandhi Vadra slammed the new education minister Prahlad Joshi over an alleged rape remark. Take a listen.
17: Who after all these young people who are protesting about the education system.
18: And so many girls.
17: And so many girls are protesting. They've been beaten, they've been thrashed. The BJP puts a man who is a defender of rapists. That's the most filthy type of man. There can be no filthier man than somebody who says that rapists need protection. That is the education minister of India today. It's strange. It's a strange reaction from the Prime Minister that there are so many people in his cabinet. He could have chosen any one of them. But he chooses a person who protects rapists.
19: आपकी सरकार ने देश के करोड़ों छात्रों को क्या संदेश दिया? आपको किस बात का गौरव है? किस बात का अभिमान है? ये कौन सा अहंकार है? जहां आंखों में शर्म होनी चाहिए वहां बेशर्मी और स्वागत के नगाड़े बजाए रह रहे हैं। एक तरफ मातम है, दुख है, यहां फूल माला डाल रहे हैं। कोई आप पर कैसे यकीन करे? प्रधानमंत्री महोदय जी ने नया शिक्षा मंत्री चुना, एक ऐसे व्यक्ति को इस पद पर आसीन किया जिसने एक गर्भवती महिला के बलात्कारियों की रिहाई पर अपनी सहमति व्यक्त की, खुशी जताई। देश की करोड़ों लड़कियों को प्रधानमंत्री जी ने क्या संदेश दिया? सर अखबारों में है।
20: अखबार में नहीं, मेरा
21: ऑथेंटिकेट करेंगे, उसके बाद वो आगे बढ़ेंगे। ऐसा नहीं होगा।
20: पहले ऑथेंटिकेट करने दो सर।
21: उनको ऑथेंटिकेट करने के लिए कहिए, ऑथेंटिकेट करने कहिए उनको।
5: My colleague Himanshu Shekhar is now joining live. Himanshu, after 1 week of no discussion, we've seen complete ruckus today in the parliament. While the centre has come out and said that the anti-paper leak bill is extremely important, they've also questioned the opposition for selective outrage. But throughout all the speeches from the opposition leaders, they've spoken about Prahlad Joshi.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: वी आर ओवर जिमी।
3: हे लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे, गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपीएफ संभाल लेगा, आप अपना देख लो।
4: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूं? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service, Modo Elite.
5: POK के firing range में खड़े हैं।
6: Just few inches away is POK.
5: तो हो सकता है दुश्मन को पता हो कि सैफ अली खान यहाँ पर खड़े हैं। Is it fire?
7: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
8: वाओ मामा क्या स्वाद है।
7: अरे मेरे राजा
9: का राजा अकबर मसाला।
10: ए युग तुम्हारा, ए रण तुम्हारा, हर चुनौती तुम्हारी, हर शिखर तुम्हारा, तुम्ही हो भारत का स्वाभिमान।
11: हर सेक्टर, हर स्टेट, हर रीजन, हर उम्र के इनोवेटर्स ने दिया जबरदस्त प्रतिसाद। अभी तो वंदे भारतम में एप्लीकेशंस पहुंचे 25,000 के पार और रजिस्ट्रेशन डेडलाइन बढ़कर हुई है 30 जुलाई। आप भी भारत के सबसे बड़े ग्रास रूट इनोवेशन मूवमेंट से जुड़े वंदे भारतम .org पर रजिस्टर करें।
12: लॉन्च कंट्रोल 0 to 100।
13: दिस इजंट जस्ट अबाउट कार्स एंड बाइक्स, दिस इज अबाउट हाउ यू मूव।
14: This car makes no sense, yet it makes every sense.
15: What we are sitting inside is a Joby-powered air taxi.
16: Your friend said, "Ye le le." We said, "Maybe not." Hi, my name is Siddharth Sharma. I'm your NDTV Automate, your ultimate guide into the world of automobiles and mobility.
17: The front lines of Kargil. The fury of Operation Sindhu.
18: So many attacks.
17: The chaos and cries of disaster zones to fighter jet cockpits and the world's most defining interviews.
18: It's incredible.
17: He has seen history break live, unfiltered. 20,000 hours of live broadcasting.
18: Welcome to Left, Right, and Center.
17: Hard facts.
18: War struck country.
17: Hard questions.
18: In the Ukraine.
17: 30 years of trust.
19: In the Kargil area.
18: North Ukraine.
20: In France. In Italy.
18: At Srinagar.
20: I am Mr. France.
18: Vishnu Shom for NDTV.
17: Vishnu Shom. Only on NDTV.
21: What seems settled for me is unfinished business. So I rewind, I pause, I reflect, I dig, until what's buried stands up to be counted. Breaking ground, not just headlines, the meaning behind them. This is Breaking Ground with me, Vedika Sood.
22: Straight from the heart of the newsroom to the core of the stories shaping your world. Join me, Gargi Rao, as I track all the developments as they break. Live from the NDTV newsroom, weekdays

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: आपका पार्सल फिर से हमारे घर पे आया है।
3: कुछ तो बात है इस दिल में।
4: माँ भी हमेशा अपनी मार्क मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी, ये आपके लिए।
3: कुछ तो बात है इस दिल में।
5: P-Mark, the mustard specialist since 1933.
6: सरसों।
7: We are over, Jimmy.
8: Hey, life में scratches तो आएंगे। गाड़ी के scratches को तो Cosmo PP अब संभाल लेगा। आप अपना देख लो।
9: जानते हैं, मैं Elite Matrimony क्यों recommend करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service, Modo Elite.
10: POK के firing range में खड़े हैं।
11: Just few inches away is POK.
10: तो हो सकता है दुश्मन को पता हो कि सैफ अली खान यहाँ पर खड़े हैं। Is it fire?
12: ए युग तुम्हारा, ए रण तुम्हारा, हर चुनौती तुम्हारी, हर शिखर तुम्हारा, तुम्ही हो भारत का स्वाभिमान।
13: हर सेक्टर, हर स्टेट, हर रीजन, हर उम्र के इनोवेटर्स ने दिया जबरदस्त प्रतिसाद। अभी तो वंदे भारतम में एप्लीकेशंस पहुंचे 25,000 के पार और रजिस्ट्रेशन डेडलाइन बढ़कर हुई है 30 जुलाई। आप भी भारत के सबसे बड़े ग्रास रूट इनोवेशन मूवमेंट से जुड़े vandebharatam.org पर रजिस्टर करें।
14: Launch control, 0 to 100.
15: This isn't just about cars and bikes. This is about how you move.
16: This car makes no sense, yet it makes every sense.

और इसीलिए आज जब हम सब इकट्ठे हुए हैं तो देश के युवाओं को मैं कहना चाहता हूं, ये देश के युवाओं के भविष्य की बात है, हमारी सरकार युवाओं के साथ है और युवा और मोदी सरकार ने मिलकर तय किया है, एक प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर तय किया है कि एक ऐसा कानून लाएंगे जो आतंकवाद के खिलाफ बने कानून से भी ज्यादा सख्त होगा और दोषियों को कड़ी कार्रवाई करने पे भी काम आएगा। और आज का ये कानून आप देखिए, जो 2024 में हम लाए थे उसमें संशोधन करने के लिए लाए। अभी वेणुगोपाल जी कह रहे थे, पहले प्रियंका जी ने कहा कि कानून में बदलाव क्यों करने वाले हो, हम सिस्टम को और फूल प्रूफ करना चाहते हैं, हमारे युवाओं के भविष्य के साथ ना कोई खेले उसके लिए सिस्टम बनाना चाहते हैं। तारीख पे तारीख, डिले पर डिले, ये ना हो, जान से लेकर जुडिशियल सिस्टम को समयबद्ध तरीके से काम करने के लिए हम ये नया सिस्टम बनाने जा रहे हैं। लेकिन आप तो समय पर चर्चा करने के लिए तैयार नहीं थे, हाउस चलने नहीं दे रहे थे। राहुल गांधी जी को लगा देश के युवाओं ने उनको पूछा नहीं, ना अखिलेश जी को पूछा, ना किसी पॉलिटिकल पार्टी को पूछा, तो अब करें क्या? तो उन्होंने वो किया जो किसी नेता प्रतिपक्ष को नहीं करना चाहिए, वो प्रधानमंत्री निवास के बाहर जाकर लेट गए। अरे राहुल जी, आपकी तड़प जलन मैं समझ सकता हूं, प्रधानमंत्री निवास के अंदर आपको जाने का मौका नहीं मिल पा रहा लेकिन बाहर ही लेटने का मौका ले लिया आपने। आपको कभी मौका अंदर जाने का नहीं मिलने वाला है। और हालत देखिए साहब क्या थी, हर तरह के प्रयास करके देख लिए, युवा उनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन युवा ये जानता है कि जब 3 मई को नीट एग्जाम हुआ और उसके 3-4 दिन के अंदर एक खबर आगे की कुछ लीक जैसी हुई, तो हमारी सरकार ने 12 मई को उसको निरस्त कर दिया और मात्र 3 दिन के अंदर 15 मई को नया यानी कि री एग्जामिनेशन करने का निर्णय लिया, ताकि युवाओं का एक साल बर्बाद ना हो, यह हमारी सरकार ने निर्णय लिया। यही नहीं, हमने चंद दिनों के अंदर देश भर में 5,440 से ज्यादा सेंटर्स में नीट एग्जामिनेशन को कराया, दुनिया भर के देशों में 14 सेंटर्स पे करवाया, 13 भाषाओं में करवाया और 21 जून को इसको करवा भी दिया और मात्र 45 दिनों के अंदर सारा प्रोसेस पूरा करके रिजल्ट भी निकाल दिया। ये युवाओं के प्रति हमारी प्रतिबद्धता थी। हम इनकी तरह दिखावा नहीं करते, मोदी जी ने युवाओं के हित में हर कदम उठाया, आगे भी उठाएंगे। हमारे खिलाड़ी अगर देश के लिए खेलने के लिए किसी देश में दूसरे देश में जा रहे हो तो देश के प्रधानमंत्री उनसे संवाद भी करते हैं, आने के बाद उनका अभिनंदन स्वागत भी करते हैं। आज से पहले किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया, इनके समय 800 करोड़ रुपए का मात्र बजट था खेलों के लिए, हमारे समय 4000 करोड़ का बजट हो गया। इनके समय मात्र 65000 करोड़ का शिक्षा का बजट था, आज उससे दुगने से ज्यादा 1,40,000 करोड़ का बजट हमने करके दिया। प्रियंका जी, आपके उत्तर दूंगा मैं इसके बाद, किस तरह से कितनी भोली सी शक्ल बना के गुमराह करती, मंद मंद मुस्कुराती हैं, स्पीकर साहब को भी मुस्कुराने के लिए बोलती हैं, गंभीर विषय पर भी अपने पुराने जो इनकी सरकार के कुकर्म थे, जो खराब काम थे, उनको ऐसा पर्दा डालने का प्रयास करते हैं। लेकिन सर, मुझे दुख इस बात का है क्योंकि देश के एक बहुत बड़े वैज्ञानिक, एक बहुत बड़े प्रोफेसर IIT मद्रास के प्रोफेसर वी कामाकोटी जी के बारे में उन्होंने जो टिप्पणी की, कौन है प्रोफेसर वी कामाकोटी जी? हमारे फॉर्मर चेयरमैन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टास्क फोर्स के, RSS से होने का कोई गुनाह नहीं, अगर होंगे भी तो उनको गर्व होना चाहिए इस बात का कि RSS के हैं। आप भी ज्वाइन कर लीजिए, थोड़े संस्कार आ जाएंगे।

के बारे में सोचना शुरू कर देंगे अगर आप आरएसएस का हो जाएंगे तो। आईआईटी मद्रास की फैकल्टी थे 2001 से 2022 तक, पीएससी डिग्री उनकी कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग में है। आपका पूरे परिवार की डिग्रियां भी जोड़ लें तो इनके बराबर नहीं हो पाएंगी। और मैं एक बात और कह दूं, मुझे तो लगता था प्रियंका गांधी जी कुछ अच्छा कहेंगी। उन्हें कहा ये गौमूत्र के विशेषज्ञ हैं। तो गांधी परिवार की सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो भारत की परंपराओं को ना तो समझते हैं और ना ही समझने का प्रयास करते हैं, बल्कि उनका उपहास उड़ाते हैं। जिन पर दुनिया शोध कर रही है, कांग्रेस उन पर तंज कस रही है। देश के प्रतिष्ठित प्रेस्टीजियस जो साइंटिस्ट जो भारतीय ज्ञान परंपरा का अध्ययन करना चाह रहे हैं, कांग्रेस उनका मजाक उड़ाती है। ये हमारी संस्कृति, हमारे समाज और हमारे साइंटिस्ट के साथ सदा कांग्रेस यही करती रही। लेकिन वैज्ञानिक होने का मतलब यह नहीं कि आप अपनी सभ्यता और समाज से कट जाएं, आप अपनी परंपराओं को ना जाने। डॉक्टर कामकोटी जी आधुनिक विज्ञान के शिखर पर है। एक तरफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एक्सपर्ट हो सकते हैं तो दूसरी ओर गौमूत्र पर भी अध्ययन कर सकते हैं, इस पर रोक नहीं है। अपनी जड़ों से जुड़ने पर कांग्रेस को परेशानी है। मुझे तो लगता था प्रियंका गांधी जी राहुल गांधी जी से थोड़ी बेहतर होंगी, बहन भाई से थोड़ी बेहतर लगती थी, कम से कम हंस तो लेती थी। लेकिन आज जो आईआईटी मद्रास के डायरेक्टर के ऊपर तंज कसा, मैं ये कहूंगा भाई बहन एक जैसे लगते हैं, एक ही वनस्पति पर हैं। जिसके इस्तेमाल के साथ दिमाग कई बार सही तरह से फंक्शन नहीं करता है, और हो सकता है गौमूत्र इसको क्योर करे। डॉक्टर साहब हो सकता है एक ही गौमूत्र उनको क्योर करे। इसलिए मैं फिर एक बार कहता हूं, अभी तो उस इलाज पे भी आते, लेकिन पहले पेपर लीक का इलाज कर लें। आनंद जी आनंद आएगा सुनने में। भदौरिया जी सर, मैं इतना ही कहूंगा, ये कहीं रोक नहीं है कि आप कोई बिल लाया हो तो उस पर उसके अमेंडमेंट नहीं ला सकते। ये मोदी सरकार की सोच को बताता है कि जिस तरह की रिफॉर्म्स की आवश्यकता है, हमारी सरकार वो रिफॉर्म्स करेगी जो युवाओं के हित में होगी। और यही नहीं, मैं ये भी कहना चाहता हूं, और आप सारे कागज पेन निकाल कर लिख लीजिए, ये जो हम नया बिल लेकर आए हैं, ये बिल, ये कानून एक नजीर होगा। दिस विल सेट एन एग्जाम्पल सर। और इसकी मैं पूरा उल्लेख बाद में करने वाला हूं, क्या क्या इसके लाभ होने वाले हैं। लेकिन हमने अब तक क्या क्या किया? एक तो जल्द री एग्जामिनेशन करवाया। प्रियंका जी कह रही थी फेस रिकॉग्निशन, अरे फेस रिकॉग्निशन छोड़िए, हमारी सरकार ने 13 के 13 लोग जो पेपर लीक में शामिल थे उनकी गिरफ्तारी करवा दी। जेड में सड़ रहे हैं और उनके खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में आज कार्रवाई हो रही है। यही नहीं, नया बिल लेकर हम आगे हैं और हमने हाई पावर टास्क फोर्स भी बना दी निंदन नीलकंठ जी की अध्यक्षता में, जो एग्जाम रिफॉर्म्स करेगी और देश के युवाओं को बेहतर भविष्य बनाने का काम करेगी। मैं इतना ही कहूंगा, जहां तक कांग्रेस ने भी और प्रदर्शन करने वालों में से भी एक दो लोगों ने बात कही कि प्रदर्शन में कुछ गुंडे आ गए थे, इन्होंने कहा फेस रिकॉग्निशन करनी चाहिए। मैं गृह मंत्री जी से आग्रह करता हूं, जो ऐसे लोग जो गुंडे थे, असामाजिक तत्व थे, जो उस आंदोलन को खराब करना चाहते थे और जो संसद की इस चर्चा में, मैं बड़े साफ कह रहा हूं, जो असामाजिक तत्व और गुंडे थे, उनके ऊपर कानून के रूप में कड़ी कार्रवाई होनी ही चाहिए। देश का युवा पेपर लीक की बात करने आया था, बेहतर सिस्टम की मांग करने आया था, वो पुलिस की गाड़ियां जलाने, पुलिस को पीटने नहीं आया था। देश का युवा नहीं कर सकता, ये मुझे ही समाजवादी पार्टी के कुछ सांसद कह रहे थे। हम गए तो हमें भी उन्होंने भगा दिया कि आप क्यों आए हो। मैंने कहा भाई आपका ट्रैक रिकॉर्ड ही ऐसा था, आपको वहां कौन ले

0: लगता है। अरे अरे आपके नेता आपके आपके नेता अखिलेश यादव जी पे आऊंगा मैं, ठहरो जरा बताता हूं क्या बोलते थे वो। उन युवाओं ने भी इनका मजाक उड़ाया, राहुल जी तो हिम्मत ही नहीं कर पाए उस आंदोलन में जाने की, वो बाहर जाके प्रधानमंत्री निवास के बाहर बैठ गए। लेकिन सबसे बड़ी समस्या अध्यक्ष ये हुई, खुद चले गए समाजवादी पार्टी वालों को और बाकी इंडिया के गठबंधन वालों को बुलाया ही नहीं कि महफिल अकेले लूटना चाहते थे। ये ट्रस्ट की कमी आपके गठबंधन में है, ना नेता है ना नीति, और नियत में तो खोट पहले दिन से नजर आता है। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप जो कह रहे हैं, जो लोग पेपर लीक के अंदर कसूरवार थे, माफिया है, उनको मिट्टी में मिलाने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार करेगी। देश के युवाओं को आश्वस्त कराना चाहता हूं, और मैं इसलिए कहता हूं सर, ट्रैक रिकॉर्ड बताता है कि क्या है। देश में पहला एंटी चीटिंग लॉ कौन लेकर आया? हमारी सरकार लेकर आई देश में। 2024 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार लाई, आज उसमें संशोधन करने की भी ताकत किसी ने रखी तो नरेंद्र मोदी की सरकार ही कर रही है। राज्यों में भी कल्याण सिंह जी की सरकार थी, राजनाथ सिंह जी हमारे शिक्षा मंत्री थे, उस समय हमने उत्तर प्रदेश में बेहतर शिक्षा लाने के लिए राजनाथ जी ने शानदार काम किया, एंटी चीटिंग लॉ वहां पर हम लाए। लेकिन अखिलेश यादव जी और मुलायम सिंह से मैं पूछना चाहता हूं, जब उस समय मुलायम जी थे, क्या भाषण देते थे? अरे भाषण सुनिए अखिलेश यादव जी का, कहते नकल तो हम सब ने की होगी, थोड़ी थोड़ी नकल तो चलती है, थोड़ी थोड़ी सब कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, हम सत्ता में आएंगे, अखिलेश जी ने कहा, तो सब चीटिंग करने वालों को छोड़ देंगे, वोट डालो सपा को। सर ये कुछ कहना चाह रहे हैं सर इनको?
1: अनुराग ठाकुर जी, अनुराग ठाकुर जी
0: सर ये बता दे, अखिलेश जी ने कहा कि मुलायम जी ने कहा? सर ये बता दे, अखिलेश जी ने कहा कि मुलायम जी ने कहा? ईमानदार युवाओं के साथ ये कहते हैं कि बेईमानों को आगे आने दो, चीटिंग करने वालों को आगे आने दो। राहुल जी और अखिलेश जी के बारे में मैं इतना ही कहना चाहूंगा, खुद मियां फजीहत, दूसरों को नसीहत। और यही नहीं, जिन्होंने 50-60 साल सर ये बता सकते हैं कि अखिलेश जी ने कहा, मुलायम जी ने कहा, सपा के किस नेता ने कहा?
1: बात पे हम एग्जामिन करेंगे, हम इस बात पे एग्जामिन करेंगे, रिकॉर्ड देखेंगे, उसके बाद में निर्णय लेंगे, स्पीकर साहब के पास जाएंगे।
2: नहीं,
1: जो हमको कहना है हमने कह दिया है, आप बैठिएगा प्लीज, आप बैठिएगा, अब बोलिएगा अनुराग ठाकुर जी। अनुराग ठाकुर जी कंटिन्यू
0: सर। राहुल गांधी जी कभी अखिलेश जी को, और मुझे एक मुहावरा याद आता है, संगत में गुण आवत है, संगत में गुण जात। अब कौन किसको क्या गुण दे रहा है, क्या ले रहा है, गुण है नहीं है, अब गुण है ये तो मैं जानता नहीं, लेकिन रिकॉर्ड जरूर बताऊंगा कि इनके समय कितने कितने लीकेज हुई और क्या क्या हुआ। एंटी कॉपिंग एक्ट को क्या समाजवादी पार्टी ने खत्म किया था कि नहीं किया था? आनंद भदौरिया जी, किया था नहीं किया था? किया था कि नहीं किया था?
3: किया था।
0: हाँ, किया था?
1: एक मिनट,
0: आप बोले सर किया था?
1: एक मिनट, नहीं, नहीं, आ, आ,

0: सच थोड़ा कड़वा होता थोड़ा ज्यादा जोर से लगा समाजवादी पार्टी को, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा 2012 में यूपी पुलिस रिक्रूटमेंट एग्जाम पेपर लीक किसने किया? इनकी सरकार में, सपा में। 2014 सीपीएमटी एग्जाम पेपर लीक किसकी सरकार में हुआ? सपा में। 2015 यूपी सिविल सर्विसेज एग्जाम पेपर लीक किसकी सरकार में हुआ? सपा में। 2015 यूपी टीयू बीटेक एग्जाम पेपर लीक किसकी सरकार में हुआ? सपा में। 2016 उत्तर प्रदेश एसएससी सीपीओ एग्जाम पेपर लीक किस में हुआ? सपा में। 2016 गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक एग्जाम पेपर लीक किस में हुआ? सपा में। सर, हर लीक के पीछे सपाई माइंड था, हर लीक के पीछे सपाई माइंड था। यूपी को नकल प्रदेश और पेपर लीक प्रदेश इनकी सरकार ने बना दिया था समाजवादी पार्टी ने। सर यही नहीं, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष किसको बनाया गया? डॉक्टर अनिल यादव। क्या हो गया सर? आनंद बनोरिया जी पूछ रहे क्या हो गया?
1: क्या बताते
0: सर? अब देश को बताना पड़ेगा क्या हो गया। सर ये हो गया कि उस आयोग में, लोक सेवा आयोग में भर्ती के लिए कम, विवादों के लिए ज्यादा जाना गया, ये हो गया। खराब आंसर्स को आपने ठीक मान लिया, ये हो गया। जो लायक नहीं थे आपने उनको लायक बना दिया, ये हो गया। और लोक सेवा चयन आयोग वो यादव आयोग बना दिया गया, यादव आयोग बना दिया गया।

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: We are over, Jimmy.
2: Hey, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपी अब संभाल लेगा, आप अपना देख लो।

0: देश का टायर, जेके टायर।
1: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.
2: याद है ना मैंने क्या सिखाया था? सिल्वर के लिए स्टर्लिंग मार्क, गोल्ड के लिए हॉल मार्क
3: और मस्टर्ड ऑयल के लिए सिर्फ पी मार्क।
4: इस बार तो माँ से भी बेहतर बना।
5: P-Mark, the mustard specialist since 1933. Barson se sarson.
6: Kuch to baat hai is dil mein.
7: Meetha ya namkeen, chahe jaise khao, 100% suji se bani. Our pure vermicelli. Swadisht, sehatmand, har roz.
8: POK ke firing range mein khade hain.
9: Just few inches away is POK.
8: Ho sakta hai dushman ko pata ho ki Saif Ali Khan yahan par khade hain. Is it fire?
10: ए युग तुम्हारा, ए रण तुम्हारा, हर चुनौती तुम्हारी, हर शिखर तुम्हारा, तुम्ही हो भारत का स्वाभिमान।
11: हर सेक्टर, हर स्टेट, हर रीजन, हर उम्र के इनोवेटर्स ने दिया जबरदस्त प्रतिसाद। तभी तो वंदे भारतम में एप्लीकेशंस पहुंचे 25,000 के पार और रजिस्ट्रेशन डेडलाइन बढ़कर हुई है 30 जुलाई। आप भी भारत के सबसे बड़े ग्रास रूट इनोवेशन मूवमेंट से जुड़े वंदे भारतम .org पर रजिस्टर करें।
12: पर जब इंसान प्रकृति के साथ सामंजस्य को आत्मसात कर लेता है तो वो मधुर और लालन पोषण करने वाली बन जाती है। पी मार्क सरसों के तेल ने प्राकृतिक तरीके से सरसों के तेल को बनाया है शुद्धता और गुणवत्ता के साथ।
5: The mustard specialist since 1933, बरसों से सरसों।
6: कुछ तो बात है इस तेल में।
13: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हिट तो है इसकी खास बात।
14: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
15: अरे मेरे राजा,
16: सबका राजा आकर मसाला।
17: मां भी हमेशा पी मार्क मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी।
6: कुछ तो बात है इस दिल में।

0: Lok Sabha debates the anti-paper leak bill. Government says the law is for stricter, swifter justice.
1: याद है ना मैंने क्या सिखाया था? सिल्वर के लिए स्टर्लिंग मार्क, गोल्ड के लिए हॉल मार्क
2: और मस्टर्ड ऑयल के लिए सिर्फ पी मार्क।
3: इस बार तो माँ से भी बेहतर बना।
4: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933, बरसों से सरसों।
5: कुछ तो बात है इस दिल में।

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: याद है ना मैंने क्या सिखाया था? सिल्वर के लिए स्टर्लिंग मार्क, गोल्ड के लिए हॉल मार्क
2: और मस्टर्ड ऑयल के लिए सिर्फ पी मार्क।
3: इस बार तो माँ से भी बेहतर बना।
4: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933। बरसों से सरसों।
5: कुछ तो बात है इस दिल में।

जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रिकमेंड करता हूं? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality.

0: 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्म इसलिए स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।
1: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से,
2: देश का टायर जेके टायर।

0: रैना तू सतरंगा
1: जो होना है वो तो होना ही है, रंगीले तू सदा मुस्कुरा, सदा सदा सदा मुस्कुरा।
0: रंग रंग रंग रंग रंग रंगीने रंग रंगीने रे, देख कैसे भी हो दिन रंग बना रहे,
2: बोझे पेंट्स रंग बना रहे।
3: We are over, Jimmy.
4: Hey, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे, गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपी अब संभाल लेगा, आप अपना देख लो।
5: ए युग तुम्हारा, ए रण तुम्हारा, हर चुनौती तुम्हारी, हर शिखर तुम्हारा, तुम्ही हो भारत का स्वाभिमान।
6: हर सेक्टर, हर स्टेट, हर रीजन, हर उम्र के इनोवेटर्स ने दिया जबरदस्त प्रतिसाद, तभी तो वंदे भारतम में एप्लीकेशंस पहुंचे 25,000 के पार और रजिस्ट्रेशन डेडलाइन बढ़कर हुई है 30 जुलाई। आप भी भारत के सबसे बड़े ग्रास रूट इनोवेशन मूवमेंट से जुड़े, vandebharatam.org पर रजिस्टर करें।
7: पर जब इंसान प्रकृति के साथ सामंजस्य को आत्मसात कर लेता है तो वो मधुर और लालन पोषण करने वाली बन जाती है। टी मार्क सरसों के तेल ने प्राकृतिक तरीके से सरसों के तेल को बनाया है शुद्धता और गुणवत्ता के साथ।
8: द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933, बरसों से सरसों।
9: कुछ तो बात है इस तेल में,
10: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
11: वाओ मामा क्या स्वाद है।
12: अरे मेरे राजा,
13: सकारा जहां तोर मसाला।
14: लॉन्च कंट्रोल 0 to 100.
15: दिस इजंट जस्ट अबाउट कार्स एंड बाइक्स, दिस इज अबाउट हाउ यू मूव।
16: दिस कार मेक्स नो सेंस, येट इट मेक्स एवरी सेंस।
17: व्हाट वी आर सिटिंग इनसाइड इज अ जोबी पावर्ड एयर टैक्सी।
18: Your friend said, ye le le. We said, maybe not. Hi, my name is Siddharth Sharma. I'm your NDTV Automate, your ultimate guide into the world of automobiles and mobility.
19: Our pure Shahi Paneer Masala. Delicious, healthy, every day.
20: याद है ना मैंने क्या सिखाया था? Silver के लिए Sterling Mark, गोल्ड के लिए हॉलमार्क
21: और मस्टर्ड ऑयल के लिए सिर्फ पी मार्क।
22: इस बार तो माँ से भी बेहतर बना।
8: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933, बरसों से सरसों।
9: कुछ तो बात है इस दिल में।
23: हिट आउट एट प्रहलाद जोशी सेज द प्राइम मिनिस्टर कुड हैव पिक्ड एनीवन फॉर द एजुकेशन मिनिस्टर्स पोस्ट बट ही चोज अ डिफेंडर ऑफ रेपिस्ट्स। Joshi tells the Congress in Parliament to authenticate those remarks. The BJP MP Kangana Ranaut sparks a controversy, hits out at Gen Z for the abuse during the protests, claims that they were only there to flaunt freedom of drugs and endless body counts, calls abusive videos crass. Well, this week, Parliament has been battleground. It's been a battleground for several key issues, mostly linked to the student protests. Perhaps the most explosive one, did security forces turn pellet guns on India's own students? 80 plus injured, one young protester's eyesight hanging in the balance. The Congress's Manish Tiwari has demanded the government suspend all business in answer for it. Rahul Gandhi has been demanding to know, did the Home Minister Amit Shah personally sign off on this force? The Delhi police says no pellet guns were used, but it now appears that the rapid action force may have fired at the behest of senior Delhi police officers. And there's anger.

0: देश का टायर, जेके टायर।
1: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रिकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.
2: मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी, आर प्योर वर्मिसली, स्वादिष्ट, सेहतमंद, हर रोज़।

0: रैना तू सतरंगा
1: जो होना है वो तो होना ही है, रंगीले तू सदा मुस्कुरा, सदा सदा सदा मुस्कुरा। रंग रंग रंग रंग रंग रंगीने रंग रंगीने रे, देख कैसे भी हो दिन रंग बना रहे,
2: बोझे पेंट रंग बना रहे।
3: वी आर ओवर जिमी।
4: हे, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे, गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपी अब संभाल लेगा, आप अपना देख लो।
5: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
6: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
7: अरे मेरे राजा,
8: ये युग तुम्हारा, ये रण तुम्हारा, हर चुनौती तुम्हारी, हर शिखर तुम्हारा, तुम्ही हो भारत का स्वाभिमान।
9: हर सेक्टर, हर स्टेट, हर रीजन, हर उम्र के इनोवेटर्स ने दिया जबरदस्त प्रतिसाद, तभी तो वंदे भारतम में एप्लीकेशंस पहुंचे 25,000 के पार और रजिस्ट्रेशन डेडलाइन बढ़कर हुई है 30 जुलाई। आप भी भारत के सबसे बड़े ग्रास रूट

0: again, at the center of a storm of her own making. Bureau Report, NDTV.
1: And well, Gen Z lingo has made an unusual appearance in Parliament as MPs prepped their speeches with terms like FOMO, DELULU and even clocked it. Bringing the internet into the Lok Sabha, the use of youth-centric expressions added a contemporary twist to the debate, reflecting how social media language is increasingly finding its way into political discourse.
2: में जेन जी की भाषा को बरो करूं देन आई विल हैव टू से मोदी जी क्लॉक्ड इट एंड प्रोवाइडेड अ लेजिस्लेटिव सॉल्यूशन बट व्हाइल नरेंद्र मोदी प्रोवाइडेड एन एंटी पेपर लीक लॉ अ वेरी रोबस्ट लॉ व्हिच टुडे इज बीइंग इवन मोर फॉर्मिडेबल ऑल दैट द ऑपोजिशन डिड वाज चेज पॉलिटिकल ऑपोर्चुनिज्म अध्यक्ष जी फर्क साफ है फर्क केवल सरकार का नहीं फर्क सोच का भी है यूपीए का मंत्र है डिले डिफ्लेक्ट एंड डिनाई मोदी का मंत्र है डिटेक्ट डिसाइड एंड डिलीवर
3: देखा भी होगा तो बोलेंगे नहीं पता है सबके बच्चे हमारे साइड पे उनके साइड पे तो किसी के बच्चे नहीं है इनकी अगली जनरेशन ना इनके साथ नहीं हमारे साथ भी नहीं है शोर शायद हम जो डिलुलू के बारे में बोले ना आप भी उस डिलुलू में ना रहना कि वो आपके साथ है आपकी जनरेशन किसके साथ है ये 29 में पता चलेगा
4: विपक्ष के आंदोलन को एक समराइज करना चाहूंगा मैं जेन जी के भाषा में 37 दिन तक तो ये जंतर मंतर नहीं गए तो इनको एमआईए हो गया एमआईए क्या है एमआईए मिसिंग इन एक्शन तो 37 दिन तक हमने कुछ नहीं किया तो कुछ तो करना चाहिए जंतर मंतर तो नहीं जा सकते तो हम जाते हैं प्रधानमंत्री जी के आवास के सामने और वहां पर जाके आंदोलन करते हैं तो क्या हो गया फिर आंदोलन क्यों किया आपने उनको फोमो हुआ फोमो फियर ऑफ मिसिंग आउट अरे बच्चे यहां पर आंदोलन कर रहे हैं हम क्या कर रहे हैं तो हम चले गए पीएम आवास पर अरे सुनो आगे आगे आगे
5: आप अपना समाप्त
4: फोमो होने के बाद लव इनको डेलुलू हुआ डेलुलू
5: डॉक्टर श्री
4: डेलुलू
5: डेल्यूशन श्रीकांत जी
4: इनको लगा छात्र हमारे साथ आएंगे
5: श्रीकांत जी आप
4: प्रधानमंत्री के घर के इधर जाने के बाद लेकिन छात्र तो कोई आए नहीं ये अकेले वहाँ पर 2.5 घंटे जो है धरना देते बैठे वहाँ पर और इसलिए तो ये जेंजी की भाषा में जो है आज जेंजी
6: जब ये पूरा प्रदेश हो रहा था पूरा ये प्रदर्शन हो रहा था बच्चों का राहुल गांधी जी को पूरा पॉलिटिकल फोमो हो गया और राहुल गांधी जी सोचे कि मैं कहां जाऊं भाई इतना हाईलाइट स्पॉटलाइट सबको बाकी को मिल रहा है सीधा राहुल गांधी जी जाके प्रधानमंत्री जी के घर के सामने बैठ गए मैं राहुल गांधी जी से पूछना चाहता हूं राहुल जी 2 साल पहले जब राजस्थान में आपके सरकार थे और बार बार वहां रीट के पेपर लीक हुए थे और उस पेपर रीट पेपर लीक में 40 से ज्यादा राजीव गांधी स्टडी सर्कल के वॉलंटियर्स का हाथ एलिगेशन के आ रहा था आप कहां गए थे मैं वहां राजस्थान में था अध्यक्ष जी
1: The political row over alleged pellet firing during the July 20 NEET protest has intensified with fresh details emerging from a Delhi police diary entry. The diary reportedly records the use of riot control equipment by RAF personnel during the Sansad Chalo march, including the firing of 2 plastic pellet rounds on orders of a DCP rank officer. The use of pellets is now under probe with CRPF ordering a detailed inquiry into the RAF action. The inquiry report is expected next week. While explanations have been sought from the RAF personnel, the opposition has launched a sharp attack over the incident with Congress leaders demanding accountability from the government.
7: जहां पर हमने हमारी खूबसूरती देखी जहां पे हमने इंसानियत देखा जहां पर हमने लोकतंत्र की ताकत देखी वहीं पे हमने इस सरकार की क्रूरता भी देखी हमने देखा आपने किस प्रकार से पैलेट गन का इस्तेमाल किया हमने देखा किस प्रकार से आपने इलेक्ट्रिक बैटन का इस्तेमाल किया हमने वो भी नजारा भी देखा कि किस प्रकार से एक पुलिस कर्मचारी ने एक लड़की के गाल पर थप्पड़ मारा वो एसीपी भी वो एसीपी का नाम भी हमें याद है, उस पुलिस कांस्टेबल का चेहरा भी याद है जिसने अपने डंडे के साथ एक लड़की के प्राइवेट पार्ट पे उसने आक्रमण किया। हमें याद है वो लड़कियां जिन्होंने आंसू, उनके आंसू निकल रहे थे आंखों से और कह रहे थे कि पुलिस वाले उनके उनको मां बहन की गाली दे रहे थे।
8: पहला आंदोलन देखा कि जिसमें माँ बाप भी जुड़ गए और कहा कि जाओ बच्चों आंदोलन करो, हम आपके साथ हैं। ये पहला आंदोलन सर देखने को मिला है, और केवल दिल्ली में नहीं हुआ ये, केवल दिल्ली में नहीं हुआ ये। अगर ये बात गलत है, अगर ये बात अध्यक्ष महोदय गलत लग रही है, तो देश के होम मिनिस्टर साहब को ले आइए, वो सब एक्सप्लेन कर देंगे।
1: Well, the Supreme Court will form an SIT to probe Jantar Mantar violence. The top court has questioned the police action during the student protests, with CJI Surya Kant saying that cops did not follow the protocol laid down by the court. The CJI said a probe is meaningless without fixing accountability, adding that those responsible for excesses will face the law. The Supreme Court has issued notice to Delhi, Maharashtra, Bihar, Uttar Pradesh, Assam police seeking details on action taken against the protesters. The top court also directed that there should be no coercive action against the students. Delhi police's lawyer told the court that the injuries suffered by police personnel also cannot be ignored. The lawyer said that nearly 250 cops were injured and added that the forces cannot be demotivated. So these are the details that of a hearing that took place inside the Supreme Court. Moving on, the Prime Minister's video outlining the government's tougher crackdown on paper leaks was briefly restricted on Meta platform Facebook in India before being restored. Meta says the content was removed an error due to a technical glitch and has since then been reinstated, with a spokesperson confirming the restoration. Sources say that the company has apologized to the government and informed officials that takedown was inadvertent. The government, however, is treating the matter seriously and examining Meta's explanation and the sequence of events. Sources added that the global heads of Meta and Instagram have been summoned by the IT ministry for an explanation. And with that, it's time for us to slip into a very quick break. Don't go anywhere. News and update continue on the other side.
0: When others are warming up, I'm raring to go. The stories that matter, the stories that shape your life.
9: Hello and welcome to Watching Prime 5 with me, Aisha Sehgal.
0: The show that sets the prime time agenda.
9: We'll be deep diving into this topic to tell you what's at stake.
0: Join me, Raisha Sehgal, on Prime 5, only on NDTV 24/7.
10: ए युग तुम्हारा, ए रण तुम्हारा, हर चुनौती तुम्हारी, हर शिखर तुम्हारा, तुम्ही हो भारत का स्वाभिमान।
11: हर सेक्टर, हर स्टेट, हर रीजन, हर उम्र के इनोवेटर्स ने दिया जबरदस्त प्रतिसाद। तभी तो वंदे भारतम में एप्लीकेशंस पहुंचे 25,000 के पार, और रजिस्ट्रेशन डेडलाइन बढ़कर हुई है 30 जुलाई। आप भी भारत के सबसे बड़े ग्रास रूट इनोवेशन मूवमेंट से जुड़े, वंदे भारतम .org पर रजिस्टर करें।
12: So many attacks.
13: The chaos and cries of disaster zones to fighter jet cockpits and the world's most defining interviews.
12: It's incredible.
13: He has seen history break live, unfiltered. 20,000 hours of live broadcasting.
14: Welcome to Left, Right and Center.
13: Hard facts.
14: War-struck country.
13: Hard questions.
14: In the Ukraine.
13: 30 years of trust.
15: In the Kargil area.
14: North Ukraine. In France. In Italy.
15: At Srinagar.
14: In Istanbul.
16: Vishnu Shom for NDTV.
13: Vishnu Shom. Only on NDTV.
17: Straight from the heart of the newsroom to the core of the stories shaping your world. Join me, Gargi Rao, as I track all the developments as they break. Live from the NDTV newsroom, weekdays at 4 p.m.
1: Welcome back. Thank you for staying with NDTV. Well, the question that's there on everybody's mind currently is, if Tamil Nadu superstar Dhanush is preparing for a political innings. A speech at the fan-organized blood donation camp has set social media buzzing, with many drawing parallels to the early political journey of Tamil cinema icons. While there

0: साथ नहीं, हमारे साथ भी नहीं है शोर शायद। हम जो डिलुलू के बारे में बोले ना, आप भी उस डिलुलू में ना रहना कि वो आपके साथ है। आपकी जनरेशन किसके साथ है ये 29 में पता चलेगा।
1: विपक्ष के आंदोलन को एक समराइज करना चाहूंगा मैं जेंजी के भाषा में। 37 दिन तक तो ये जंतर मंतर नहीं गए, तो इनको एमआईए हो गया। एमआईए क्या है? एमआईए मिसिंग इन एक्शन। तो 37 दिन तक हमने कुछ नहीं किया, तो कुछ तो करना चाहिए। जंतर मंतर तो नहीं जा सकते, तो हम जाते हैं प्रधानमंत्री जी के आवास के सामने और वहां पर जाके आंदोलन करते हैं। तो क्या हो गया फिर? आंदोलन क्यों किया आपने? उनको फोमो हुआ, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, फियर ऑफ मिसिंग आउट। अरे बच्चे यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? तो हम चले गए पीएम आवास पर। अरे सुनो, आगे आगे आगे
2: आप अपना समाप्त।
1: फोमो होने के बाद लहू, इनको डेलुलू हुआ, डेलुलू,
2: डॉक्टर श्री
1: डेलुलू,
2: डेल्यूशन,
1: डेल्यूशन।
2: श्रीकांत जी,
1: इनको लगा छात्र हमारे साथ आएंगे प्रधानमंत्री के घर के इधर जाने के बाद, लेकिन छात्र तो कोई आए नहीं। ये अकेले वहाँ पर 2.5 घंटे जो है धरना देते बैठे वहाँ पर। और इसलिए तो ये जेंजी की भाषा में जो है, आज जेंजी,
3: जब ये पूरा प्रदेश हो रहा था, पूरा ये प्रदर्शन हो रहा था बच्चों का, राहुल गांधी जी को पूरा पॉलिटिकल फोमो हो गया और राहुल गांधी जी सोचे कि मैं कहां जाऊं भाई, इतना हाईलाइट स्पॉटलाइट सबको बाकी को मिल रहा है। सीधा राहुल गांधी जी जाके प्रधानमंत्री जी के घर के सामने बैठ गए। मैं राहुल गांधी जी से पूछना चाहता हूं, राहुल जी 2 साल पहले जब राजस्थान में आपके सरकार थे और बार बार वहां रीट के पेपर लीक हुए थे और उस पेपर रीट पेपर लीक में 40 से ज्यादा राजीव गांधी स्टडी सर्कल के वॉलंटियर्स का हाथ एलिगेशन के आ रहा था, आप कहां गए थे? मैं वहां राजस्थान में था अध्यक्ष जी।
4: The political row over alleged pellet firing during the July 20 NEET protest has intensified with fresh details emerging from a Delhi police diary entry. The diary reportedly records the use of riot control equipment by RAF personnel during the Sansad Chalo march, including the firing of 2 plastic pellet rounds on orders of a DCP rank officer. The use of pellets is now under probe, with CRPF ordering a detailed inquiry into the RAF action. The inquiry report is expected next week. While explanations have been sought from the RAF personnel, the opposition has launched a sharp attack over the incident, with Congress leaders demanding accountability from the government.
5: Jahan par humne hamari khoobsurti dekhi, jahan pe humne insaniyat dekha, जहां पर हमने लोकतंत्र की ताकत देखी, जहां पर हमने लोकतंत्र की ताकत देखी, वहीं पे हमने इस सरकार की क्रूरता भी देखी। हमने देखा आपने किस प्रकार से पैलेट गन का इस्तेमाल किया, हमने देखा किस प्रकार से आपने इलेक्ट्रिक बैटन का इस्तेमाल किया, हमने वो भी नजारा भी देखा कि किस प्रकार से एक पुलिस कर्मचारी ने एक लड़की के गाल पर थप्पड़ मारा। वो ACP भी, वो ACP का नाम भी हमें याद है, उस पुलिस कांस्टेबल का चेहरा भी याद है जिसने अपने डंडे के साथ एक लड़की के प्राइवेट पार्ट पे उसने आक्रमण किया। हमें याद है वो लड़कियां जिन्होंने उनके आंसू निकल रहे थे आंखों से और कह रहे थे कि पुलिस वाले उनको मां बहन की गाली दे रहे थे।
6: पहला आंदोलन देखा कि जिसमें माँ बाप भी जुड़ गए और कहा कि जाओ बच्चों आंदोलन करो, हम आपके साथ हैं। ये पहला आंदोलन सर देखने को मिला है, और केवल दिल्ली में नहीं हुआ ये। अगर ये बात गलत है, अगर ये बात अध्यक्ष महोदय गलत लग रही है, तो देश के होम मिनिस्टर साहब को ले आइए, वो सब एक्सप्लेन कर देंगे।
4: Well, the Supreme Court will form an SIT to probe Jantar Mantar violence. The top court has questioned the police action during the student protests, with CJI Surya Kant saying that cops did not follow the protocol laid down by the court. The CJI said a probe is meaningless without fixing accountability, adding that those responsible for excesses will face the law. The Supreme Court has issued notice to Delhi, Maharashtra, Bihar, Uttar Pradesh, Assam police seeking details on action taken against the protesters. The top court also directed that there should be no correction coercive action against the students. Delhi police's lawyer told the court that the injuries suffered by police personnel also cannot be ignored. The lawyer said that nearly 250 cops were injured and added that the forces cannot be demotivated. So these are the details that of a hearing that took place inside the Supreme Court. Moving on, the Prime Minister's video outlining the government's tougher crackdown on paper leaks was briefly restricted on Meta platform Facebook in India before being restored. Meta says the content was removed in error due to a technical glitch and has since then been reinstated, with a spokesperson confirming the restoration. Sources say that the company has apologized to the government and informed officials that the takedown was inadvertent. The government, however, is treating the matter seriously and examining Meta's explanation and the sequence of events. Sources added that the global heads of Meta and Instagram have been summoned by the IT ministry for an explanation. And with that, it's time for us to slip in a very quick break. Don't go anywhere. News and update continue on the other side.

0: youth the generation gutter. But that was just the beginning. In a second, far more provocative post, Ranaut turned her fire on young Indian women. Branding the entire generation as cockroaches, she called Gen Z protest reels puke-inducing. Targeting the concept of the westernized Indian woman, Kangana went on to say that young Hindu women are so ugly and corrupt that they can't become homemakers.
1: हमारे 75-year-old प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी दिवंगत माता जी को उनको इतनी गंदी गंदी भद्दी गालियां दे, हमने भी स्टूडेंट प्रोटेस्ट किए हैं, इतना हमें संकोच होता था, इतनी शर्मिंदगी होती थी कि हमें कैमरा में दिखाया जा रहा है, आगे एक स्टूडेंट को करके हम अपनी मांग रखते थे, कौन स्टूडेंट प्रोटेस्ट का हिस्सा नहीं बने, ये किस तरह के स्टूडेंट हैं और किस तरह की अश्लील बातें हैं, किस एंगल से ये लोग स्टूडेंट लगते हैं.
0: द ऑपोजिशन इजंट होल्डिंग बैक. Congress is furious over BJP MP's comments, asking whether Kangana feels no remorse.
2: That's really shocking. This is really the generation that represents the future of India. What is more, they're going to be the largest single voting bloc in next year's general elections in 2029. About 380 million, that is 38 crore of the voters are going to be...
3: Is it correct to call them...
2: Of course not. It's completely wrong. They are the future of our country. We should hail them as those who have rescued our democracy today.
4: Now, Kangana Ranaut, how much she has studied, she knows something. पहले वो अपनी डिग्री तो बता दे, वो कितनी पढ़ी लिखी है जो जनरेशन छात्रों को ज्ञान बांट रही है.
0: द समाजवादी पार्टी एंड JMM जॉइन द कोरस ऑफ आउटरेज, अक्यूजिंग द MP ऑफ इंसल्टिंग एन एंटायर जेनरेशन ऑफ वुमेन.
5: इट्स वेरी सैड कि सच काइंड ऑफ स्टेटमेंट इज कमिंग फ्रॉम अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हु हैज वर्कड इन द इंडस्ट्री, जो बहुत ही अच्छा काम करती है, लेकिन इस तरह का जो इनका संवेदनहीन स्टेटमेंट है उसकी हम कठोर निंदा करते हैं.
6: उनके इस कमेंट पर ध्यान ही नहीं देना चाहिए. वो हमेशा उठ पटांग बातें करती हैं, देश विरोधी बात नहीं तो क्या है. अगर देश के छात्रों को ये घिनौना कहती हैं तो आप उनकी मानसिकता को समझ सकते हैं, ये स्वस्थ मानसिकता नहीं है.
0: AIMIM has gone a step further, demanding Prime Minister Modi to take note.
7: Kangana Ranaut ko har martaba is tarah ki bakwas karne ki aadat ho gayi hai. Inko pucho, NEET ka full form malum hai? Nahi pata hoga unko.
0: The question being asked across party lines, how could a woman say this about other women? The BJP so far has stayed silent. But one thing is clear, Kangana Ranaut is, once again, at the center of a storm of her own making. Bureau Report, NDTV.
8: And well, Gen Z lingo has made an unusual appearance in Parliament as MPs prepped their speeches with terms like FOMO, DELULU and even clocked it. Bringing the internet into the Lok Sabha, the use of youth-centric expressions added a contemporary twist to the debate, reflecting how social media language is increasingly finding its way into political discourse.
9: में जेन जी की भाषा को बरो करूं, then I will have to say मोदी जी clocked it and provided a legislative solution. But while नरेंद्र मोदी provided an anti-paper leak law, a very robust law, which today is being even more formidable, all that the opposition did was chase political opportunism. अध्यक्ष जी, फर्क साफ है. फर्क केवल सरकार का नहीं, फर्क सोच का भी है. यूपीए का मंत्र है डिले, डिफ्लेक्ट एंड डिनाय. मोदी का मंत्र है डिटेक्ट, डिसाइड एंड डिलीवर.
10: देखा भी होगा तो बोलेंगे नहीं, पता है सबके बच्चे हमारे साइड पे, उनके साइड पे तो किसी के बच्चे नहीं है. इनकी अगली जनरेशन ना इनके साथ नहीं, हमारे साथ भी नहीं है शोर. शायद हम जो डिलुलू के बारे में बोले ना, आप भी उस डिलुलू में ना रहना कि वो आपके साथ है. आपकी जनरेशन किसके साथ है ये 29 में पता चलेगा.
11: विपक्ष के आंदोलन को एक समराइज करना चाहूंगा मैं जेन जी के भाषा में. 37 दिन तक तो ये जंतर मंतर नहीं गए, तो इनको MIA हो गया. MIA क्या है? MIA मिसिंग इन एक्शन. तो 37 दिन तक हमने कुछ नहीं किया तो कुछ तो करना चाहिए. जंतर मंतर तो नहीं जा सकते, तो हम जाते हैं प्रधानमंत्री जी के आवास के सामने और वहां पर जाके आंदोलन करते हैं. तो क्या हो गया फिर? आंदोलन क्यों किया? आंदोलन क्यों किया आपने? उनको फोमो हुआ, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, फियर ऑफ मिसिंग आउट. अरे बच्चे यहां पर आंदोलन कर रहे.

0: हम क्या कर रहे हैं? काम चले गए पीएम आवास पर? अरे सुनो, आगे आगे आगे
1: आप अपना समाप्त
0: फोमो होने के बाद, फोमो होने के बाद लहू इनको डेलुलु हुआ, डेलुलु
1: डॉक्टर श्री
0: डेलुलु
1: डेल्यूशन श्रीकांत जी,
0: इनको लगा छात्र हमारे साथ आएंगे प्रधानमंत्री के घर के इधर जाने के बाद, लेकिन छात्र तो कोई आए नहीं। ये अकेले वहाँ पर ढाई घंटे जो है धरना देते बैठे वहाँ पर, और इसलिए तो ये जेंजी की भाषा में जो है जेंजी।
2: जब ये पूरा प्रदेश हो रहा था, पूरा ये प्रदर्शन हो रहा था बच्चों का, राहुल गांधी जी को पूरा पॉलिटिकल फोमो हो गया और राहुल गांधी जी सोचे कि मैं कहां जाऊं भाई, इतना हाईलाइट स्पॉटलाइट सबको बाकी को मिल रहा है। सीधा राहुल गांधी जी जाके प्रधानमंत्री जी के घर के सामने बैठ गए। मैं राहुल गांधी जी से पूछना चाहता हूं, राहुल जी 2 साल पहले जब राजस्थान में आपके सरकार थे और बार बार वहां रीट के पेपर लीक हुए थे, और उस पेपर रीट पेपर लीक में 40 से ज्यादा राजीव गांधी स्टडी सर्कल के वॉलंटियर्स का हाथ एलिगेशन के आ रहा था, आप कहां गए थे? मैं वहां राजस्थान में था दीप जी।
3: The political row over alleged pellet firing during the July 20 NEET protest has intensified, with fresh details emerging from a Delhi police diary entry. The diary reportedly records the use of riot control equipment by RAF personnel during the Sansad Chalo march, including the firing of 2 plastic pellet rounds on orders of a DCP rank officer. The use of pellets is now under probe, with CRPF ordering a detailed inquiry into the RAF action. The inquiry report is expected next week. While explanations have been sought from the RAF personnel, the opposition has launched a sharp attack over the incident, with Congress leaders demanding accountability from the government.
4: जहां पर हमने हमारी खूबसूरती देखी, जहां पे हमने इंसानियत देखा, जहां पर हमने लोकतंत्र की ताकत देखी, जहां पर हमने लोकतंत्र की ताकत देखी, वहीं पे हमने इस सरकार की क्रूरता भी देखी। हमने देखा आपने किस प्रकार से पैलेट गन का इस्तेमाल किया, हमने देखा किस प्रकार से आपने इलेक्ट्रिक बैटन का इस्तेमाल किया, हमने वो भी नजारा भी देखा कि किस प्रकार से एक पुलिस कर्मचारी ने एक लड़की के गाल पर थप्पड़ मारा। वो एसीपी भी, वो एसीपी का नाम भी हमें याद है, उस पुलिस कांस्टेबल का चेहरा भी याद है जिसने अपने डंडे के साथ एक लड़की के प्राइवेट पार्ट पे उसने आक्रमण किया। हमें याद है वो लड़कियां जिन्होंने आंसू, उनके आंसू निकल रहे थे आंखों से और कह रहे थे कि पुलिस वाले उनके उनको मां बहन की गाली दे रहे थे।
5: पहला आंदोलन देखा कि जिसमें माँ बाप भी जुड़ गए और कहा कि जाओ बच्चों आंदोलन करो, हम आपके साथ हैं। ये पहला आंदोलन सर देखने को मिला है, और केवल दिल्ली में नहीं हुआ ये। अगर ये बात गलत है, अगर ये बात अध्यक्ष महोदय गलत लग रही है, तो देश के होम मिनिस्टर साहब को ले आइए, वो सब एक्सप्लेन कर देंगे।
3: Well, the Supreme Court will form an SIT to probe Jantar Mantar violence. The top court has questioned the police action during the student protests, with CJI Surya Kant saying that cops did not follow the protocol laid down by the court. The CJI said a probe is meaningless without fixing accountability, adding that those responsible for excesses will face the law. The Supreme Court has issued notice to Delhi, Maharashtra, Bihar, Uttar Pradesh, Assam police seeking details on action taken against the protesters. The top court also directed that there should be no aggressive action against the students. Delhi police's lawyer told the court that the injuries suffered by police personnel also cannot be ignored. The lawyer said that nearly 250 cops were injured and added that the forces cannot be demotivated. So these are the details that of a hearing that took place inside the Supreme Court. Moving on, the Prime Minister's video outlining the government's tougher crackdown on paper leaks was briefly restricted on Meta platform Facebook in India before being restored. Meta says the content was removed in error due to a technical glitch and has since then been reinstated, with a spokesperson confirming the restoration. Sources say that the company has apologized to the government and informed officials that takedown was inadvertent. The government, however, is treating the matter seriously and examining Meta's explanation and the sequence of events. Sources added that the global heads of Meta and Instagram have been summoned by the IT ministry for an explanation. And with that, it's time for us to slip into a very quick break. Don't go anywhere.

0: प्रोटेस्ट किए हैं, इतना हमें संकोच होता था, इतनी शर्मिंदगी होती थी कि हमें कैमरा में दिखाया जा रहा है, आगे एक स्टूडेंट को करके हम अपनी मांग रखते थे, कौन स्टूडेंट प्रोटेस्ट का हिस्सा नहीं बने, ये किस तरह के स्टूडेंट हैं और किस तरह की अश्लील बातें हैं, किस एंगल से ये लोग स्टूडेंट लगते हैं।
1: द ऑपोजिशन इजंट होल्डिंग बैक, कांग्रेस इज फ्यूरियस ओवर बीजेपी एमपीज कमेंट्स आस्किंग वेदर कंगना फील्स नो रिमोर्स।
2: That's really shocking. This is really the generation that represents the future of India. What is more, they're going to be the largest single voting bloc in next year's general elections in 2029. About 380 million, that is 38 crore of the voters are going to be...
3: Is it correct to call them...
2: Of course not. It's completely wrong. They are the future of our country. We should hail them as those who have rescued our democracy today.
4: Now, Kangana Ranaut, padhi likhi kitni hai, usko pata bhi hai kuch? पहले वो अपनी डिग्री तो बता दे, वो कितनी पढ़ी लिखी है जो जनरेशन छात्रों को ज्ञान बांट रही है।
1: द समाजवादी पार्टी एंड जेएमएम जॉइन द कोरस ऑफ आउटरेज अक्यूजिंग द एमपी ऑफ इंसल्टिंग एन एंटायर जेनरेशन ऑफ वुमेन।
5: इट्स वेरी सैड कि सच काइंड ऑफ स्टेटमेंट इज कमिंग फ्रॉम अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हु हैज वर्कड इन द इंडस्ट्री, जो बहुत ही अच्छा काम करती है, लेकिन इस तरह का जो इनका संवेदनहीन स्टेटमेंट है उसकी हम कठोर निंदा करते हैं।
6: उनके इस कमेंट पर ध्यान ही नहीं देना चाहिए, वो हमेशा उठपटांग बातें करती हैं, देश विरोधी बात नहीं तो क्या है। अगर देश के छात्रों को ये घिनौना कहती हैं तो आप उनकी मानसिकता को समझ सकते हैं, ये स्वस्थ मानसिकता नहीं है।
1: AIMIM has gone a step further, demanding Prime Minister Modi to take note.
7: कंगना रनावत को हर मर्तबा इस तरह की बकवास करने की आदत हो गई है। इनको पूछो नीट का फुल फॉर्म मालूम है, नहीं पता होगा उनको।
1: The question being asked across party lines, how could a woman say this about other women? The BJP so far has stayed silent. But one thing is clear, Kangana Ranaut is once again at the center of a storm of her own making. Bureau Report, NDTV.
8: And well, Gen Z lingo has made an unusual appearance in Parliament as MPs prepped their speeches with terms like FOMO, DELULU and even clocked it. Bringing the internet into the Lok Sabha, the use of youth-centric expressions added a contemporary twist to the debate, reflecting how social media language is increasingly finding its way into political discourse.
9: में जेन जी की भाषा को बरो करूं, then I will have to say Modi ji clocked it and provided a legislative solution. But while Narendra Modi provided an anti-paper leak law, a very robust law, which today is being even more formidable, all that the opposition did was chase political opportunism. अध्यक्ष जी, फर्क साफ है, फर्क केवल सरकार का नहीं, फर्क सोच का भी है। यूपीए का मंत्र है डिले, डिफ्लेक्ट एंड डिनाई, मोदी का मंत्र है डिटेक्ट, डिसाइड एंड डिलीवर।
10: देखा भी होगा तो बोलेंगे नहीं पता है, सबके बच्चे हमारे साइड पे, उनके साइड पे तो किसी के बच्चे नहीं है, उनकी अगली जनरेशन में इनके साथ नहीं, हमारे साथ भी नहीं है शोर। शायद हम जो डिलुलू के बारे में बोले ना, आप भी उस डिलुलू में ना रहना कि वो आपके साथ है। yes. आपकी जनरेशन किसके साथ है ये 29 में पता चलेगा।
11: विपक्ष के आंदोलन को एक समराइज करना चाहूंगा मैं जेन जी के भाषा में। 37 दिन तक तो ये जंतर मंतर नहीं गए, तो इनको MIA हो गया। MIA क्या है? MIA मिसिंग इन एक्शन। तो 37 दिन तक हमने कुछ नहीं किया तो कुछ तो करना चाहिए। जंतर मंतर तो नहीं जा सकते, तो हम जाते हैं प्रधानमंत्री जी के आवास के सामने और वहां पर जाके आंदोलन करते हैं। तो क्या हो गया फिर? आंदोलन क्यों किया आपने? उनको फोमो हुआ, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। अरे बच्चे यहां पर आंदोलन कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? तो हम चले गए पीएम आवास पर। अरे सुनो, आगे आगे आगे
12: आप अपना समाप्त।
11: फोमो होने के बाद लहू, इनको डेलुलू हुआ, डेलुलू,
12: डॉक्टर श्री
11: डेलुलू, डेल्यूशन।
12: श्रीकांत जी,
11: इनको लगा छात्र हमारे साथ आएंगे प्रधानमंत्री के घर के इधर जाने के बाद, लेकिन छात्र तो कोई आए नहीं। ये अकेले वहाँ पर 2.5 घंटे जो है धरना देते बैठे वहाँ पर, और इसलिए तो ये जेंजी की भाषा में जो है, हाँ जेंजी।

0: प्रदेश हो रहा था, पूरा ये प्रदर्शन हो रहा था बच्चों का, राहुल गांधी जी को पूरा पॉलिटिकल फोमो हो गया और राहुल गांधी जी सोचे कि मैं कहां जाऊं भाई, इतना हाईलाइट स्पॉटलाइट सबको बाकी को मिल रहा है। सीधा राहुल गांधी जी जाके प्रधानमंत्री जी के घर के सामने बैठ गए। मैं राहुल गांधी जी से पूछना चाहता हूं, राहुल जी 2 साल पहले जब राजस्थान में आपके सरकार थे और बार बार वहां रीट के पेपर लीक हुए थे और उस पेपर रीट पेपर लीक में 40 से ज्यादा राजीव गांधी स्टडी सर्कल के वॉलंटियर्स का हाथ एलिगेशन के आ रहा था, आप कहां गए थे? मैं वहां राजस्थान में था अध्यक्ष जी।
1: The political row over alleged pellet firing during the July 20 NEET protest has intensified, with fresh details emerging from a Delhi police diary entry. The diary reportedly records the use of riot control equipment by RAF personnel during the Sansad Chalo march, including the firing of 2 plastic pellet rounds on orders of a DCP rank officer. The use of pellets is now under probe, with CRPF ordering a detailed inquiry into the RAF action. The inquiry report is expected next week. While explanations have been sought from the RAF personnel, the opposition has launched a sharp attack over the incident, with Congress leaders demanding accountability from the government.
2: जहां पर हमने हमारी खूबसूरती देखी, जहां पे हमने इंसानियत देखा, जहां पर हमने लोकतंत्र की ताकत देखी, जहां पर हमने लोकतंत्र की ताकत देखी, वहीं पे हमने इस सरकार की क्रूरता भी देखी। हमने देखा आपने किस प्रकार से पैलेट गन का इस्तेमाल किया, हमने देखा किस प्रकार से आपने इलेक्ट्रिक बैटन का इस्तेमाल किया, हमने वो भी नजारा भी देखा कि किस प्रकार से एक पुलिस कर्मचारी ने एक लड़की के गाल पर थप्पड़ मारा। वो एसीपी भी, वो एसीपी का नाम भी हमें याद है, उस पुलिस कांस्टेबल का चेहरा भी याद है जिसने अपने डंडे के साथ एक लड़की के प्राइवेट पार्ट पे उसने आक्रमण किया। हमें याद है वो लड़कियां जिन्होंने आंसू, उनके आंसू निकल रहे थे आंखों से और कह रहे थे कि पुलिस वाले उनके उनको मां बहन की गाली दे रहे थे।
3: पहला आंदोलन देखा कि जिसमें मां बाप भी जुड़ गए और कहा कि जाओ बच्चों आंदोलन करो, हम आपके साथ हैं। ये पहला आंदोलन सर देखने को मिला है, और केवल दिल्ली में नहीं हुआ, ये केवल दिल्ली में नहीं हुआ। ये अगर ये बात गलत है, अगर ये बात अध्यक्ष महोदय गलत लग रही है, तो देश के होम मिनिस्टर साहब को ले आइए, वो सब एक्सप्लेन कर देंगे।
1: Well, the Supreme Court will form an SIT to probe Jantar Mantar violence. The top court has questioned the police action during the student protests, with CJI Surya Kant saying that cops did not follow the protocol laid down by the court. The CJI said a probe is meaningless without fixing accountability, adding that those responsible for excesses will face the law. The Supreme Court has issued notice to Delhi, Maharashtra, Bihar, Uttar Pradesh, Assam police seeking details on action taken against the protesters. The top court also directed that there should be no coercive action against the students. Delhi police's lawyer told the court that the injuries suffered by police personnel also cannot be ignored. The lawyer said that nearly 250 cops were injured and added that the forces cannot be demotivated. So these are the details that of a hearing that took place inside the Supreme Court. Moving on, the Prime Minister's video outlining the government's tougher crackdown on paper leaks was briefly restricted on Meta platform Facebook in India before being restored. Meta says the content was removed in error due to a technical glitch and has since then been reinstated, with a spokesperson confirming the restoration. Sources say that the company has apologized to the government and informed officials the takedown was inadvertent. The government, however, is treating the matter seriously and examining Meta's explanation and the sequence of events. Sources added that the global heads of Meta and Instagram have been summoned by the IT ministry for an explanation. And with that, it's time for us to slip into a very quick break. Don't go anywhere. News and update continue on the other side.
4: ए युग तुम्हारा, ए रण तुम्हारा, हर चुनौती तुम्हारी, हर शिखर तुम्हारा, तुम्ही हो भारत का स्वाभिमान।
5: हर सेक्टर, हर स्टेट, हर रीजन, हर उम्र के इनोवेटर्स ने दिया जबरदस्त प्रतिसाद। तभी तो वंदे भारतम में एप्लीकेशंस पहुंचे 25,000 के पार और रजिस्ट्रेशन डेडलाइन बढ़कर हुई है 30 जुलाई। आप भी भारत के सबसे बड़े ग्रास रूट इनोवेशन मूवमेंट से जुड़ें। वंदे भारतम.org पर रजिस्टर करें।